नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 मई 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें, विविध भारती के कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से समाचार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा मतदान अधिकारी की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर चुनाव रद्द कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया है। ये याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि मतगणना केंद्रों पर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी ही होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमौलिया बागची आज सुबह 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे। 4 मई को मतगणना के चलते तृणमूल कांग्रेस ने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से 41 देशों तक बढ़ा दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में श्री पुरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमने एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है। एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लेह के जीवत्सल में तथागत युद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ये प्रदर्शनी 1 मई से 14 मई तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कर घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ये सुविधा ऑनलाइन रूप से 15 मई तक रहेगी। उधर बिहार में स्वगणना की 15 दिन की अवधि कल समाप्त हो गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायक उत्पाद सूची पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी, बेसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है, लेकिन उन्होंने

0: कहा कि वे प्रस्तावित शर्तों से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ईरान के नेतृत्व में बिखरा हुआ ये ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इसराइली सैनिक घायल हो गए। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे चेन्नई में खेला जाएगा। कल रात खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के एल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आइए सुनिए आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, किताबें खुद चुप रहती हैं, लेकिन जो उन्हें पढ़ लेता है उसे बोलना सिखा देती हैं। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

यह है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरितमानस पाठ में सुनिए भाग 176। 6:45 पर संगीत सरिता में श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा का 15वां भाग सुनिएगा। कलाकार हैं गीतकार गुलजार, संगीतकार आरडी बर्मन और गायिका आशा भोसले। प्रस्तुति छाया गांगुली की है। 7 बजे भूले बिस्तरे गीत का प्रसारण होगा और 7:30 से सुनिए हम है राही प्यार के।

आज सुबह 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम होगा। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक और 9:30 पर सुनिए आज के फनकार जो फिल्मकार सत्यजीत रे पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप आज रात 9:30 पर भी सुन सकते हैं। 10:00 पिटारा में गीतों भरी कहानी सुनवाई जाएगी। कहानी है जिंदगी में नून। वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का है। लेखक हैं श्रद्धा थवायत। संपादन सहायक काजल भदरगे। प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। ग्यारह बजे सुनिए चित्रपट संगीत और 11:30 से मैटिनी शो। बारह 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी और 1:00 से कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुन सकते हैं दिन में 2:30 से और मनचाहे गीत सुनिए 3:00 से। पर नाट्य तरंग कार्यक्रम होगा और 4:00 पिटारा में बॉम्बे टॉकीज में सुनिए फिल्म एडिटर दिलीप तरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा भाग। प्रस्तुत करता है जुबेर खान। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता में श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा का 15वां भाग सुनिएगा। 7:00 विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए जिज्ञासा। हवा महल में सुनो कहानी के अंतर्गत सुनिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र का भाग पहला। वाचन स्वर है ममता सिंह का। प्रस्तुतकर्ता है हर्षवर्धन गवई। 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम होगा और 9:00 से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार सत्यजीत रे पर और 10:00 से सुनिए छाया गीत। 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ग्यारह 11:00 सुनिए चित्रपट संगीत।

आपको एक बार फिर याद दिला दे, सुरीला सफर आज आप सुनेंगे 1 बजे से, और सदाबहार नगमे आप सुनेंगे 2:30 पर, और 3 बजे से सुनिए मन चाहे गीत।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कागार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानव उसकी प्रत्यंचा है और शम, तम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज बसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 176।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: मेरी संगीत यात्रा। श्रोताओं, इस श्रृंखला में हमने सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन से किए गए संवाद के माध्यम से फिल्म संगीत के अनेक उपयोगी एवं रोचक पहलुओं की जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। तो सुनिए इसी श्रृंखला की 15वीं और अंतिम कड़ी। श्री राहुल देव बर्मन के साथ हुए संवाद में भाग लिया है आपके चिरपरिचित फिल्म लेखक, गीतकार, निर्माता एवं निर्देशक श्री गुलजार ने एवं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले ने।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। ये आज हम लोग मेरे ख्याल से आखिरी प्रोग्राम के लिए
1: आपको मेरे नमस्कार में सैडनेस नहीं दिखाई दी?
3: इतना नमस्कार, उदासी तो मुझे उदासी सुनाई दे रही
1: जी। जब हमने दिल पड़ोसी ये रिकॉर्ड बनाने की सोची
2: जी,
1: सब लोगों ने कहा कि बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं ये रिकॉर्ड करें। हर एक ने कहा, फॉरेन से लोगों ने मुझे चिट्ठियां लिखी कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाइए। तो हम लोग बहुत सोच रहे थे कि क्या टॉपिक पे जाना चाहिए, किस टॉपिक पे जाना चाहिए। तो गुलजार भाई ने अपने मन से ही टॉपिक चुन लिया और उस टॉपिक पे उन्होंने पूरा रिकॉर्ड उसी पे चलता है। अलग अलग गाने आते हैं लेकिन मकसद एक होता है।
3: वैसे इस एल्बम का मैं पूरा क्रेडिट आपको देता हूँ।
1: नहीं,
3: ये इस वजह से कि बाकी सब कुछ होते हुए भी ये अगर आप इसकी कॉम्पोजिशंस के लिए, इसे बनाने के लिए
1: पीछे नहीं पड़ती
3: जी, ये हजरत को ना पकड़ती आप और इस तरह, तो ये एल्बम का भी ना होती।
1: और इस एल्बम की खास बात है कि बर्मन साहब का हमेशा ऐसा रहा है कि आज से आने वाले 10 साल का म्यूजिक वो पहले बना देते हैं, आने वाली चीज वो पहले करते हैं। और
2: तारीफ इतना क्यों कर रहे हैं?
1: और गुलजार भाई का लिखना भी ऐसा है कि आम आदमी के फट से समझ में नहीं आता है कि वो क्या लिख गए, वो क्या कह गए हैं। अगर आप सोचे 2 मिनट तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही सुंदर उसको
2: गहरी बात
1: से वो कह जाते हैं। और कुछ अलग ही अपना तरीका है उनका लिखने का। और मेरा ख्याल है हमारी इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान में शायद इस किस्म के लिखने वाले दूसरे कोई नहीं है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है, आप ज्यादा तारीफ कर रही हैं मेरी।
1: नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मुंह देखे भी नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा से कहती हूँ और सब शायद दुनिया के सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत साफ जो सच्चाई वो कह देती हूँ।
3: तो मैं जो खास बात इन कॉम्पोजिशंस में, जिस तरह से आपने कहा आने वाले वक्त की, उसमें जो अलग बात है इसमें दिल पड़ोसी में, वो ये है कि बहुत से रिलेशनशिप्स हमारे हैं जिनके बारे में हम कहानियां लिखते हैं, गाने नहीं लिखते, नज़में भी नहीं लिखते, पोएट्री में भी नहीं कहते। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का हिस्सा है, लेकिन हमने इस पर गाने कभी नहीं किए। जैसे आपने गाना इस प्रोग्राम में गाया है जाने दो मुझे, जाने दो, एक औरत जो अपने हस्बैंड से अलग हो रही है, जाना चाहती है और उसके दुख का फिर भी एहसास है कि कुछ देर तन्हाई रहेगी, उसके बाद तुम भूल जाओगे, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, पर मुझे जाने दो। वो उन चोटों का जिक्र करती है जो उसके चेहरे पर निशानियां लेके जा रही है। द मैन हैज बीन अ वाइफ बीटर, जिसका जिक्र कोई गानों में या नज्मों में करते नहीं हम लोग, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है ये, और उन पे गाना कह लेना और उस दर्द को बता देना। इसी में गाना है जिसमें औरत शादीशुदा है और मैं सजदे में थी तूने लब छू लिए, एक जगह आता है इसमें एक गाने में, और तुमको परवाह नहीं थी मैं अकेली न थी, कुछ इस तरह की लाइनें जिससे सजेस्ट करते हैं हम कि शी इज अ मैरिड वुमन एंड इन लव विद समबडी। तो ये इस तरह के हिस्से जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये सिचुएशंस हम फिल्मों में कह नहीं पाते, बाहर लिखते नहीं। दिल पड़ोसी है मैं, ये पहली बार हुआ था
2: रात क्रिसमस की थी,
3: रात क्रिसमस की थी,
1: गाने में
3: ना तेरे बस की थी ना मेरे बस की थी।
1: और बर्मन साहब ने इसमें जिस तरह लगता है कि वाकई क्रिसमस हो रहा है कहीं लंदन में, पेरिस में, इसी तरह कुछ वो क्या गाड़ी छन छन छन छन आवाज और क्रिश्चियन लड़कियां सब गा रही हैं, और उसमें से ये गाना जैसे शुरू होता है, ये बहुत सुंदर गाना है। तो आज
3: अच्छा, ये मैं सिर्फ बदला नहीं चुका रहा हूँ, लेकिन ये कि आपकी रेंडरिंग और आपकी गायकी, आपने जिस तरह से गाया है उसे,
1: मेरा ख्याल आप लोग प्यार करते हैं इसलिए आपको मेरे गाना अच्छा लगता है।
3: सही बात यह है।

कि आज क्योंकि आखिरी प्रोग्राम है इसलिए जाने से पहले कह देना चाहता हूँ सबके सामने कि आपकी रेंडरिंग उसमें एक और सोने पे सुहागा था।

0: मेरी संगीत यात्रा। सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन से हुए संवाद पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की 15वीं और अंतिम कड़ी। इस संवाद में भाग ले रहे थे सुपरिचित फिल्म लेखक, गीतकार, निर्माता एवं निर्देशक श्री गुलजार और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले। इस कड़ी के साथ ही संगीत सरिता की वर्तमान श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा का समापन होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता।

0: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
1: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
0: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को राजुल का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत छोटे बाबू फिल्म से सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं। इंदिवर के बोलों को धुन में पिरोया है मदन मोहन ने।

आंखों में छिपे जुगनू की बातें तमाम नजारे सुनते हैं और हम अब सुनते हैं हिल स्टेशन फिल्म का गाना गीता दत्त की आवाज में। शब्द रचना SH बिहारी की और स्वर रचना है हेमंत कुमार की।

चंगेज खान फिल्म का गाना आपने सुना सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में। कमर जलालाबादी के बोल थे और हंसराज बहल का संगीत था। रोकती बहारों की सुरीली पुकार जा पहुंचती है नीले गगन पर। आइए सुनते हैं बादशाह फिल्म का ये गाना।

हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे बादशाह फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा था शैलेंद्र ने और शुरू में पिरोया था शंकर जय किशन ने। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का शेष भाग जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: छुपेगा ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए थे।
1: बोलो कैसे रखूं मैं मुखड़ा छुपाए थे।
0: छुपेगा ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए थे, ये चांद का टुकड़ा छुपाए थे।
1: लो जी मिट नहीं छेड़ कर जादूगर।

0: लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में आप सुन रहे थे चंपा कली फिल्म का गाना, जिसे लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
3: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981 बसेरा।
4: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
1: 1984 दुनिया।
3: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजा।
1: 1993 फिल्म साहिबा।
3: जैसे जियूंगा
1: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
4: नजरों से कह दो प्यार।
1: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आँखों में
3: काजल है।
0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले का गाया हुआ भाभी फिल्म का गाना। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की और स्वर रचना है चित्रगुप्त की।

लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे थे मीना बाई का ये भजन। फिल्म का नाम था तूफान और दिया, संगीत वसंत देसाई का था। और आइए अब सुनते हैं सती नागकन्या फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। जीएस नेपाली की शब्द रचना को संगीत से सवारा है एस एन त्रिपाठी ने।

स्वागत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आइए आपको सुनवाते हैं ममता फिल्म का गाना लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का गाया हुआ। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है रोशन ने।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

मेरे हम सफर फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

हमारा ही प्यार के कार्यक्रम का अगला गीत नसीब फिल्म से है। आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया ये गाना।

कमलेश अवस्थी, अनवर, सुमन कल्याणपुर और साथियों का गाया हुआ नसीब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने गीत लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने स्वर

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम है राही प्यार के कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का ये गीत जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है महुआ। बोल कमर जलाल आबादी के हैं और धुन बनाई है सोनी कोमी ने।

आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया हुआ ये गाना आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था आए दिन बहार के। आवाजें लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की थीं। इस गीत के साथ ही अब आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल के दो विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी, 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित

0: प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में भारत की पुरुष टीम डेनमार्क में थॉमस कप के सेमीफाइनल में फ्रांस से खेलेगी और भारतीय फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
1: पश्चिम बंगाल के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के 15 बूथों पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है। इनमें से 11 बूथ पश्चिम मगराहाट में और 4 बूथ डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हैं। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। इस बीच एक अन्य घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष पीठ का गठन किया है जो तृणमूल कांग्रेस की उस अपील पर तत्काल सुनवाई करेगी जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें मतगणना केंद्रों के कर्मचारियों केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ आज सुबह करीब 10:30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि अदालत मतगणना कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में चुनाव आयोग के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीक्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। ये कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है।
2: गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये प्रक्रिया इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी जिसके दौरान प्रशिक्षित जनगणना कर्मी घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। इस बीच जनगणना 2027 के अंतर्गत स्वगणना सुविधा कल दिल्ली नगर निगम क्षेत्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में शुरू हो गई है। ये ऑनलाइन सुविधा इस महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी जिसके बाद इन राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में 16 मई से 14 जून के बीच घर घर जाकर जनगणना कार्य किया जाएगा। जनगणना 2027 में पहली बार शुरू की गई इस सुविधा को जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। जनगणना 2027 के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण के तहत अब तक लगभग 82 लाख परिवारों ने आधिकारिक पोर्टल sc.census.gov.in के माध्यम से इस सुविधा का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है। दक्षिण गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। भारत ने बहुत तेजी से प्रगति की है। रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: एलपीजी की घरेलू उत्पादन क्षमता 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक पहुंच गई है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNP इकाई 5 और 6 में प्रमुख उपकरण लगाने की अनुमति दे दी है। इसमें परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को रिएक्टर प्रेशर वेसल, स्टीम जनरेटर, कूलेंट पंप सहित संयंत्र के प्रमुख उपकरणों को लगाने की अनुमति दी गई है। AERB द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार इकाइयों के डिजाइन को संतोषजनक बहुस्तरीय सुरक्षा समीक्षा के बाद अनुमति दी गई। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नौवहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। पेट्रोलियम

0: और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। देश भर में कल 2,300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान भारतीय ध्वज वाले किसी भी पोत के साथ किसी घटना की सूचना नहीं मिली है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि उड़ान की स्थिति में सुधार हो रहा है और क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान से बाहर निकलने के लिए 2,490 भारतीय नागरिकों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कहा है कि चलन में मौजूद 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के 98.47% नोट वापसी की घोषणा के 3 साल बाद बैंक में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रा प्रबंधन अभ्यास के हिस्से के रूप में 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। उस समय प्रचलन में ऐसे नोटों की कुल कीमत लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपये थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ा तेजी से घटकर 5,451 करोड़ रुपए हो गया है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से 2,000 रुपए के नोटों को बदलने की सुविधा 19 आरबीआई कार्यालयों में उपलब्ध है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वापसी के बावजूद 2,000 रुपए के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 4 साल पहले लागू हुए भारत संयुक्त अरब अमीरात यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए ने भारतीय किसानों, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों और अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर पैदा किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध मजबूती से आगे बढ़ते हुए 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान ने मध्यस्थों के माध्यम से अपना संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
1: श्री ट्रंप ने स्वीकार किया कि ईरान ने वार्ता में प्रगति की है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को बिखरा हुआ बताया है। फार्स समाचार एजेंसी सहित ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि देश का नेतृत्व आंतरिक अस्थिरता की अटकलों को निराधार सिद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है। यह राजनयिक गतिरोध पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में बढ़ती हिंसा के बीच आया है। उधर लेबनान में इजरायली हमलों में एक ही दिन में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। पिछले महीने अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हमलों में दक्षिणी शहर टायर में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। जवाब में हिजबुल्ला ने इसराइल के उत्तरी हिस्सों में ड्रोन हमले किए जिसमें कई इजरायली सैनिक घायल हो गए। लेबनान में चल रहे संघर्ष में अब तक 2,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: टेनिस में मैड्रिड ओपन के महिला एकल फाइनल में मीरा एंड्रीवा का सामना आज यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक से होगा। मीरा एंड्रीवा ने पिछले गुरुवार को सेमीफाइनल में अमेरिका की हेली बैप्टिस्ट को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मार्टा कोत्स्युक ने अनास्तासिया पोटापोवा को हराकर अपने करियर के पहले WTA फाइनल में जगह बनाई। पुरुष एकल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जैनिक सिनर ने कल आर्थर फिल्स को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। बैडमिंटन में डेनमार्क के होर्सन्स में खेले जा रहे थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला आज फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। लक्ष्य सेन ने पहले मैच में चोउ तिएन चेन को हराकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चियो हिस्यांग चिए और वांग ची लिन को हराया। अंत में आयुष शेट्टी ने लिन चुन यी को हराकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम उबर कप 2026 में ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई। चीन के खिलाफ हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे से शुरू

होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंटे ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है।

0: सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर और एक गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर ही 226 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने सर्वाधिक 75 रन बनाए। केएल राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज बारिश की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिन तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी आज के अखबारों की पहली खबर है। देशबंधु लिखता है गैस सिलेंडर के दाम में 973 रुपए की बढ़ोतरी। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है दाम 3000 के पार। अमर उजाला ने महंगाई का वार शीर्षक से लिखा है 5 किलो वाले छोटू के दाम 261 रुपए बढ़े। पत्र ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान दिया है, आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं। हिंदुस्तान लिखता है बाजार पर जल्द दिखेगा असर। जनसत्ता का कहना है घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी का खतरा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर जनसत्ता लिखता है नशे में मान, विपक्ष परेशान, आप हलकान। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है विशेष सत्र में मान सरकार ने जीता विश्वास, कांग्रेस का वॉकआउट, अकाली भाजपा रहे गैर मौजूद। नवभारत टाइम्स ने नोएडा से 15 जून से घरेलू उड़ानों के समाचार को अपनी पहली खबर बनाया है। साथ ही 13 मई तक गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर की जानकारी दी है। पत्र ने सूरत में देश के पहले बैरियर फ्री टोल प्लाजा की तस्वीर भी दी है। बरगी डैम क्रूज हादसे की दर्दनाक खबर अनेक अखबारों के पहले पृष्ठ पर है। मां के सीने से लिपटे बच्चे के शव का सिहरन पैदा कर देने वाला चित्र देते हुए राजस्थान पत्रिका लिखता है सांसें थम गई पर मां की बाहें नहीं खुली। लोकसत्ते के शब्द हैं मां की ममता, लाइफ जैकेट में छिपा लिया जिगर का टुकड़ा। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में लिखा है डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसीलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की तिश्री नहीं की जानी चाहिए। पत्र लिखता है ये कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला जारी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान जारी। 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में पहले चरण की जनगणना के अंतर्गत मकान सूचीकरण और आवास गणना शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के ईरान के प्रस्ताव को खारिज किया, कहा ईरान की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बैडमिंटन में थॉमस कप के सेमीफाइनल में डेनमार्क में भारत की पुरुष टीम का सामना फ्रांस से और भारत की महिला फुटबॉल टीम आज चीन में 21 साल बाद AFC अंडर 17 महिला एशिया कप टूर्नामेंट में खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दो शब्दों से मिलकर बना है। क्षण एक छोटा समय, एक पल, भंगुर नाजुक अस्थिर टूटने वाला, ऐसा स्वरूप जो केवल एक क्षण के लिए है, अस्थाई और नाजुक। जीवन की गति किसी भी पल रुक जाती है। हम जाने किस भ्रमजाल में जीते हैं कि अब हमारा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही होती है। जीवन परिवर्तनशील है, इसी जीवन के हर पल की अस्थिरता और अल्पकालिकता को क्षण भंगुरता कहते हैं। हमारे सुख दुख, मिलन विछो सब क्षणिक होते हैं। ये हमें ये याद दिलाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे सुख हो या दुख और खुशी हो या गम, ये सब बदलते रहते हैं।

ये बात हम सभी को अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि संसार में जितनी भी चीजें हैं उनका नष्ट होना तय है। जैसे प्रकृति अपना रंग व्यवहार बदलती है, वृक्षों में पत्ते लगते हैं, फूल फल लगते हैं और एक दिन झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वृक्ष सूख जाते हैं, वैसे हमारा मनुष्य जीवन भी अपनी उम्र की अवस्थाओं को पार करता हुआ एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां सब क्षणभंगुर लगने लगता है। जो चीजें जन्म लेती हैं वे बदलती हैं और अंततः मिटती भी हैं। उनके क्षणिक माया मोह में उलझना व्यर्थ है, लेकिन मानव मन बड़ा चंचल होता है।

आज जो है वो कल नहीं होगा। रूप स्वरूप का परिवर्तन होना तय है, पूर्व निर्धारित है। फिर खुद को भ्रम में क्यों रखना। जीवन को सादगी सरलता से जीना, उच्च आदर्शों का पालन करना और खुद को अनुशासित रखना ही मन को शांति प्रदान करेगा। और अपने जीवन का उपयोग अच्छे कार्यों में लगा देते हैं तब इस जीवन की क्षण भंगुरता की सत्यता से भयभीत नहीं होंगे। ध्यान और मंगल की शिक्षाएं यही सीख देती हैं कि क्षण भंगुरता को समझकर अन्य चीजों से लगाव कम करें। इसे समझने से विवेक और संतुलन आता है। क्षण भंगुरता हमें ये सिखाती है सब कुछ बदलता रहता है, स्थायित्व भ्रम है। वर्तमान पल का महत्व समझो, वही वास्तविक है। संतुलन, धैर्य और अपनापन इसी समझ से आता है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
4: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
0: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें, सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। चित्रलोक ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे बस कुछ ही पलों में।

सुबह के जेब में उम्मीदों के सिक्कों की खनक और देश के नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती पर गीतों की रुनझुन जब हो एक साथ तो होता है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सभी को राजुल का नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग।

खुशी का प्याला बांटकर पीते इस गीत के बोल तनवीर गाजी के थे। अक्टूबर फिल्म का ये गाना था, मोनाली ठाकुर की आवाज़ में शांतनु मोइत्रा का संगीत था। वैसे आज खास दिन है, आज किताबों की बात करते हैं। किताबें लोगों की सच्ची दोस्त होती हैं, ये तो हम सभी कहते हैं। इन्हीं किताबों से जो हमें ज्ञान मिलता है वो आगे का आने वाला कल भी बनाता है, और इसकी शुरुआत बचपन से ही होती है। लेकिन आज के समय में बच्चों और साहित्य के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पहले गर्मी की छुट्टियों में बच्चे कॉमिक

बुक्स खरीदने की जिद किया करते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब वो अपने या तो मोबाइल में बिजी रहते हैं, या फिर टीवी पर कुछ देखते रहते हैं, या कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं। किताबों से बढ़ती बच्चों की दूरियों को कम करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है, आज ही की तारीख को, यानी 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल दरअसल प्रसिद्ध परीकथा लेखक हैंस क्रिश्चियन एंडरसन का जन्मदिन है, और उन्हीं को ट्रिब्यूट करते हैं ये दिन। बचपन की सुनहरी दुनिया में बाल पुस्तकों का तो बहुत योगदान है, और इस दिन का यही उद्देश्य है कि बच्चों में पढ़ने के प्रति प्रेम को वापस लौटाया जा सके और उनका ध्यान बच्चों की किताबों की ओर आकर्षित किया जा सके। इस दिन के आयोजन में इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल का खास योगदान रहता है। प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल के एक अलग राष्ट्रीय अनुभाग को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का अंतर्राष्ट्रीय प्रायोजक बनने का अवसर मिलता है। यह अनुभाग एक विषय का चयन करता है और मेजबान देश के एक प्रख्यात लेखक को विश्व भर के बच्चों के लिए संदेश लिखने और एक प्रसिद्ध चित्रकार को पोस्टर डिजाइन करने के लिए आमंत्रित करता है। इन सभी सामग्रियों का उपयोग पुस्तकों और पठन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरीकों से किया जाता है। 2026 में इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल साइप्रस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन किया जा रहा है, और विषय बड़ा मजेदार है, कहानियां बोए और दुनिया खिल उठेगी। हम तो यही चाहेंगे कि इस आयोजन के जरिए उन पुस्तकों को याद किया जा सके जो हम सभी को कम उम्र से ही आकार देती हैं, और उन्हें बढ़ावा भी मिले ताकि बच्चों और उनके विकास पर साहित्य का सकारात्मक प्रभाव हमेशा पड़ता रहे।

Tum ta.

तानिश सांघवी की आवाज में हिंदी मीडियम फिल्म का ये गाना आपने सुना, कुमार के बोलों को संगीत में पिरोया था सचिन जिगर ने, और अब ये गाना। बर्फी फिल्म का गाना है, श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाजें हैं।

श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज की आवाजों में बर्फी फिल्म का ही गाना आपने सुना, गीत स्वानंद किरकिरे का, संगीत प्रीतम का। चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

पूरा हुआ अंतराल चित्रलोक कार्यक्रम में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज ही मनाया जा रहा है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, यानी 2 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र ने इस विशेष तिथि को ऑटिज्म की एक बढ़ती हुई वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में उजागर करने के लिए मनाने की शुरुआत की थी। और वैसे देखा जाए तो इसका उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना ही नहीं है, ये सभी जगह पर समाज में, सरकार में और दुनिया में स्वास्थ्य प्रणालियों में, समुदायों में एक महत्वपूर्ण आह्वान है कि ये ऑटिज्म से ग्रस्त व्यक्तियों के मौलिक मानवाधिकारों की पुरजोर उनका समर्थन किया जाए और ताकि वो लोग संतुष्टिपूर्ण, स्वतंत्र और सार्थक जीवन जीने के समान अवसरों का लाभ उठा सकें और साथ ही साथ ये भी कि उन्हें एक स्वतंत्र जीवन जीने में दिक्कत ना हो। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 की जो थीम है वो है ऑटिज्म और मानवता हर जीवन का मूल है, यानी ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी एवरी लाइफ मैटर्स। ये विषय ऑटिस्टिक व्यक्तियों की गरिमा, समावेश और समान अधिकारों पर जोर देता है, साथ ही शिक्षा और कार्यस्थलों में सक्रिय भागीदारी को भी बढ़ावा देता है।

माई नेम इस खान, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शफकत अमानत अली की आवाज़ में। निरंजन आयंगर के बोल थे और शंकर एहसान लॉय का संगीत था। फिल्मों की दुनिया और फिल्मों के शौकीनों के लिए 2 मई की तारीख एक और ख़ास जगह रखती है। आज यानी 2 मई को होता है फिल्मकार सत्यजीत रे का की जन्मतिथि मनाई जाती है। और हम आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9:30 पर और रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार सत्यजीत रे पर। सुनना ना भूलिएगा। अब ये गाना आपके लिए।

0: धड़क फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे अजय गोगावले की आवाज़ में। अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा था और अजय अतुल ने धुन बनाई थी।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
3: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981 बसेरा।
4: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
1: 1984 दुनिया।
3: तू चांद नगर की शहजादी का।
1: 1993 फिल्म साहिबा।
3: कैसे जियूंगा मैं।
1: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
5: नजरों से कह दो प्यार।
1: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

विविध भारती पर चित्रलोक कार्यक्रम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सुनवा रहे हैं आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म का गाना, शेखर रवजियानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन का गाया हुआ। लिखा है अन्विता दत्त ने, धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

इश्क से महकते उस गीत के बाद अब अगला गाना टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म से सचेत टंडन की आवाज़ में, परंपरा ठाकुर साथ में, गरिमा वहाल और सिद्धार्थ सिंह ने इस फिल्म के गीत लिखे और सचेत परंपरा का

कहीं एक मुख्तसर सी मुलाकात की बात हो तो फिर ये बात जरूर होगी। तेरी मेरी कहानी फिल्म के इस गाने के साथ वाजिद अली की आवाज में प्रसून जोशी का गीत साजिद वाजिद का संगीत।

ये खास मुलाकात, कुछ बातें अनकही, बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। और इन गीतों का ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

द डर्टी पिक्चर फिल्म से आप सुन रहे थे कमाल खान का गाया हुआ ये गाना। रजत अरोरा ने लिखा था और विशाल शेखर ने संगीत तैयार किया था। चित्रलोक कार्यक्रम में अगला गाना सिंघम फिल्म से सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोलों को संगीत से सवारा है अजय अतुल ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में आपने हिचकी फिल्म का ये गाना सुना, राजशेखर के बोल, जसलीन रॉयल का संगीत। और यहीं तक है आज का सफ़र चित्रलोक कार्यक्रम में। दीजिए राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

दोस्तों नमस्कार, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है सत्यजीत रे की स्मृति को। सत्यजीत रे का शुमार भारत के महानतम फिल्मकारों में होता है। आज पश्चिमी दुनिया में अगर भारतीय सिनेमा अपनी कोई पहचान कायम कर पाया है या अपना परचम बुलंद कर पाया है तो इसका सीधा श्रेय जाता है सत्यजीत रे को, जिनकी पहली ही फिल्म पाथेर पांचाली सन 1956 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। सत्यजीत रे का सिनेमा सरोकारों का सिनेमा था। वहां पॉपुलर सिनेमा की कोई चमक दमक नहीं थी, वहां समस्याओं से जूझते भारतीय समाज की चिंता थी, वहां भूख और गरीबी के खिलाफ रचनात्मक हस्तक्षेप था, वहां सामाजिक अन्याय की बातें थीं, सदियों से शोषित होती चली आई नारी की पीड़ा को पर्दे पर साकार रूप देने की आकांक्षा थी सत्यजीत रे के सिनेमा में।

मुंबई सिनेमा की मार धाड़, उसका नाच गाना और उसका स्वप्निल संसार एक छोर पर है और दूसरे छोर पर है सत्यजीत रे का

यथार्थवादी सिनेमा। आइए एक नजर डालें सत्यजीत रे की सिने यात्रा पर। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता के एक सांस्कृतिक परिवार में हुआ था। फिल्मों का शौक सत्यजीत रे को बचपन में ही लग गया था। उन्हें वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का शौक भी लग गया और पेंटिंग का भी। अपनी मां के कहने पर सत्यजीत रे सन 1940 में शांति निकेतन आ गए। वे चित्रकला के छात्र बनकर यहां आए थे। सन 1942 में वे शांति निकेतन छोड़कर अपने घर चले आए। सन 1943 सत्यजीत रे ने डीजे कीमर नामक एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जूनियर विजुलाइजर का काम शुरू किया। 13 साल तक सत्यजीत रे इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बने रहे। इसी दौरान सत्यजीत रे ने शौकिया तौर पर पटकथाएं लिखना शुरू किया। रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी घोरे बायरे पर आधारित पटकथा इन्हीं दिनों सत्यजीत रे ने लिखी थी। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने सन 1950 में उन्हें लंदन हेडक्वार्टर भेज दिया। 6 महीने के लंदन प्रवास में सत्यजीत रे ने विक्टोरिया देसीका की फिल्म बाइसाइकिल थीफ देखी और इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब सत्यजीत रे ने यह तय कर लिया था कि वे शौकिया कलाकारों को लेकर एक यथार्थवादी फिल्म जरूर बनाएंगे। उन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कृति पाथेर पांचाली के अधिकार खरीद लिए। तलाश थी एक फाइनेंसर की। प्रोड्यूसरों को प्रभावित करने के लिए सत्यजीत रे अपने साथ एक नोटबुक लेकर जाते थे जिसमें पाथेर पांचाली के कुछ अहम दृश्यों के रेखा चित्र बनाए हुए थे। 2 साल तक सत्यजीत रे प्रोड्यूसरों की तलाश में भटकते रहे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार निराश होकर सत्यजीत रे ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी गिरवी रख दी। कुछ पैसा मित्रों और रिश्तेदारों से मिला और 27 अक्टूबर 1952 को रविवार यानी दफ्तर की छुट्टी के दिन पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया गया। जैसा कि हमने आपको बताया 27 अक्टूबर 1952 को सत्यजीत रे ने फिल्म पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया था। ये वो दृश्य है जिसमें अपू दुर्गा के पीछे काश के खेत में से भागता है। काश एक बहुत ऊंची सी घास होती है। ये दोनों लोग खेतों में से भागते हुए जा रहे हैं पहली बार गांव के नजदीक से गुजरती छुप छुप रेलगाड़ी को देखने के लिए। सत्यजीत रे को ये लगा था कि ये दृश्य बहुत ही प्रभावी होगा और इसके जरिए उन्हें पाथेर पांचाली के प्रोड्यूसर मिल जाएंगे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत आसान नहीं था। अपू की भूमिका के लिए कलाकार को ढूंढना सत्यजीत रे के लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन छापे। सैकड़ों लोग इसके लिए ऑडिशन देने के लिए आए लेकिन आखिरकार सत्यजीत रे को दक्षिण कलकत्ता के एक फ्लैट के पास बिजोया खेलता हुआ दिख गया और बस उन्हें लगा कि यही है उनका अपू। इसी दौरान बिमल रॉय ने सलील चौधरी की कहानी पर बनाई अपनी यथार्थवादी फिल्म 2 बीघा जमीन, जिसे सन 1954 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री अवार्ड मिला।

0: दो बीघा जमीन और कुरुसावा की रोशोमन ने यथार्थवादी सिनेमा पर सत्यजीत रे का विश्वास प्रबल कर दिया। बहुत मुश्किलों से बनी फिल्म पाथेर पांचाली आखिरकार 26 अगस्त को कलकत्ता में प्रदर्शित हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब रही। सन 1955 में कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने स्पेशल जूरी अवार्ड जीता और सत्यजीत रे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार बन गए।
1: सोनार मानुष भासछे रसे, सोनार मानुष भासछे रसे।
0: पाथेर पांचाली की कामयाबी ने सत्यजीत रे को नई ऊर्जा से भर दिया। पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार, ये तीनों

0: अपू त्रयी के नाम से विख्यात हैं। सन 1981 तक हर साल सत्यजीत रे अपनी एक फिल्म जरूर लेकर आए। सत्यजीत रे की फिल्म यात्रा सिने इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। सन 1958 में आई परश पाथर, इसी साल आई जलसा घर, 1960 देवी, सन 1961 तीन कन्या, सन 1962 कंचनजंगा, सन 1963 महानगर, 1964 में आई चारुलता, 1968 में आई गोपी गायन बाघबाइन, सन 1977 में आई उनकी हिंदी फीचर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद की कहानी पर उन्होंने अपनी एक टेलीफिल्म भी बनाई सदगति, सन 1984 घरे बाई रे, सन 1989 गणशत्रु। 1984 के बाद कुछ साल सत्यजीत रे अपनी बीमारी की वजह से सिनेमा से दूर रहे। सन 1989 में उन्होंने इप्सन की कृति एनिमी ऑफ द पीपल पर अपनी फिल्म बनाई गणशत्रु, इसके अगले वर्ष शाखा प्रशाखा और सन 1991 में आई सत्यजीत रे की अंतिम फिल्म आगंतुक। सत्यजीत रे ने अपनी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर बनाई थीं। सन 1992 में सत्यजीत रे को लाइफटाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड मिला था। इसी साल उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का लेखन जानी मानी लेखिका शमा जैदी ने चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी के साथ किया था। मैंने शमा जैदी और जावेद सिद्दीकी दोनों से बातें की। शमा जैदी ने हमें बताया,
1: बंसी चंद्रगुप्त उनके आर्ट डायरेक्टर थे
0: जी,
1: तो जावेद और मेरे वो बहुत दोस्त थे, वो तो उनके यहाँ हम जाके
0: जावेद सिद्दीकी साहब जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में आपके
1: तो
0: साथ
1: मैं उनके साथ जाती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम चलो, सत्यजीत रे आए हुए फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बैकग्राउंड मटेरियल मेरे लिए जमा करो, तो काफी मैंने इधर उधर से उनको मटेरियल भी दिया उसके लिए
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा कि तुम डायलॉग भी लिख लो। तो मैंने कहा ऐसी फंसी उर्दू शायद मैं नहीं लिख पाऊंगी, मगर मेरे एक दोस्त हैं, मैं बात करती हूँ उनसे। तो मैंने जावेद से कहा, जावेद ने कहा अरे मैंने कभी फिल्म के लिए लिखा है,
0: उन दिनों वो जर्नलिस्ट थे।
1: हाँ जर्नलिस्ट थे। मैंने कहा नहीं नहीं तुम लिखोगे।
2: अब ये शतरंज भी कंपनी की अमलदारी में आ गई। वैसे मैंने ला मार्टिनेर के कॉलिन साहब से सीखी है, मैं उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाने जाता हूँ ना।
3: अच्छा अच्छा मुंशी साहब, ये दोनों वजहों में फर्क क्या है?
2: नवाज साहब को ज्यादा फर्क नहीं है, या आपका वजीर जो है वो अंग्रेजी खेल में क्वीन यानी मलिका कहलाता है, और दोनों आमने सामने रहती हैं, और प्यादा पहली चाल में दो घर चल सकता है।
3: दो घर?
2: जी हाँ दो घर, और मुखालिफ सिरे पर पहुंच जाए तो मलिका बन जाता है।
3: बात कमाल करते हैं ये अंग्रेज भी। मगर इन तब्दीलियों से फायदा?
2: बाजी झटपट खत्म हो जाती है।
3: क्यों? उन्हें हमारा खेल सुस्त लगता है क्या?
2: जी हाँ, उन्हें हमारी सवारियाँ भी सुस्त लगती हैं, इसीलिए तो रेलगाड़ियाँ आने वाली है।
3: और तार?
2: जी हाँ। तार घर तो कब के आ गए, लेकिन मुझे एक आंख भी नहीं भाते।
3: क्यों?
2: बुरी खबरें जो फौरन पहुँच जाती हैं।
3: बुरी खबरें?
2: आपने कुछ सुना नहीं?
4: हम सुनते उनते कुछ नहीं मुंशी साहब, खेलते हैं।
2: मीर साहब, हंसने से बला नहीं टलेगी। सुना है कंपनी बहादुर अवध पे कब्जा करने वाली है। यही खबर देने को तो हाजिर हुआ था मैं।
5: मुंशी साहब, आप अंग्रेजी वजह की शतरंज खेलते हैं फिर भी अंग्रेजों की चाल नहीं समझ सके। अरे भाई, ये नेपाल में लड़ाई, पंजाब में लड़ाई, अफगानिस्तान में लड़ाई, इन लड़ाइयों के लिए दरकार है पैसा, और कंपनी ठहरी कंगाल, पैसा लाए कहां से?

0: ये हैं चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी, जो सत्यजीत रे से जुड़ी निजी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं।
1: भाई, शतरंज के खिलाड़ी की याद मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट याद है। उसकी वजह यह है कि शतरंज के खिलाड़ी वो फिल्म है जहां से मेरे फिल्मी सफर का आगाज होता है।
0: बिल्कुल,
1: उससे पहले मैंने कोई फिल्म लिखी नहीं थी, मेरा कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया था। और उस जमाने में मेरी दोस्त शमा जैदी ने मुझसे कहा कि सत्यजीत रे तुमसे मिलना चाहते हैं। और पहले तो मैं समझा कि ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये कि फिर मैं सत्यजीत रे से मिलने के लिए गया, जो बॉम्बे में एक होटल में ठहरे हुए थे। बड़ा मैं हैज बहज में था कि मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा है क्या है, लेकिन मैंने जब फोन किया तो एक बड़ी गूंजती हुई आवाज आई, क्योंकि सत्यजीत रे की आवाज जिसे इंग्लिश में बैरिटोन कहते हैं,
0: बिल्कुल
1: वो वैसी एक आवाज थी, बड़ी इम्प्रेसिव
0: जी।
1: और उन्होंने कहा कि कम आप, तो मैं चला गया और उन्होंने वो खुद दरवाजा खोला, क्योंकि वो कमरे में अकेले थे
0: जी।
1: पहली मरतबा मैंने इतना लंबा बंगाली देखा बाल वो कोई 6 फीट से मेरा ख्याल है 1-2 इंच ऊपर ही थे
0: जी हाँ।
1: और एक बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, उसको खादी का कुर्ता पजामा सफेद पहने हुए। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, वो बैठे रहे, मैं उनके सामने बैठ गया। और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो कोई जब सोचते थे तो कोई चीज चबाया करते थे।
0: अच्छा,
1: कभी वो रुमाल का कोना चबाया करते थे, कभी अपने चश्मे का डंडा चबाया करते थे। तो उनके बेचारे सारे चश्मे जितने भी थे वो सब बहुत जख्मी हालत में, वो अपने चश्मे की डंडी चबाते रहे और वो मुझे देखते रहे कुछ देर तक। और फिर कहने लगे कि अच्छा, उनको एक बात मैं बता दूं यूनुस साहब, कि उन्हें इंग्लिश और बंगला के सिवा कोई जबान नहीं आती थी।
0: और ये फिल्म उनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी।
1: पहली और आखिरी हिंदी फिल्म। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम टोल्ड दैट यू आर ए वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मैंने कहा साहब, आई राइट इन उर्दू एंड नोबडी कैन बी ए गुड जज ऑफ हिज ओन वर्क। इफ यू लाइक आई कैन गेट सम ऑफ माई वर्क ट्रांसलेटेड फॉर यू एंड यू कैन हैव ए लुक। तो वो कहने लगे कि नो यंग मैन, आई कैन हैव ए लुक एट यू
0: जी,
1: एंड हियर इज माई स्क्रिप्ट एंड यू आर राइटिंग द डायलॉग।
0: ओहो,
1: तो ये कुल 1.5 मिनट की मुलाकात थी सर। और मतलब वो ऐसी अजीबोगरीब मुलाकात थी कि उसे भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता।
0: बिल्कुल।
1: तो फिर मैं बौखला के फिर मैं भागा हुआ वहां से अपनी दोस्त शमा जैदी के गया और मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बताओ डायलॉग कैसे लिखे जाते। तो वहां से सत्यजीत रे, अच्छा जब हमने डायलॉग लिख दिए तो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हमने जोश में लिख तो डाले, लेकिन जो लोग बाकी लोग इन्वॉल्व थे, खासतौर से हमारे दोस्त बाद में बहुत ज्यादा बन गए सुरेश जिंदल जो प्रोड्यूसर थे
0: जी,
1: वो बेचारे बहुत घबराए हुए थे, पकड़ लिया है पता नहीं कहाँ से। और उसको इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म जिसकी पूरी दुनिया वेट कर रही है, उसके डायलॉग इन्होंने लिखवा लिए। हालांकि उस रेस में दूसरे लोग भी थे, वो जिसे फारसी में

0: कहते ना कुरैफाल बना में मैंने दीवाना जदन, कि वो कुरैफाल जो था वो इस दीवाने के नाम। तो बाहर हमने वो लिख दिए और सुरेश जिंदल साहब ने जो बम्बई में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे खासतौर से उर्दू जानने वाले, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ये वो पता नहीं कौन कौन, उनको बुला के बिठाया और कोई 20 आदमियों की एक महफिल थी जिसमें मैंने वो पढ़ के डायलॉग उनको सुना दी फ्रॉम पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक
1: जी।
0: फिर अब सब चुप थे। वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अजीब गरीब था कि सब चुप बैठे हुए, भाई पता नहीं मैंने पहली बार लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। सडनली उनकी बूमिंग वॉइस मुझे सत्यजीत रे की सुनाई दी और वो बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है जो मैं कभी नहीं भूलता
1: जी,
0: कि आई डोंट नो व्हाट ही हैज रिटन बट इट साउंड्स वेरी गुड।
1: वाह।
0: उसके बाद की यादें भी बड़ी प्यारी हैं कि जब फिर हम, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग उनके करीब थे वो उन्हें सत्यजीत रे या कुछ ऐसा नहीं कहते थे, या मिस्टर रे नहीं कहते थे, हम लोग उन्हें मानिक दा कहा करते थे।
1: बिल्कुल।
0: जो मानिक उनके घर का नाम था और बोधी जो उनकी बीवी हैं वो असल में उन्हें मानिक कहा करती थी, तो सभी मानिक दा ही कहते थे।

0: कुछ दिनों के बाद फिर मानिकदा का फोन आया, कहने लगे भाई वो तुमने डायलॉग तो लिख दिए और वो बहुत अच्छे भी हैं, मैंने कई लोगों से उनको पढ़वा के तर्जमा करा के देखा और बहुत बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका शीन काफ कौन बताएगा, विल यू बी एबल टू बी द डायलॉग डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। तो वो गरीबी का जमाना था, मैंने अरे भाई अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो मैं भाग के फौरन कलकत्ता पहुंच गया। अच्छा फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी। वहां सूरत हाल ये थी कि वो उनके जो बंगाली असिस्टेंट थे वो कलकत्ते के इंद्रपुरी स्टूडियो में एक लखनऊ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर है कि वो इसलिए नामुमकिन था कि वो बेचारे किसी लखनऊ से पहले तो खुद वाकिफ नहीं थे, और दूसरी चीज ये कि लखनऊ हो या यूपी को आप अगर इन जनरल कह लें तो वो एक कल्चर है, वो एक मिजाज है, और कल्चर और मिजाज को आप जब तक आप उसे जिए नहीं, आप उसे बरते नहीं, आप उसे महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये तो क्या हो रहा है भाई, ये तो सब सारी की सारी चीजें गलत हैं। फिर हमने उसमें दखल अंदाजी की कि साहब ये तलवारें ऐसी नहीं होती थी और कपड़े ऐसे नहीं होते थे और ये चलते ऐसे नहीं थे और ये ऐसे होता था वो ऐसे होता था। फिर हम ढूंढते फिरे कलकत्ते में एक एक चीज पुराने जमाने की, क्योंकि 1857 का माहौल था
1: जी।
0: तो मानिकदा बहुत इम्प्रेस हुए हमारी मेहनत से। और तो आप अगर देखें तो उसमें फिल्म में मेरा टाइटल दो मर्तबा आता है, एक मर्तबा एज एन असिस्टेंट स्पेशल असिस्टेंट और दूसरा डायलॉग राइटर।
1: ये बताएं कि जब शतरंज की खिलाड़ी बन रही थी, अब आप उसमें दो तरह से शामिल हो चुके थे, बतौर डायरेक्टर आप उनको कहां किस तरह से पाते हैं?
0: मैं जिस सत्यजीत रे को जानता हूं, मेरा ख्याल ये है कि वो एक बेहद जहीन, बेहद समझदार और फिल्म को महसूस करके बनाने वाला डायरेक्टर था, और ये बहुत ही अहम बात मेरे लिए थी। और उसकी बहुत सारी मिसालें थी। एक तो ये कि वो, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके फोटोग्राफर जो थे, सिनेमाटोग्राफर, वो शोमेंदु रॉय थे, लेकिन ये कि कैमरा ऑपरेट मानिकदा खुद करते थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ, वो हमेशा खुद करते थे, ज्यादातर काम वो खुद ही करते थे, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक वो खुद स्कोर करते, कंपोज करते थे, एडिटिंग पे वो खुद बैठते थे, और कैमरा ऑपरेट भी खुद करते थे। अक्सर हम लोग में से कोई अगर उनको कोई राय दे देता था तो वो उसको बड़े गौर से सुनते थे और उसको करते भी थे। उनमें वो जो एक गुरूर होता है कि साहब मैं सत्यजीत रे हूँ, तो वो मुझे नहीं दिखाई दिया। और कुछ ऐसी बातें भी थी बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग जिन्हें सीखने का हमको मौका मिला। मिसाल के तौर पर ये कि जब मीर का घर बन रहा था सईद जाफरी का, और बंसी चंद्रगुप्त का डायरेक्शन था, तो हम जब वहां पहुंचे सवेरे सवेरे देखने के लिए, तो

0: उन्होंने कहा कि देखिए बंसीदा, और बंगला में बातें कर रहे थे लेकिन एक बंगला समझ में आने लगी थी, वैसे भी आसान जबान है वो। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो मीर के जो हालात हैं वो काफी खराब हैं, और मैं नहीं समझता कि ये जो रंग रोगन है इस हवेली का ये सही है, तो इसको थोड़ी एजिंग की जरूरत है। तो बंसीदा ने कहा कि हाँ मैं एजिंग कर दूंगा। और वो जाने लगे मानिकदा, और जाते जाते उनको वो एक बाल्टी दिखाई दी जिसके अंदर पेंट करने वालों ने इस खौफ से कि ब्रश सूख न जाए वो भिगो दिए थे पानी में, और वो गंदा सा पानी वहाँ पड़ा हुआ था। एंड सडनली ही स्टॉप, और उन्होंने वो ब्रश उठाया और उसको उन्होंने दीवार के ऊपर पेंट करना शुरू कर दिया। और जब वो बहुत ही गंदी मैली सी एक तय चढ़ गई तो उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए, और धब्बे चाहिए मुझे, ताकि ये एहसास हो सके कि इस आदमी की माली हालत जो है वो कैसी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैं कभी नहीं भूलता, डायरेक्शन की जो जहानत होती है वो मैं उसके लिए मैं कोट करूंगा कि एक सेट था, तो उसमें वो मिर्जा साहब जो है वो शतरंज खेलने के लिए आते हैं सवेरे सवेरे, वो आए और वो बाहर एक उस जमाने में ब्रूट हुआ करते थे वो बड़े बड़े मतलब 10K का जो की लाइट होती थी, तो वो एक लकड़ी का घोड़ा बना के और उसके ऊपर रख दी गई थी
1: जी,
0: बाहर की रेज जो है वो अंदर आ सके। तो उन्होंने लाइटिंग जब देखी तो उन्होंने उनसे शोमेंदु रॉय से कहा कि इसको एक 2 फुट ऊपर कर दो। तो जी 2 फीट ऊपर करने वाली बात थी, मुझे तो कुछ इतनी समझ में नहीं आई। तो शोमेंदु रॉय ने कहा ठीक है दादा मैं कर देता हूँ। तो मैं उनके पीछे पड़ गया, मैंने कहा कि मानिकदा ये बताइए आप, वो उससे क्या फर्क पड़ता है लाइट, आपने उसे 2 फुट ऊपर क्यों कराया। तो वो बहुत देर तक टालते रहे, फिर लंच में मैंने फिर उनको घेर लिया, हम सब लोग साथ में ही लंच करते थे। और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो एक मरतबा जब सेट पे आ जाते थे तो पैकअप बोलने के बाद ही सेट से निकलते थे, लंच में भी वो बाहर नहीं जाते, वहीं सेट पर खाना खाते। तो मैंने कहा कि ये आपने क्यों किया, थोड़ा सा चिढ़ गए, कहने लगे तुमने स्क्रिप्ट लिखा है ना, मैंने कहा हाँ, तुमने क्या टाइम लिखा है, क्या वक्त है, सुबह का वक्त है 9:30-10 बजे का वक्त होगा। तो कहने लगे और ये मौसम कौन सा है, महीना कौन सा है, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू अस ये दिसंबर है। तो कहने लगे कि दिसंबर में लखनऊ में 10 बजे सूरज निकलता है, तो सूरज की जो किरणें हैं वो ऊपर से आएंगी, बीच में से नहीं आएंगी।
1: वाह,
0: समझे आप,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सूरज अभी निकला है तो उसकी जो एंगल जो होना चाहिए किरणों का वो हायर साइड पे होगा न कि नीचे। तो ये जो बात थी वो तरीके की, वो मुझे बहुत ही बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। जब भी आते थे यहाँ बॉम्बे में तो 1-2 मुलाकातें उनसे जरूर होती थी, हम उनके घर जाया करते थे, चाय के बड़े शौकीन थे वो।
1: अच्छा,
0: मुझे भी चाय का बड़ा शौक, तो मैं उस लालच में बहुत जाता था उनके घर, क्योंकि उनके कोई एक बहुत चाहने वाले थे जिनका दार्जिलिंग में 30 स्टेट था, तो वो हाथ से तोड़ी हुई चाय की पत्तियां उनको भेजा करते थे, वो ब्लेंडेड या ये नाम वाली चाय नहीं होती थी, और वो चाय का फ्लेवर ही अजीब होता था, और उसको वो बड़े प्यार से बना के वो उसके ऊपर लेक्चर भी देते जाते थे और समझाते भी जाते थे और पीते भी जाते थे, और गुड ओल्ड डेज के ऐसा लगता है कि यादें कल की हैं।
1: सत्यजीत रे ने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई। सन 1971 में उनकी बनाई डॉक्यूमेंट्री थी सिक्किम। इसके बाद सन 1987 में उन्होंने अपने पिता पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई सुकुमार रे। सन 1976 में आई डॉक्यूमेंट्री बाला, और सन 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर पर एक डॉक्यूमेंट्री आई। सन 1972 में उन्होंने द इनर आई नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस तरह सत्यजीत रे न सिर्फ फीचर फिल्में बनाते थे बल्कि डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने में भी उनकी अच्छी खासी रुचि थी। सत्यजीत रे केवल सिनेकार ही नहीं थे, वे चित्रकार भी थे, संगीतकार भी थे और लेखक भी। बच्चों के लिए उन्होंने अपार लेखन किया। 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे इस असार संसार को छोड़कर चले गए। महान फिल्मकार कुरुसावा ने सत्यजीत रे के लिए कहा था, सत्यजीत रे का अवलोकन बड़ा गहरा और खामोश होता है, उनकी फिल्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, वो अपने आप में एक विशाल फिल्म इंडस्ट्री है। अगर आपने सत्यजीत रे का सिनेमा नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपका जीवन वैसा ही है जैसे आप धरती पर तो रहे मगर आपने सूरज और चांद पर नजर नहीं डाली। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

फिल्म संसार के जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रद्धा थवाइत की गीतों भरी कहानी जिंदगी में नून, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का।

फूल, पहाड़, बहती नदियां, कल कल करते झरने, इनके साथ समय बिताना, इन्हें निहारना, इन्हें एक क्षण में सहेज लेना संध्या को बहुत पसंद था। शादी से पहले फोटोग्राफी संध्या का पहला प्यार था। शादी से लगभग 15 साल पहले की बात है, तब वे पहली बार मिले थे जब स्काउट गाइड का जम्बूरी कैंप देहरादून में हुआ था। दिन धुनकी हुई रुई सरीखे उड़े चले जा रहे थे। दिन भर कई कार्यक्रम, फिर रात को कैंप फायर, अंतिम दिन से 2 दिन पहले एक माउंटेनियरिंग इवेंट रखी गई थी जिसमें एक पहाड़ी के ऊपर लगे ध्वज को लाने का लक्ष्य दिया गया था। उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने वालों में हर्षित और संध्या ही थे। हर्षित कुछ आगे ही था और तभी संध्या की चीख सुनाई पड़ी, आह! संध्या का संतुलन बिगड़ा और वो चट्टान की एक खो में फिसल गई। हर्षित दौड़ा दौड़ा आया। उसने नीचे चट्टान की खो में झुककर अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे मासूम सी घबराई संध्या दिखी। मेरा हाथ पकड़ो। हर्षित ने हाथ आगे तो बढ़ाया था, लेकिन संध्या की भयभीत हिरणी सी आंखें, स्ट्रॉबेरी की दो फांकों से होठ और उसके शरबती गेहूं से सुनहरे चेहरे को छिपम छिपाई खिलाते भूरे काले बाल देखकर उसे खींचना ही भूल गया था। वो उम्र भी वैसी ही थी, अनछुई कली सी, मासूम, मंडराते भंवरे सी, शोक। मुझे ऊपर तो खींचो। संध्या ने उनका हाथ खींचा तो उन्हें होश आया। संध्या के खो से निकलने के बाद दोनों फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए, लेकिन ध्वज को पकड़ने के ठीक पहले हर्षित के कदम लड़खड़ा गए। रात को कैंप फायर में संध्या ने हर्षित से पूछा, आप जानबूझकर लड़खड़ाए थे ना? जवाब में एक भेदक मुस्कुराहट थी जिसने संध्या के दिल के गृह बख्तरों को खोल दिया और बर्छी सी उसके दिल में जा चुभी। जब मुस्कुराहट की बर्छी दिल को मरोड़ने लगी, तब एक फुसफुसाता सा जवाब आया, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। एक पल रुककर एक खुले दिल की हंसी की बाढ़ संध्या को बहा ले गई। इस खुले दिल की हंसी ने संध्या के दिल से मुस्कान की बर्छी तो निकाल दी, पर मुंह में इमली रखने पर बार बार चटकारे लेती जबान सी दिल में मीठी मरोड़े उठाने लगी। कैंप से वापस आकर संध्या ने निहारिका टॉकीज में बाजीगर 4 बार देखी थी, 1 बार घर वालों के साथ और 3 बार घर वालों से छुपकर। दूरी ने धीरे धीरे इन मीठी मरोड़ों को धीमा कर दिया और कुछ ही समय में

संध्या ने मान लिया कि ये उम्र के 16वें साल की शरारत थी। भगवान सबकी जिंदगी की स्क्रिप्ट उनके इस धरती में आने के पहले ही लिख लिए होते हैं, जबकि व्यक्ति ये भी नहीं जानता होता कि उसके साथ अगले पल में क्या होने वाला है। 15 साल बाद हर्षित के आईएफएस में चयन होने का पता पाकर संध्या के माँ पिताजी उनके घर गए थे। उन्होंने संध्या को बेहद लाड़ प्यार देकर पाला था, लेकिन उनके लिए भी लड़की के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अच्छे घरवर से शादी ही थी। लड़के वालों को भी आईएफएस लड़की की सोसाइटी में रह सकने वाली लड़की चाहिए थी। संध्या कॉन्वेंट में पढ़ी, अच्छे क्रेडेंशियल्स वाली लड़की थी। खूब धूमधाम से उनकी शादी हुई। हर्षित और संध्या के दिलों में सालों पहले उठी मीठी मरोड़ें उनकी देखने दिखाने की रस्म के दौरान हुई मुलाकात के साथ ही फिर उठने लगी, लेकिन अब की ये मरोड़ें बेहद तीखी थीं। उनकी शादी के बाद शुरुआती सालों का अधिकांश समय विरह में ही बीता। शुरुआत में कुछ महीने ससुराल में ही रहकर सबको जानने समझने की बड़ों की इच्छा का सम्मान, फिर हर्षित का आईएफएस का लंबा प्रशिक्षण इसका कारण बनता रहा। इन शुरुआती वर्षों में उसके लिए सबसे अच्छा समय होता बारिश का। हाँ, जब हर्षित 15 दिन की लंबी छुट्टी लेते, जिससे वो अपने सैकड़ों एकड़ की खेती के कामों से भी जुड़े रह सकते थे और साथ ही इन छुट्टियों में वो आईएफएस अधिकारी न होकर एक किसान हो जाते। वो खेती के अन्य कामों के साथ ही धान रोपने जैसे मजदूरों के कामों में भी जुट जाते। जब वो धान के खेत में मजदूरों के साथ मिलकर धान रोपने लगते तो मजदूरों में भी एक अलग ही जोश भर जाता था। जब हर्षित खेतों में धान रोपते तब संध्या उन्हें किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर एकटक देखती रहती, सोचती रहती। एक बार उसने हर्षित से कहा, सुनो, मेरा भी मन करता है कि मैं साड़ी का फेंटा कस लई मताए धान के खेत की टखनों तक धंसती मिट्टी में फच फच जा घुसूं और धान रोपते हुए माटी की ठंडक और तुम्हारे साथ का आनंद लूं। हर्षित ने कहा, लेकिन तुम बहू हो। उसने भी मान लिया कि बहू का यूं खेतों में धान रोपना अशोभनीय लगेगा। तब से वो हर्षित को धान रोपते देखकर ही खुश होती रही। धान रोपते अपने कसरती बदन में हर्षित संध्या को किसी पहाड़ से लगते, जैसे कल कल करती धाराएं हरे भरे पहाड़ों की चोटियों से हर चार कदम पर किसी जिद्दी बच्चे से मचलती बहती हैं, वैसे ही हर्षित के कसरती बदन से कभी वर्षा की धाराएं तो कभी पसीने की धाराएं बहती रहती। इन जलधाराओं के बीच हर्षित की मछलियां चमकती रहती। जिस दिन हर्षित पानी से भरे खेत में धानी धान का रोपा लगाते, उस दिन धान के लहलहाते पौधों से खुशी से संध्या का मन झूमने लगता। उस खेत के चावल का नमकीन स्वाद तो उसे बाद में मिलता, पर उस दिन हर्षित भी नमकीन हो जाते। संध्या हर्षित से महीनों दूर गुजरने वाली अपनी उबली सब्जी सी जिंदगी में कुछ नमक बुरक लेती।

जब हर्षित अपनी आईएफएस प्रशिक्षण में जंगलों की खाक छानते रहते जहां परिवार को साथ नहीं रखा जा सकता, तब संध्या गांव में अपनी ससुराल में आदर्श बहू का फर्ज निभाती होती। बड़ा घर था, बड़ा परिवार, खेती किसानी के काम, गृहस्थी का हर बंधन मौजूद था। वहां खेती किसानी के दिनों में नौकरों के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी भी निभानी होती थी। खाली समय में घर की महिलाएं अनाज, दाल आदि साफ कराती या सीने पिरोने का काम करती, जिनमें संध्या को कोई रुचि नहीं थी। जिनमें संध्या को रुचि थी वे काम उन सब की नजर में बेमतलब के थे। शादी के शुरुआती दिनों में उसने ससुराल में अपनी पसंद के काम करने की कोशिश की थी। बहू थी तो घर से बाहर अकेले निकल नहीं सकती थी, लेकिन वो बुआ सास को अपने साथ बाड़ी में घूमने के लिए मना लेती। बुआ जी चलिए ना, बाड़ी में घूम कर आते हैं। घूमते हुए वो पेड़ों में चहकती चिड़ियों को देखती, फूलों में मंडराती तितलियों को देखती और अगली बार मायके जाने पर अपना कैमरा लाने की सोचती। पर ऐसा एक दो या शायद तीन बार ही हो सका, फिर बुआ जी ने मना कर दिया। ना बहू, मैं ना जाऊं, बहुत से काम है घर में। बाद में उसने किसी से कहते सुना कि ना जाने बहुत चिड़ियों में जाने क्या ताक झांक करती रहती है। अरे फूलों को देखती है तो देखती ही रह जाती है, मुझे ना जाना उसके साथ। अब संध्या कमरे की खिड़की से ही नजरों की सीमा तक प्रकृति को निहारती रहती। लेकिन यह भी तो एक अच्छी बहू का लक्षण नहीं कि वो जब देखो खिड़की से बाहर निहारती मिले। शादी के कुछ साल बाद जब साथ रहने का वक्त आया तो उनके दिन नई नई गृहस्थी जमाते एक दूसरे को समझते समझाते निकलने लगे। उनका सप्ताहांत अक्सर जंगल के बीच किसी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बीतता जहां दोनों खुशी के बादल में सवार होते। संध्या अपने वन्य जीवन फोटोग्राफी के शौक का भरपूर आनंद लेना चाहती। वो कहती, चलो सुनो, आज जंगल में गहरे और गहरे जाएंगे। लेकिन हर्षित कहते, नहीं, आज तो जहां पना सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे, अपनी बेगम को आगोश में लिए हुए आराम। आखिर इतने दिनों बाद साथ रहने का मौका मिला था। संध्या के हाथ में कैमरा उन्हें अपना रकीब लगता जो उनका समय ले रहा है। समाज में पति पत्नी का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे पत्नी गीली मिट्टी हो और पति कुम्हार, जैसा चाहे वैसा गढ़े। बचपन से लड़कियों की परवरिश भी कुछ ऐसी ही होती है और संध्या भी ऐसी ही थी। धीरे धीरे उसने अपनी इच्छा अनुसार कोई प्लान बनाना छोड़ दिया। रसोई में क्या बनेगा के अलावा किसी और निर्णय के बारे में बिना पूछे सोचना छोड़ दिया। दिमाग के कुछ तालों में दोहरा ताला लग गया।

जिसके प्यार में डूबे हुए उसने जंगल में गहरे उतरने की जिद छोड़ दी। अब हर्षित जब बाहर होते तब भी वो कैमरा लेकर घर के आसपास तक ही निकलती थी। कुछ हर्षित का प्यार, कुछ शौक का, कुछ हद तक ही सही, लेकिन पूरा होना। हर्षित अक्सर कहते, क्या बात है, मेरे साथ से तो तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ती ही जा रही है, क्यों? धत। ये कहते हुए लाज से संध्या के गाल

इन्हे की चमक बढ़ती ही जा रही है, क्यों? धत, ये कहते हुए लाज से संध्या के गाल कचनार हो उठते। कुछ दिनों बाद पता चला कि चेहरे की चमक बढ़ने का कारण सिर्फ हर्षित का साथ मिलना और फोटोग्राफी के शौक का पूरा होना ही नहीं था, अब संध्या को काफी उल्टियां और दूसरी परेशानियां भी हो रही थी। यहां अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी 40 किलोमीटर दूर देहरादून में ही उपलब्ध हो सकती थी। पहाड़ों के लिए 40 किलोमीटर की दूरी बहुत होती है, जबकि गांव के घर से 10 किलोमीटर पर ही राजधानी की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं। हर्षित ने एक रात उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सुनो, तुम्हें अब खास देखभाल की जरूरत है। घर की हजारों जिम्मेदारियों को छोड़कर माँ तो आ नहीं सकती यहां। कुछ दिन के लिए तुम्हारा घर चले जाना ही ठीक रहेगा, है ना? संध्या एक बार घर गई तो फिर वहीं की होकर रह गई। पहले शिवम के जन्म से पहले के 7 महीने, फिर शिवम के लगभग साल भर का होने तक वो गांव में ही रही। उसके बाद उसने कुछ ही महीने हर्षित के साथ उसकी पोस्टिंग वाली जगह पर बिताए ही थे कि मौली के आने की आहट आ गई। फिर लगभग 1.5 साल ससुराल में निकल गया उसका। दोनों बच्चों के साथ जब वो अंततः हर्षित के साथ रहने लगी, तब मौली 1 साल की और शिवम 3 साल का हो चुका था। इतने लंबे समय तक ससुराल के बंधनों में रहते हुए शादी से पहले की संध्या अब पूरी तरह खो चुकी थी। उसके अनजाने ही सारे तालों की चाबियां भी खो चुकी थी। अब उसकी दुनिया की सरहद घर तक, नजरों की सरहद पांव तक, दिमाग की सरहद घर के कामों तक ही सीमित थी, जिसमें किसी भी नए विचार का आगमन निषिद्ध था। पर वो दुखी नहीं थी, उसने अपनी इस जिंदगी को भी खुशी से स्वीकार कर लिया था।

0: दो बच्चे और संध्या एक अकेली जान। हर्षित तो अक्सर दौरे पर ही रहते। यूं तो उसकी मदद के लिए बहुत सारे नौकर थे, पर बच्चों का काम नौकरों से करवाना खुद संध्या को कभी पसंद नहीं था। वो सुबह बच्चों को ब्रश कराने से लेकर उन्हें नहलाने, तैयार करने, स्कूल छोड़ने, लेने जाने, खाना खिलाने, सुलाने, पढ़ाई करने जैसे सारे काम खुद ही करती। अब सारे दिन उसे चैन की सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। कभी किसी नाजुक पल में उसे याद आता कि बहुत महीनों से कैमरा बाहर ही नहीं निकला, कहीं उसके लेंस में फफूंद न लग जाए, तो वो कभी कैमरा निकालकर उसे झाड़ती, पोछती और कैमरे को अपने हाथों में थामे उसे सहलाने, उसे महसूस ने बैठ जाती। कैमरा अंदर रखते हुए अक्सर एक लंबी सांस छूट जाती उसकी। धीरे धीरे ये अंतराल बढ़ता गया। एक बार कैमरे का ध्यान आया तो ये याद ही न आया कि वो रखा कहां है। संध्या ने भी ज्यादा कोशिश नहीं की। जब कैमरा मिला तब तक वो खराब हो चुका था। फिर भी कभी कभी किन्हीं नाजुक लम्हों में फोटोग्राफी को लेकर एक टीस सी मन में उठ जाया करती। धीरे धीरे इस टीस की जगह एक खालीपन ने ले ली थी। हर्षित कहते, सुनो, सारे ऑफिसर्स की वाइफ शॉपिंग करती हैं, किटी पार्टीज करती हैं, तुम भी चले जाओ ना, मन लग जाएगा तुम्हारा।
1: वे सब बहाने से अपने गहने कपड़ों की नुमाइश करती है बस, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के इस माहौल में मेरा दम घुटता है हर्षित।
0: उनकी बातें संध्या को आकर्षित नहीं करती थी। अब उसे सिर्फ हर्षित की पसंद, शिवम के प्रोजेक्ट्स, मौली के साथ खेलना, यही याद रह गया था। शादी के एक साल बाद संध्या हर्षित के साथ कश्मीर गई थी। कश्मीर की हरी भरी वादियों में वो खो गई थी। वापस आते हुए भी वो रोड के दोनों ओर फैले धान और मक्के के खेतों की हरियाली में चिनार की ऊंचाई में गुम थी। लेकिन जवाहर सुरंग पार करते ही सामने खुशहाल हरियाली की जगह भूरे तीखे पहाड़ सामने थे, जैसे किसी ने हरियाली का सुख अचानक से छीन लिया हो। ऐसा ही संध्या के साथ अब भी हुआ। जब बच्चे बड़े हो गए, अब उन्हें दैनिक कार्यों में मम्मी की जरूरत नहीं थी, पढ़ाई कराने के लिए मम्मी की जरूरत नहीं थी, अब उनके खाली समय को आनंद से भरने के लिए मम्मी की गोद की जरूरत नहीं थी। संध्या का अंदरूनी खालीपन उतना ही बढ़ता गया जितना वो बाहर के कामों में खाली होती गई। अब वो कभी मौली को अपने साथ बिठाकर लाड़ करना चाहती तो कहती,
1: मौली बेटा इधर आना, मम्मा मम्मा मैं गेम खेल रही हूं अभी,
0: तो कभी,
1: मम्मा मैं अभी सहेलियों के पास जा रही हूँ। हाँ,
0: वो कभी पढ़ाई में तो कभी प्रोजेक्ट में, कभी कुछ तो कभी कुछ, बस व्यस्त होती। शिवम और भी बड़ा हो चुका था। मम्मी उसके लिए सिर्फ एक मम्मी मैटेरियल ही रह गई थी, जिनसे अपनी फरमाइशें पूरी करवा सकते हैं पर अपनी परेशानियों का हल नहीं पा सकते।

संध्या की भी गलती थी कि न तो कभी उसने उन्हें बताया न ही हर्षित ने कि वो अपने समय में वन्य जीवन की एक उभरती फोटोग्राफर थी। पहाड़ों में चढ़ा करती थी, एनसीसी के सबसे अच्छे कैडेटों में एक कैडेट थी। हर्षित, शिवम और मौली संध्या की जिंदगी थे। बेशक उनकी जिंदगी की धुरी भी संध्या ही थी, लेकिन अब संध्या उनके लिए एक ऐसी आदत थी जिसका होना कोई खुशी नहीं देता, पर न होना दुख जरूर देता था। अब बच्चों के पास सारी दुनिया की व्यस्तताएं थी। हर्षित अपने काम में मसरूफ रहते, बस एक वो ही थी जिसे खालीपन काटने को दौड़ता था। इस खाली दिमाग में उसे अब अपने शौक मुंह चिढ़ाते मिलते थे। हर्षित की बच्चों की प्यार में कही बातें भी उसे गहरे में चुभ जाती, बात बात पर उसके आंसू निकल आते। वो खुद भी अपने इन परिवर्तनों से हैरान परेशान होती। जब ऐसा होता, बच्चे हर्षित खींचकर, आप तो बस रोना शुरू कर देते हो, कहते हुए उसे अकेला छोड़ जाते। हर्षित संध्या में आ रहे परिवर्तनों से हैरान था। हंसता खिलखिलाता घर बेवजह दुखों में डूबा सा लगने लगता था। एक बार शिवम को उनके स्कूल से वाइल्ड लाइफ कैंप में ले जाया जा रहा था। हर्षित सेमिनार में भाग लेने बाहर गए हुए थे। संध्या को शिवम ने बताया तो वो उत्साहित हो उठी। उसके अंदर का उत्साह का सूखा हुआ स्रोत छल छल आया था, लेकिन शिवम बेहद परेशान था। ओफो मम्मा, पापा को भी अभी ही जाना था। यदि पापा होते तो वे कैंपिंग के बारे में कितना कुछ बताते मुझे। अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मामा मुझे। शिवम के चेहरे पर परेशानियों का मकड़जाल बिछा था। उसकी परेशानी से अनजान अपने खोए हुए उत्साह की डोर थामते हुए संध्या ने मन ही मन जरूरी सामानों की लिस्ट भी बना ली। उसने कहा, परेशान मत हो बेटा, मैं हूं ना, मैं बताऊंगी तुम्हें। लाओ अभी मुझे लिस्ट दो। अविश्वास की नजर से देखते हुए परेशान शिवम के हाथ से वो लिस्ट लेकर देखने लगी। उस लिस्ट में कुछ गैर जरूरी चीजें थी, जो एक दो जरूरी चीजें छूटी हुई भी थी। उसने अपने उत्साह की रौ में बहते हुए ये बात शिवम से कह दी। शिवम तो पहले से ही परेशान था। उसने ये सुनते ही संध्या के हाथों से लिस्ट ही छीन ली और खींच भरी आवाज में कह उठा, आप क्या जानो मम्मा, कुछ भी मत बोलो, जरूरी नहीं होगा तभी तो लिस्ट में शामिल नहीं होगा। शिवम इतना कहकर अपने पैर पटकता कमरे से चला गया। संध्या के उत्साह का नवांकुर इन शब्दों से कुचल गया। मैं नहीं जानूंगी वाइल्ड लाइफ कैंपिंग की जरूरतों के बारे में। अपेक्षा हमेशा हर्षित और बच्चों की जिंदगी की धुरी बने रहने की। यदि यही अपेक्षा पूरी होती रहती तो उसे जवानी में खुद से की गई अपेक्षाएं शायद याद भी नहीं आती। धुरी वो अब भी थी, लेकिन पहियों को यह एहसास खत्म हो गया था कि वे किसी धुरी की बदौलत ही आराम से चले जा रहे हैं। अपेक्षा अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करने की, अपेक्षा उस आनंद की जो वो अपना शौक पूरा कर पाती थी। उसने उम्र के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने निजी आनंद की पोटली राह में कहीं फेंक दी थी, जिस तक पहुंचने की कोई राह उसे मिल ही नहीं रही थी। उसने राह ढूंढने की कोशिश की तो पाया कि वो तो खुद से ही बंधी हुई है। उसका अवचेतन मन पहले भी और अब भी दौड़ना चाहता है, दौड़ता रहा है उस राह में जिसमें उसका एक अस्तित्व है। लेकिन इतने सालों तक चेतन में रस्से से जकड़े हुए, अवचेतन में बंधे बंधे दौड़ते हुए अब वो थक चुकी थी, हताश हो चुकी थी। अब जब उसने चेतन जगत में दौड़ना चाहा, तब वही हताशा उसके जीवन में दुख की काली बदरी बन छा गई। उसके सुख सुविधाओं, प्यार के नीले आसमान को ढकते हुए अवसाद की

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: जब इस अवसाद में दैनिक जीवन अस्त व्यस्त होने लगा तब हर्षित को स्थिति की गंभीरता समझ में आई। हर्षित संध्या को इस झूठे दुख के बादल से बाहर निकालना चाहते। संध्या चलो इस संडे नेचर वॉक पर जंगल चलते हैं, ठीक है? जवाब में मिलता मौन। संध्या चलो मूवी चलते हैं। तुम चले जाओ, मेरा मन नहीं है। हर्षित संध्या को बस पहले की संध्या बनाना चाहते थे। हंसती मुस्कुराती हर परेशानियों का चुटकियों में हल निकालती संध्या को वापस लाना चाहते थे हर्षित। वसंत आ चुका था, वो समय जिसमें प्रकृति अपने पूरे बाहर पर होती है, वो महीना जिसमें संध्या का जन्मदिन आता है। हर्षित ने इस बार संध्या को कोई बड़ा महंगा सा उपहार देने का नहीं सोचा। पिछले कई सालों में उन्होंने संध्या को डायमंड सेट, लग्जरी कार जैसे उपहार देकर खुश करने की कोशिश कर देख लिया था। इस बार वो सिर्फ एक बार संध्या के चेहरे पर उसकी पुरानी असली मुस्कुराहट लाना चाहते थे। बहुत दिनों तक वो सोचते रहे और पुराने दिनों की यादें दोहराते रहे। उस दिन वो ऑफिस से वापस आते हुए भी यही सोच रहे थे। मौसम तूफानी था, तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। अचानक हवा के साथ गुलमोहर के फूल की एक सुर्ख लाल पंखुड़ी कार के सामने के कांच पर आकर चिपक गई। ड्राइवर ने पानी हटाने के लिए वाइपर अपनी पूरी गति से चला रखा था, लेकिन वो पंखुड़ी चिपकी ही रही। हर्षित के मन में आया, जिद्दी पंखुड़ी। इस जिद्दी पंखुड़ी ने यादों का द्वार खोल दिया। हर्षित अपनी आंखें बंद कर उसमें अंदर उतर गए। सालों पहले एक रात लॉन्ग ड्राइव के दौरान रोड किनारे खिले गुलमोहर को देखते हुए हर्षित ने कहा था, भगवान की सोच भी समझ से परे है ना? एक तो अप्रैल में ऐसे ही इतनी गर्मी रहती है, ऊपर से ये सुर्ख लाल गुलमोहर, ओह इसका अंगारों सा चटक लाल रंग तो गर्मी को और बढ़ा देता है। इससे अच्छा तो अमलतास है जो देखने वाले को ठंडक तो देता है, क्यों? तब कुछ देर रुककर संध्या ने कहा था,

मुझे तो गुलमोहर बहुत पसंद है। तपती धूप से लड़ते गुलमोहर को देख और अंधेरी रात में माणिक से चमकते गुलमोहर को देख मेरे होठों पर मुस्कुराहट अपने आप चली आती है।

हर्षित ने आंखें खोलकर सामने कांच को देखा। गुलमोहर की लाल सुर्ख पंखुड़ी अब भी चिपकी हुई थी। हर्षित के चेहरे पर खजाना खोज लेने की मुस्कुराहट आ गई हो जैसे। उन्होंने तय कर लिया कि संध्या के इस जन्मदिन में वो उसे गुलमोहर के लाल सुर्ख फूलों का गुच्छा देंगे। संध्या के जन्मदिन के दिन हर्षित एक दौरे से लौटते हुए उसके लिए गुलमोहर के फूलों का गुच्छा लेने जंगल में गुलमोहर के एक पेड़ के किनारे रुके। जब वे पेड़ के पास गए तो उस गुलमोहर के पेड़ की कोटर में नीलकंठ के छोटे छोटे बच्चे दिखे। वो उल्टे पैरों वापस लौट गए और संध्या को सरप्राइज गिफ्ट देने उस निपट जंगल में ले आए। खुद पेड़ से सट गए और आंखें बंद कर आगे बढ़ती संध्या का वीडियो शूट करने लगे। संध्या ने आंखें खोली, जब नीलकंठ के छोटे छोटे बच्चों को कोटर में चहकते देखा, उसके चेहरे पर सैकड़ों जुगनू जैसे एक साथ चमक उठे। यही वो पल था जिसने संध्या को उस खोई हुई खुशी वापस लाने का रास्ता दिखाया, इसे पाने की राह खुद बनाने की हिम्मत दे दी। दूसरे ही दिन सुबह संध्या ने हर्षित से चाय पीते हुए कहा, सुनो, मुझे नेचर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी फिर शुरू करनी है। यही वो पल था जिसने हर्षित को एहसास कराया कि उसकी पुरानी हस्ती खिलखिल

लाती चहकती संध्या कैसे वापस आ सकती है। फेसबुक और व्हाट्सएप तो वो समय बिताने को चलाती ही थी, इस बेमतलब के समय काटने के शगल ने सार्थक उद्देश्य पा लिया। अब संध्या ने कई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वाले ग्रुप्स ढूंढे और उनकी सदस्य बन गई। धीरे धीरे परिचय बढ़ा, अपने ही शहर में एक नेचर क्लब और फोटोग्राफी क्लब का पता चला। उसके कुछ सदस्यों से पहचान हुई, कुछ दिनों में वो अपने शहर के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्लब की सदस्य बन गई। उसके कार्यक्रमों में जाने लगी। अपनी इस रुचि में व्यस्त होने से रोती चिड़चिड़ाती संध्या अब हंसती मुस्कुराती संध्या में बदलने लगी। परीक्षा का अवसर तो तब आया जब 6 महीने बाद क्लब की 15 दिन की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हुआ। संध्या ने वहां जाने के लिए रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन अंतर्द्वंद में घिर गई। कहीं मैं पति और बच्चों के हक के समय को अपने शौक को पूरा करने में देकर गलत तो नहीं कर रही? यूं भी अपनी खुशी के साथ ग्लानी को जीना आम भारतीय औरत की सदियों की कंडीशनिंग है। संध्या भी इससे अलग नहीं थी। उधर हर्षित के लिए भी ये पहली बार था कि संध्या इतने दिनों के लिए घर के लोगों से अलग लगभग अनजान लोगों के साथ बाहर जा रही थी, लेकिन उन्हें खिलखिलाहट की और वापस लौटती संध्या की ललक भी थी। एक शाम जब वे डूबते सूर्य की लालिमा में अपाद मस्तक नहाए अपने अपने अंतर्द्वंद्वों से जूझते हुए चाय पी रहे थे, तब हर्षित ने भावुक होते हुए कहा, सुनो, मुझे समझ आ गया है कि वन्य जीवन फोटोग्राफी तुम्हारे लिए खुद को पाने का माध्यम है ना? तुम्हारी खुशी है इसीलिए मैं तुम्हें जंगलों में जाने की अनुमति तो दे रहा हूं, पर इसके लिए खुद को किस कदर मना रहा हूं ये मैं ही जानता हूं। संध्या अपने अस्तित्व को अपने परिवार में खो देने की हद तक भूल जाने वाली संध्या ने जब हर्षित के मुख से उसके प्रति हार्दिक प्यार और चिंता से उत्पन्न ये वाक्य सुना तो वो अपनी स्वतंत्रता के प्रति विशेषाग्रही हो उठी, लेकिन इसके वास्तविक अर्थ में ना जाते हुए तुनक कर कह उठी, क्या मतलब? तुम मुझे जाने की अनुमति दे रहे हो? मतलब यदि तुम मुझे जाने की अनुमति न दो तो मैं कैंप में नहीं जा सकती? संध्या के लिए बरसों पहले खो गए और अभी नए नए मिले अस्तित्व की स्वतंत्रता बहुत प्यारी हो उठी थी, और उतनी ही प्यारी हर्षित के लिए संध्या की वापस लौटी हंसी थी। जब संध्या तुनकती तो अपनी सुतवा नाक कुछ ऊपर की ओर सिकोड़ लेती, उसके माथे पर सलवटे पड़ जाती, उसकी भूरी नीली तीखी कटारी सी आंखों में बिजलियां कौंधने लगती। हमेशा से इस तुनके रूप में वो हर्षित को और भी प्यारी लगने लगती। हर्षित को लगा जैसे सालों बाद उसने संध्या का ये तुनका रूप देखा है, वरना इन दिनों संध्या जो बर्फीली ठंडक ओढ़े रहती वो हर्षित की रूह तक को कपकपा देती थी। पहले जब संध्या ऐसे तुनकती थी तब हर्षित उसे जल्दी मनाते नहीं थे, बल्कि उसे और चिढ़ाते, मजा लेते, फिर चुटकी बजाकर मना भी लेते। वो जानते थे कि संध्या उनसे अधिक देर नाराज नहीं रह सकती। लेकिन उस दिन हर्षित कुछ देर संध्या को मंत्रमुग्ध सा देखते रहे, लेकिन फिर आग में और घी डालने की जगह उन्होंने मुस्कुराते हुए खुद की गलती सुधार कर कहा, अनुमति नहीं सहमति, अब ठीक है ना? ये सुनते ही संध्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। हर्षित को लगा जैसे बरसों से सूखा पड़ा पहाड़ी नाला अपनी ठंडी फुहारों से सराबोर करता छल छलाता सब बहने लगा है, जिसकी फुहारों से वो आपात मस्तक ही नहीं दिल की गहराइयों तक भीग गए। शिवम और मौली के लिए भी घर पर मम्मा की अनुपस्थिति को स्वीकारना बहुत मुश्किल था। घर में उनकी हर जरूरतों का ध्यान रखने वाली मम्मा अब कई दिनों के लिए बाहर रहती, उन्हें कई काम खुद से करने पड़ते थे। मम्मा की अनुपस्थिति ने उन्हें मम्मा के महत्व का एहसास करा दिया। इसी कैंप से वापस आने के बाद जब संध्या की खींची एकदम शुरुआती फोटो में से एक फोटो जिसमें एक मम्मा घड़ियाल अपने 25 बच्चों को अपनी पीठ पर चढ़ाए हुए नदी के पानी में तैर रही थी ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फोटो का खिताब अपने नाम किया, तो संध्या की चर्चा समाचार पत्रों तक में हुई। स्कूल में टीचर्स और

बच्चों ने भी उन्हें बधाई दी तो उन्हें पापा की तरह मम्मा का भी एक स्वतंत्र और खास व्यक्तित्व महसूस होने लगा था। उनकी निगाहों में माँ के लिए भी गर्व दिखने लगा। अब इसके बाद से उन्होंने मम्मा की कुछ दिनों की अनुपस्थिति को आवश्यक और महत्वपूर्ण मान स्वीकार कर लिया। हर्षित के लिए भी ये सहज नहीं रहा। संध्या पर निर्भर हर्षित पल पल उसकी कमी महसूस करते। कभी कभी वे कह उठते, सुनो मेरा तौलिया लाना, फिर अपनी जबान काट लेते। अलमारी में सामने ही रखी चीजों को कभी कभी उन्हें देर तक ढूंढना पड़ता। पहले तो वो तुरंत संध्या को कॉल कर देते, पर जब संध्या ने कह दिया कि हर छोटी छोटी चीज के लिए उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए, तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि यूं छोटी छोटी बातों के लिए संध्या उसके ऑफिस फोन करती तो। अब तक उन्हें लगता था कि सारे कामों के लिए तो नौकर हैं, संध्या को खास कुछ करना ही नहीं होता। लेकिन जब सलीके से चलता घर संध्या के जाते ही बेसलीका होने लगा, तब उन्हें भी संध्या के कामों का, उसके प्रबंधन का एहसास हुआ। वो भी तो संध्या की खुशी ही चाहते थे। भले ही पहले इसके लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन जब संध्या ने रास्ता ढूंढ लिया तो उन्होंने उसके शौक को पहले बेमन से फिर सहर्ष स्वीकार कर भी लिया। अब संध्या का फोटोग्राफी का शौक जुनून बन चुका है। वो अक्सर सप्ताहांत में छोटे छोटे ट्रिप बना लेती है। इन ट्रिप्स में हर्षित और बच्चे उसके साथ ही होते हैं, लेकिन वो साल में दो बार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी क्लब की 15 दिन की वर्कशॉप में भी जाती है। हर्षित कहते हैं, जब मुझे और बच्चों को घर छोड़कर 15 दिनों के लिए जंगलों की खाक छानने निकल जाती हो तो हमारी जान भी तुम्हारे साथ ही चली जाती है संध्या। हर्षित कहना चाहते थे पर कहते नहीं। हर पल मेरा दिल अजीब सी आशंकाओं से पतझड़ के सूखे पत्ते की तरह कांपता रहता है। उनके बीच ये अलिखित समझौता था कि यदि 2 दिन तक कोई कॉल न आया तो 3रे दिन हर्षित खुद हाजिर हो जाएंगे। वो रोज कॉल करती, रोज ईमेल करती, जिसमें पूरे दिन का ब्योरा होता। एक तरह से वो ईमेल में अपने सारे संस्मरण, यात्रा ब्योरे, या यूं कहें तो डायरी ही लिखती थी, जिसमें से जिंदगी छलकती होती।

इस बार संध्या को टूर पर गई 10 दिन हो गई। रात ने अपनी चादर उड़ाकर दुनिया को सुला दिया, लेकिन हर्षित और संध्या दोनों अलग अलग जगह चांद को देखती जागती रही। जब संध्या के इंतजार के दिन थे तब खतों का सहारा हुआ करता था, तब हर्षित ने कहा था, तुम हर रात 10 बजे चांद को देखा करना, मैं तुम्हें रोज चांदनी के तारों से प्रेम संदेश भेजूंगा और तुम भी मुझे भेजना। हम्म, अब संध्या ईमेल करती है और हर्षित इंतजार करते हैं उन संदेशों का जिन्हें वे चांदनी के तारों से नहीं भेज सकते। हर्षित संध्या का मेल आते ही लैपटॉप लेकर बैठ गए। सामने लैपटॉप की स्क्रीन के सफेद पर्दे पर संध्या के लिखे काले अक्षर चमकने लगे। कल मैं गांव के पास के जंगल में रोज की तरह किसी अच्छे फोटोशूट की आशा में गई थी। वहां मैंने नाले के तट की रेतीली जमीन पर छोटे छोटे पंजों के निशान देखे। हाँ, मुझे लगा कि ये निशान किसी तेंदुए के होने चाहिए। मैं सतर्क होकर आसपास के पेड़ों की शाखाओं पर निगाहें दौड़ाने लगी कि कहीं वह चोर शिकारी मेरे ही आसपास के किसी पेड़ पर तो छिपा नहीं बैठा है। एक बुजुर्ग आदिवासी बाबा मेरे लिए यहाँ गाइड का काम कर रहे हैं, हर्षित, उन्होंने कहा। माँ, अपना कैमरा संभाल लो, तुमको कई अच्छे फोटो मिल जाएंगे। यहाँ कोई शेर का बच्चा अपनी माँ से बिछड़कर आया है ऐसा लगता है। मैंने पंजों के निशान दिखाते हुए उनसे कहा, अरे बाबा, ये तो तेंदुओं के पंजों के निशान है ना बाबा? इन छोटे छोटे निशानों के साथ कोई बड़े पंजे के निशान नहीं है। इसका मतलब है कि शेर का बच्चा अकेला ही भटक रहा है। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मुझे उन नन्हे शावक के बहुत सारे फोटो मिल गए। अब तुम ये चिंता मत करने लगना कि वो शावक का बच्चा अकेले कैसे रहेगा। आज उसी जगह पर शेर के पूरे परिवार के पंजों के निशान मिल गए हैं। जैसे वो शावक मुझसे फोटो शूट कराने की जिद में ही सबसे अलग हुआ था। मेरा आज और कल का दिन कमाल कर रहा है हर्षित, कमाल का। और हाँ सुनो, तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि अब मैं बहुत से जानवरों के पंजों के निशान जमीन पर देखकर उनकी पहचान कर सकती हूँ। हाँ, एक जैसे पंजों के निशानों में बारीक अंतर को पढ़ सकती हूँ। इन बाबा को जंगल की बहुत सारी जानकारी है। जो जानकारी इनसे मिल रही है शायद वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिल सकती। हाँ, बच्चों के बिना इतने दिन रहना बहुत मुश्किल होता है। उनकी बहुत याद आती है हर्षित, और तुम्हारी तुम्हारी याद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, इतनी सी याद भी नहीं। तुम हर पल मेरे साथ होते हो, मेरी जिंदगी। तुम्हारे उस जन्मदिन के उपहार ने मेरी जिंदगी बदल दी। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी हर्षित। हाँ, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, वरना मैं तो खुद को खो ही चुकी थी और अपनी गलतियों से बच्चों को भी दूर करती जा रही थी। तुमसे जल्दी से जल्दी मिलने के इंतजार में। हाँ, तुम्हारी संध्या। हर्षित ने मुस्कुराते हुए ईमेल की आखिरी दो लाइनों को पढ़ा और दोहराया, तुम्हारी संध्या, तुम्हारी संध्या। फिर संध्या को सोचते हुए मुस्कुराते हुए साइन आउट कर दिया था। उनके सामने संध्या

का आश्चर्य में डूबा, खुशी के दरिया में आखंड तैरता मालती के फूल सा चमकता चेहरा कंप्यूटर के स्क्रीन पर मुस्कुरा दिया। हर्षित ने यह फोटो उस वीडियो से स्नैपशॉट की थी जिसकी रिकॉर्डिंग उसने संध्या को उसका पसंदीदा उपहार देते समय की थी, वो पसंदीदा उपहार जिसके लिए भगवान ने उसे माध्यम बनाया था। यूं तो ईश्वर भी उसे ही माध्यम बनाते हैं जो माध्यम बनना चाहें, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है ना। हर्षित के उपहार के माध्यम से असली उपहार संध्या ने खुद खोजा था। उसने अपनी जिंदगी का क्लाइडोस्कोप ऐसा घुमाया कि जिंदगी अनोखे रंगों और आकल्पनों से सज गई। इसने संध्या को पहले वाली संध्या बना दिया। उसके जुनून ने उसको खुशी से मिला दिया कि एक जुनून जरूरी है जिंदगी में नून यानी नमक के लिए। हाँ, एक जुनून जरूरी है जिंदगी में नून यानी नमक के लिए, यानी नमक के लिए जिंदगी।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। जी दोस्तों, चित्रपट संगीत की शुरुआत कर रहे हैं इस गजल के साथ। गायिका हैं जगजीत कौर, फिल्म का नाम है बाजार। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

और आइए अब सुनते हैं खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में शहरयार की रचना, स्वर तलत अजीज का, और फिल्म का नाम है उमराव जान।

खय्याम साहब के ही संगीत निर्देशन में हम आपको जानेसार अख्तर की रचना सुनवा रहे हैं। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है शंकर हुसैन।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: जी हाँ दोस्तों, आपकी चिट्ठियों का हमें बेसब्री से इंतजार है। आज ही सुनेंगे आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत दोपहर 3 बजे।

यह अवस्थी चित्रा सिंह की फिल्म का नाम था साथ साथ। इसे लिखा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी कुलदीप सिंह ने। और लीजिए अब सुनिए आशा भोसले के साथ भूपेंद्र को, फिल्म का नाम है एतवार। इस गीत को हसन कमाल ने लिखा है और धुन बनाई है बप्पी।

पेशे खिदमत है कार्यक्रम की आखिरी गजल। मदन मोहन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है आज का मैटिनी शो। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम की ये है पहली कड़ी और इस कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ फिल्मी गपशप। क्यों, कैसा रहेगा दोस्तों? अच्छा रहेगा ना? देखिए ना, दोपहर का वक्त है और ऐसे समय में अगर हल्की फुल्की गपशप हो जाए तो कहने ही क्या। अच्छा, हम आपको बता दें कि आपको पता ही है कि कल 1 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया था, है ना? तो क्यों ना आज इसी पर हम मैटिनी शो कर लेते हैं। देखिए ना, मजदूरों की मेहनत, संघर्ष और उनकी मजबूरियों को दर्शाने वाली कितनी ही बेहतरीन फिल्में बनाई गई हैं ना, जो समाज के इस अहम वर्ग की कहानी को बयां करती हैं। तो हमारी बहुत सारी फिल्में इसी श्रम पर बनी हैं। चलिए तो आज के इस कार्यक्रम में कुछ समय उन आइकॉनिक फिल्मों के लिए निकालते हैं जो मजदूरों के अधिकारों और संघर्ष के बारे में बताती हैं, श्रम के महत्व के बारे में बताती हैं। सबसे पहले 1957 की फिल्म नया दौर की बात करते हैं। जी हाँ, वही नया दौर। इसके गीत तो आप सभी को बहुत पसंद हैं। इस फिल्म को भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर माना गया है और इस फिल्म में दिलीप कुमार अपने साथी मजदूरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। इस फिल्म में दिलीप कुमार, वैजयंती माला अपने अद्भुत अभिनय से हमारा मन मोह लेती है और इस फिल्म का ये गीत साथी हाथ बढ़ाना एक अमर गीत बन गया हो जैसे।

0: बढ़ाना।
1: फिल्म नया दौर में अभी आपने मोहम्मद रफी आशा भोंसले को सुना, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और ओपी नैयर साहब की धुन थी ये। दोस्तों, दुनिया भर में हर साल हर दिन यानी साल का जो पहला दिन है मई का, उसे हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अन्य दिनों में इस वर्ग के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि ये वर्ग इतना अहम है हमारी जिंदगी के लिए कि बड़े पर्दे पर हमेशा से ही आम आदमी के जीवन और उससे जुड़ी समस्याओं को बखूबी दिखाया गया है। अगर हम हिंदी फिल्मों की बात करें तो पुराने समय से ही फिल्मों में मजदूर और उसके संघर्ष को फिल्माया गया है। समाज में अपना अहम योगदान देने वाले इन मजदूरों के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिनका जिक्र हम अक्सर करते हैं और ऐसी फिल्मों को हम पसंद भी करते हैं, और ये फिल्में अपने समय की आइकॉनिक फिल्में बन गई हैं और इन फिल्मों को हम कभी नहीं भूल पाते हैं। अगर 1953 की फिल्म दो बीघा जमीन की मैं बात करूं तो आप जरूर मेरे हाँ में हाँ मिलाएंगे, है ना। देखिए, 1953 में ये फिल्म आई थी, दो बीघा जमीन, बिमल रॉय की फिल्म थी और बड़ी ही क्लासिक फिल्म थी। एक किसान अपनी जमीन बचाने के लिए शहर में रिक्शा चलाने के संघर्ष पर ये पूरी फिल्म बनाई गई, जो श्रमिक वर्ग की परेशानी को बहुत ही मार्मिकता के साथ दिखाती है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।
2: भाई रे,
1: ये स्वर लता मंगेशकर मन्ना डे और साथियों के हैं, दो बीघा जमीन के लिए। शैलेंद्र ने इसे लिखा और सलील चौधरी ने संगीत में ढाला।
2: तू गहरी

जी हाँ, तो इस समय हम मैटिनी शो पर बात कर रहे हैं, आज मजदूरों पर, श्रमिकों पर और श्रम पर। आप सभी जानते हैं एक फिल्म आई थी बूट पॉलिश, 1954 में बनी, राजकुमार की, राज कपूर साहब की, क्षमा कीजिए, ये फिल्म जो थी गरीबी, अभाव और विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी, आत्मसम्मान और मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाती है। ये फिल्म बच्चों के संघर्ष और उनके जज्बे की अमर कहानी है। बूट पॉलिश फिल्म आपने देखी होगी और जरूर आप बच्चों के अभिनय से प्रभावित हुए बिना नहीं रह गए होंगे, है ना। फिल्म में जो पात्र थे भोला और बेलू, वो अभावों में भी भीख मांगने से इंकार करते हैं और बूट पॉलिश करके अपनी मेहनत की रोटी कमाने का रास्ता चुनते हैं। लेकिन अगर हम अब देखें श्रोताओं, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि भारत में बाल श्रम अधिनियम जो है 23 दिसंबर 1986 को आधिकारिक रूप से लागू हुआ था। और इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों और प्रतिक्रियाओं में काम करने से हमें रोकना है। और इसका संशोधन 2016 में हुआ था, जिसमें ये संशोधन किया गया कि बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन 1986 के रूप में जाना जाए। और हाँ, अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्ण निषेध और 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक व्यवसायों में काम करने पर

0: पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वो गंगा जी नहलाते हैं।
1: हम पेट का मंत्र पढ़ते हैं, जूते का मुंह चमकाते हैं।
0: पंडित को पांच चवन्नी है,
1: अपनी तो एक ही कन्नी है।
0: फिर भेदभाव ये कैसा है,
1: जब सबको प्यारा पैसा है।
0: कुछ समझ न

ये था बूट पॉलिश फिल्म का गाना मन्ना डे, मधुबाला झवेरी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम बूट पॉलिश तो था ही, शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और शंकर जयकिशन ने इसको संगीत में ढाला था। और जब बात मैटिनी शो में हम बात कर रहे हैं श्रमिक वर्ग की, तो एक फिल्म आई थी पैगाम, 1959 में ये फिल्म आई थी और SS वासन द्वारा निर्देशित। इस फिल्म में दिलीप कुमार और राज कपूर ने बहुत ही बखूबी काम किया था। राजकुमार इस फिल्म में थे और ये औद्योगिक मजदूरों और मिल मालिकों के बीच के वर्ग संघर्ष को दर्शाती हुई ये फिल्म थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

पैगाम फिल्म का गीत अभी आपने मन्ना डे और साथियों का गायवा सुना। प्रदीप के बोल थे और सी रामचंद्र की धुन थी। तो हम बात कर रहे हैं मजदूर वर्ग की, श्रमिक वर्ग की। एक और फिल्म आई थी कुली। जी हाँ, समाज के वंचित वर्ग और उन शोषित लोगों की कहानी का एक उत्कृष्ट उदाहरण इस फिल्म में प्रस्तुत किया गया था, जो मुश्किल से अपना पेट भरते हैं और मुश्किल हालातों में अपनी जिंदगी चलाते हैं और उन्हीं वर्ग के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म कुली का ये गीत। शब्बीर कुमार की आवाज है और आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज हमने मजदूर और श्रमिक वर्ग को लेकर बातचीत की, फिल्मी गपशप की। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तो मैटिनी शो का आज का ये अंक यहीं खत्म होता है।

0: आयोग के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो रहा है। इन केंद्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने के बाद निर्वाचन आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूची क्रम और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। यह कार्य इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना के 15 दिन की नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद शुरू हुआ है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि यह कार्य 30 मई 2026 तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। बिहार में जनगणना 2027 का पहला चरण आज शुरू हो गया है। स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हो गई। जनगणना 2027 का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। सूत्रों के अनुसार पंजाब के 2 अलग अलग जिलों में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिलों के नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। यह इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
1: We diversified our sources.
2: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमरीका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमरीका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान पर चर्चा के लिए भारत और नेपाल के बीच आज काठमांडू में एक बैठक होगी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल करेंगे।

0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए चुने हैं सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में सजे कुछ फिल्मी गीत।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा गीत अभी आपने सुना। स्वर लता मंगेशकर और साथियों का था। फिल्म का नाम था जागते रहो।

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म माया का गीत, स्वर लता मंगेशकर, द्विजेन मुखर्जी और साथियों के मजरू सुल्तानपुरी की रचना है सलील चौधरी की धुन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज। फिल्म का नाम है अन्नदाता। गीतकार हैं योगेश और संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म मधुमती का गीत सुनवा रहे हैं। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सलिल चौधरी की।

लता मंगेशकर को अभी आपने फिल्म मधुमति में सुना। आइए सुनते हैं इसी आवाज में फिल्म हनीमून का गाना। गीत रचना शैलेंद्र की है और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

योगेश का लिखा गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे। मुकेश का साथ दे रही थी लता मंगेशकर। फिल्म का नाम था अन्नदाता।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था परख। इस गीत को शैलेंद्र ने लिखा और धुन बनाई वही यानी सलील चौधरी ने।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध

0: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
1: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
0: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
2: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।
3: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984 दुनिया।
4: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजा।
0: 1993 फिल्म साहिबा।
5: कैसे जियूंगा मैं।
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
6: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: आँखों

और आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा दुगाना, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के। फिल्म का नाम है जीवन ज्योति।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत है इस नए कार्यक्रम सुरीला सफर में आपका। और मैं हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हाँ, मुझे पता है इंतजार है आपको इस कार्यक्रम का, इस सुरीले सफर का। तो चलिए, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त और निकलते हैं इस सुरीले सफर पर, ठीक है। जी हाँ, इतनी ही खुशी के साथ हमें निकलना है इस सुरीले सफर पर। लेकिन लेकिन लेकिन जरा ठहरिए दोस्तों, आज जो इबारत हमने आपके लिए लिखी है, उसे आपने पढ़ा कि नहीं, जाना कि नहीं कि आज के इस सुहाने सफर में क्या क्या है, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या दिक्कत आने वाली है, क्या क्या अच्छा होने वाला है। हाँ, जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने तो पढ़ ली है हमारी इबारत, लेकिन अन्य श्रोताओं ने नहीं पढ़ी है। तो क्या है हमारी इबारत, क्या हम उन्हें बताएं पढ़ के? चलिए, तो हमारे वो दोस्त जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, हम उन्हें बता देते हैं कि आज हमने उनके लिए क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, हमने लिखा है कि नमस्ते दोस्तों, जिंदगी के कठिन रास्तों पर दीवाने ही हैं तो बाजी मार लेते हैं। कोई खाली हाथ है तो किसी की जेब पैसे से भरी है। यहाँ कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं। कोई पैदल चला जा रहा है, कोई घोड़े पर दौड़ा जा रहा है। वैसे बाबूजी, ये दुनिया एक तमाशा है, खेल पैसों का। कैसी दुनिया है राम जाने। दुनिया को समझने का एक और तरीका है क्या? पान का एक बीड़ा लगाओ। और फिर उसी धुन में गाना है आपको, गाने जो आज हमने इस कार्यक्रम में आपके लिए चुने हैं। तो बताइए कौन से हो सकते हैं आज के शब्द, आपको क्या लगता है जो शब्द हमने इस इबारत में लिखे हैं, इन शब्दों पर कौन कौन से गाने हम आपको सुनवाने वाले हैं? जरा दिमाग पर जोर लगाइए। बिल्कुल, इस म्यूजिक की तरह ही हमें दौड़ लगानी है आज के सुरीले सफर पर। और देखिए ना, किसी ने कहा है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल सही ही तो कहा है। लेकिन हाँ, डर के साए में जीना हमारी फितरत नहीं। हम तो सफर में भी पत्थर से रास्ता निकाल लेते हैं हुजूर, है ना। तो दोस्तों, कहीं कहीं मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। और आज बस इसी सफर को हमें जीना है। और ये सुहाना सफर, जहां मैं हूं, जहां आप हैं और हमारे तमाम दोस्त हैं, हम सब मिलकर चलते हैं इस सुरीले सफर पर। मजेदार रहेगा ये सफर, है ना। आप मेरे साथ हैं?

किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था काला पत्थर। जी हाँ, तो हम आगे बढ़े इससे पहले हम इसी बात पर एक सवाल आपसे पूछते हैं कि पत्थर फिल्म से कितनी और सारी फिल्में बनी हैं, जैसे कि ये काला पत्थर है और बहुत सारी फिल्में पत्थर के साथ बनी हैं, आगे पीछे कुछ नाम जुड़े हैं। बताइए कौन कौन सी फिल्में हैं जिनमें पत्थर भी है जुड़ा हुआ। और हाँ, हम आपको बता दें कि कल जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, यानी इसकी जो पहली कड़ी कल शुरू हुई थी, तो हमारे वरिष्ठ उद्घोषक यूनुस खान साहब ने आपको बताया था कि इस कार्यक्रम को किस तरह से समझना है और किस तरह से इस कार्यक्रम में भाग लेना है। आपको समझ आ ही गया था कि हर रोज हम एक इबारत फेसबुक पर पोस्ट करेंगे और इस

इबारत में शामिल शब्दों में से कुछ को चुनकर सुनवाएंगे सुरीले सफर के गाने। तो आपको इबारत पढ़कर अंदाजा लगाना है कि कौन से शब्दों पर आज गाने आ सकते हैं। तो आज आपने हमारी इबारत पढ़ी होगी कि जिंदगी के कठिन रास्तों पर दीवाने ही हैं जो बाजी मार लेते हैं, कोई खाली हाथ है तो किसी की जेब पैसों से भरी है, यहाँ कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं, कोई पैदल चला जा रहा है तो कोई घोड़े पर दौड़ा जा रहा है। वैसे बाबूजी, ये दुनिया एक तमाशा ही तो है खेल पैसों का, कैसी दुनिया है राम जाने। दुनिया को समझने का एक तरीका और है, क्या कि सुकून से ये खा लेना, यानी पान खा लेना, ताकि थोड़े मुश्किलें हमें लगे हल हो चुकी हैं और हम अपनी धुन में कुछ गाते चले जाएं। तो बताइएगा कौन कौन सी फिल्में आज हमने आपके लिए चुनी है। कुछ लोगों ने अंदाज लगाया है, कुछ लोगों ने हमें लिखा भी है कि भाई आज जिंदगी कठिन राह दिखाने वाली है और इसमें दुनिया पान आदि शब्द मंदाकिनी जी ने लिए हैं, पान खाए सैया हमारो। अच्छा, आपने ये गीत चुना है और आपने चुना है एक और गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर में हम सभी मंदाकिनी जी के साथ दूर तक जाएंगे, फिलहाल सभी को दोपहर की प्यार भरी नमस्ते हम कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में आज की इबारत में आपने जो शब्द चुने हैं शायद वो है जिंदगी, रास्ते, दीवाने, बाजी, खाली हाथ, पैसे, फूल, कांटा, बाबूजी, दुनिया, राम, पान। इन शब्दों का सुंदर चुनाव है। जब हम इन शब्दों के माध्यम से अपना सुरीला सफर तय करेंगे तो जिंदगी के हर रास्ते पर एक नया गीत सुनाई देता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज ये जो जीवन है परिस्थितियों का दास है, कभी बाजी इस किनारे तो कभी उस पार, मगर जीवन की बाजी चाहे कितने ही पहलू क्यों न हो उसके, दोस्तों का साथ हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं और पथरीला रास्ता सुगम हो जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन बताइए तो सही कि आज इन शब्दों पर हमने कौन कौन से गीत चुने हैं। अब देखिए, हम तो आपको बताएंगे क्योंकि हमने जो गीत आपके लिए चुने हैं उसमें एक गीत बहुत खास है, क्योंकि जिंदगी का ये सफर है सुहाना और यही है जीवन का सटीक अंदाज। हर लम्हा हर क्षण बहुत कीमती है और एक बार गुजर जाने के बाद वो वापस नहीं आता है। तो जीना हर पल में है, मुस्कुराकर जिए तो क्या हर्ज है, नए दोस्त बनाइए, नफरत मिटाइए, खुद को संवारते चलिए। जीवन बहुत सरल और सादा है और हमने इसे जटिल बना दिया है। तो कैसा होना चाहिए इंसान को, वो इंसान ही क्या जो दिल से अमीर न हो, और वो अमीर ही क्या जिसका दिल फकीर न हो। तो हमारे अंदर एक फकीराना अंदाज होना चाहिए और एक दीवानगी होनी चाहिए। हम तो भाई ऐसे ही हैं दीवाने। फटाफट बताइए हमने और कौन से गाने आपके लिए चुने हैं।

हमने आपसे पहला सवाल किया था कि पत्थर फिल्म पर कितनी और सारी फिल्में बनी है हमें बताइए, और अब हमारा दूसरा सवाल जो आपने अभी गीत सुना, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, उसमें जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो कलाकार कौन है और उनके साथ जो नर्तकी है यानी जो बंजारा नृत्य कर रही है वो कौन सी कलाकार है? जी हाँ, ढूंढिएगा कि हारमोनियम जो बजा रहे हैं इस गाने में वो कौन सी कलाकार है और जो नर्तकी हैं साथ में नाच रही हैं वो कौन सी कलाकार है, उनके बारे में बताइए हमें। जी हाँ, बताना तो पड़ेगा क्योंकि इस कार्यक्रम में तो हम यही चाहते हैं कि जो आज हम आपके लिए इबारत लेकर आए हैं उसमें आप क्या समझे हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अब देखिए, हमारे कुछ श्रोता कह रहे हैं कि भाई ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, बजनी और लिखनी होती हैं तो इसके लिए मुश्किल है क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं चला पा रहे हैं, आपने जो पहेलियां हमारे लिए रख छोड़ी हैं इस कार्यक्रम के जरिए वो बड़ी मुश्किल हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है, दीवाने हैं तो बाजी मार लेते हैं, ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम अच्छा है लेकिन आपने इसे दोस्तों जिंदगी दीवाने बाजी हाथ पैसे फूल कहीं कोई चला बाबूजी दुनिया एक और पान जैसे शब्दों पर लाकर ठहरा दिया है जो हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर को शुरू करने के लिए कुछ रुकावटें आ रही हैं और हमारा मोबाइल हमें परेशान कर रहा है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने जिस तरह से इसको पिरोया है भाई उसे समझना आसान तो नहीं है, आज सुरीला सफर आसान नहीं लेकिन कुछ जज्बाती जरूर है जिसमें जिंदगी रास्ते बाजी दीवाना पैसा चलना फूल कांटे बाबूजी दुनिया अपनी धुन जैसे कुछ शब्दों को लेकर आपने गाने चुने हैं, पर कौन कौन से चुने हैं ये हम नहीं बता पा रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार, इस दुनिया में जिंदगी के रास्ते फूल और कांटों पर से चलते चलते दीवाने लोग गुजरते हैं, बाबूजी आगे चलकर बाजी कौन जीतेगा ये तो राम जाने। उन्होंने कुछ गाने लिखे हैं कि आपने नमस्ते दिल तेरा आशिका या एहसान या रास्ते पर रास्ते जाने वाली दीवाने हैं दीवानों का न घर जीत ही लेंगे बाजी हम तुम जैसे बहुत सारे गीतों को लिखकर भेजा है लेकिन हम आपको बता दें सिर्फ एक गीत दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए ये हमारी लिस्ट में जरूर शामिल था जो आपने अभी सुना लेकिन बाकी गाने हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है। तो सफर जब हम निकले

0: पड़े हैं दोस्तों, तो देखिए सफर में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहीं घोड़ा, कहीं गाड़ी, कहीं कार, कहीं पैदल चलने वाले लोग, कहीं ट्रेन, कहीं बहुत कुछ साधन अपनाने वाले लोग जो अपने अपने साधनों से चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, ना किसी की चिंता, ना किसी की फिक्र, बस अपनी ही मंजिल, अपनी ही दौड़। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं रहता कि किसी के जीवन पर, किसी के दिल पर क्या गुजर रही है।
1: उरिया। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया। उरिया।

अच्छा बताइएगा, आप कभी किसी रिक्शा पर बैठे हैं, आपने रिक्शा की सवारी ली है और आपको लगा है कि जो रिक्शा चला रहा है उसकी हालत क्या होती है जब हम अतिरिक्त भार उसकी रिक्शा पर लाद देते हैं, कभी सोचा आपने?

0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि अरे भाई, विविध भारती का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है, थोड़ा लेट हो गया हूँ इसलिए सुहाने सफर की गाड़ी अगले स्टेशन से पकड़नी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं पकड़ लीजिए, अभी भी मौका है गाड़ी पकड़ने का।
1: अरे सामने क्या देख रहे हैं, उन्हें पीछे से पॉकेट मार रहे हैं।

जी हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आज इस कार्यक्रम का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन इस नए कार्यक्रम में। बहुत अच्छा लग रहा है, ये कार्यक्रम नया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इबारत है, लगता है आज के गीत जिंदगी और दुनिया के इर्द गिर्द होंगे, जैसे जिंदगी कैसी है पहली या जिंदगी एक सफर है सुहाना, बेसब्री से इंतजार रहेगा। भाई आज हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि हमारे श्रोता लगभग हार गए हैं हमसे, क्योंकि आपने जो प्लेलिस्ट बनाई है हमारी इबारत पढ़कर, वो गाने हमसे तो मेल नहीं खा रहे हैं, थोड़ा दिमाग पर और जोर लगाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार को हमारा नमस्कार, इस चिलचिलाती धूप में भी ठंडा का सफर जारी है जो विविध भारती से हमें मिल रहा है, तो ये सुनहरा चमकता दमकता सफर ठंडी फुहार की तरह चलता रहे, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि पिछला प्रोग्राम गीतमाला में आपने हम सभी श्रोताओं के खूब कॉमेंट्स दौरान प्रोग्राम में शामिल किए, वैसे ये नया प्रोग्राम है सुरीला सफर, पूरी तरह समझ तो आ गया है लेकिन देखते कि हम श्रोताओं के कितने गीत आपके चुने गीतों से मेल खाते हैं। सुरीला सफर नाम के अनुसार बहुत ही सुरीला होने वाला है, निश्चित है ये कार्यक्रम सुरीला है, लेकिन ये और सुरीला तब होगा जब आप हमारे गाने, आपके गाने हमारे गानों से मेल खाएंगे। जी हाँ, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहेलियों से पूर्ण संगीतमय सफर सुरीला सफर जरूर चलेगा, और आप पेचीदा प्रश्न पूछ रहे हैं पर गाने मजेदार हैं, प्रोग्राम प्रस्तुति का अंदाज हाँ थोड़ा सा अलग लग रहा है इस कार्यक्रम में। तो भाई कार्यक्रम अलग है तो प्रस्तुतकर्ता का अंदाज भी अलग होगा ना। तो आपने हमें बताया नहीं, हमने दो सवाल आपसे किए थे उनके बारे में बताइए कि पहला कि पत्थर फिल्म से और कितनी फिल्में बनी है जिसमें, जैसे काला पत्थर है या इस तरह की बहुत सारी फिल्में जिसमें पत्थर शब्द भी जुड़ा है, ऐसी फिल्मों के नाम बताइए। और साथ ही हमने कहा था कि दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, इस फिल्म में हारमोनियम कौन बजा रहे हैं और साथ में जो नर्तकी है वो कौन है। अच्छा, साथ में एक तीसरा सवाल ये भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रिक्शे पे आपने सवारी कब की थी और क्या कभी रिक्शा वाले से आपने मोल भाव किया? देखिए जनाब, ये जिंदगी है और जिंदगी में ये सफर जारी रहेगा जब तक हमारी जिंदगी है, यानी अंतिम सांस तक हम इस सफर में चलते रहेंगे और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इस सफर में हमें देखने सुनने को मिलती है। याद करिए वो पुराना जमाना, वो देसी मनोरंजन यंत्र जिसे बेतार का टीवी या चलचित्रदर्शी भी हम कहते थे, याद आया आपको? ये एक लकड़ी का बक्से जैसा होता था जिसमें लेंस लगे होते थे और उसके माध्यम से हम पुरानी रीलों को, तस्वीरों को घुमा घुमा कर ऐतिहासिक स्तर और फिल्मों के दृश्य देखते थे। याद कीजिए बक्से नुमा वो यंत्र, जब वो आदमी आवाज लगा लगा कर हम बच्चों को लुभाता था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसमें लेंस और अंदर रील चला।

जाने की व्यवस्था होती थी और हम एक आंख गड़ाकर उसको देखा करते थे और इसमें हमें कुतुब मीनार, गोल घर जैसे ना जाने कितने चित्र दिखाए जाते थे। याद आया? नहीं तो ये गीत सुनते हैं, फिर बताइएगा आपके बचपन में ये दिन कब आया था।

याद आया हम किस यंत्र की बात कर रहे हैं? आज के मल्टीप्लेक्स के दौर में ये तो एक लुप्त हो गई है कला जो अक्सर बचपन की यादों के रूप में याद की जाती थी। याद करिए,

0: आपको याद आया उस यंत्र का नाम? बायोस्कोप, हाथ से घुमाकर चलने वाला चलता फिरता वो सिनेमा घर जहाँ हमें बुलाकर एक आंख से वो चित्र दिखाए जाते थे, है ना?
1: अच्छा जी, टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काला से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही, तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक
2: तो हमारे कई श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये बायोस्कोप है जो बचपन में हम देखा करते थे, और इस बायोस्कोप को देखने के बाद हमें लगता था जैसे हमने बहुत बड़ी फिल्म देख ली है, है ना? तो हम आपको बता दें, दुश्मन फिल्म का गीत था ये, लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर आपने गीत सुना।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि काला पत्थर का ये गीत आपने बजा ही दिया, मैं तो अभी इसी गीत के बारे में सोच रहा था। राजेश रोशन का संगीतबद्ध ये गीत मोटरसाइकिल पर बैठकर शशि कपूर जब गाते हैं तो एक अलग ही आनंद आ जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, आप ही लिखते हैं कि दिल्ली में पिछले 20 वर्षों में मैं कभी भी हाथ रिक्शा पर नहीं बैठा, मुझे इन पर बहुत दया आती है। भले ही मैं पैदल चला जाऊं, ये रिक्शा वाला गाना महमूद पर फिल्माया गया था जो मुझे बेहद पसंद है और इसमें भी राजेश रोशन साहब का ही संगीत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम रिक्शे पर बैठ तो जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि जो रिक्शा खींच रहा है व्यक्ति उसकी हालत कैसी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों का सुरीला होगा, दोस्त होंगे मंदाकिनी जी, न हो ये हो ही नहीं सकता, हमें पता था कि आप इस कार्यक्रम में आएंगी और आप आ गई हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दीवाने ही तो हैं जो बाजी मार लेते हैं, जो ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं, तो खाली जेब भी में भी ख्वाब भर लेते हैं, कहीं फूलों की खुशबू बसी है तो कहीं कांटों की चुभन है, कोई पैदल धूप में तपता

है कोई घोड़े पर हवाओं के साथ है, पर बाबूजी दुनिया सचमुच एक तमाशा है। हंसी और आंसू का एक झमेला है, यहाँ हर धड़कन का मूल लगा है। ये खेल भी क्या बस पैसों का मेला है। फिर भी एक और तरीका है इसे समझने का, थोड़ा ठहरने का, थोड़ा मुस्काने का, एक पान का बीड़ा लगाकर अपनी ही धुन में गुनगुनाने का। गम को भी गीत बना लें, थकान को तान बना लें, सफर को यूं ही नहीं सुरों से सजा लें, मुस्कान से सजा लें, क्योंकि जब दिल से आवाज निकलती है तो राहें आसान हो जाती है और ये दुनिया तमाशा नहीं एक सुरीला सफर बन जाता है। जी, सुरीले सफर पर जब हम निकल ही गए हैं तो और भी बहुत कुछ हमें देखने सुनने को मिलता है। क्या आइए सुनते हैं इस गीत में।

0: क्या आपको लगा था कि बाबू शब्द पर ये गीत आने वाला है?
1: बाबू आना, सुनते जाना।
2: महंगा सौदा है इसका, लुटना जाना।
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका।
2: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
3: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी।
2: बाबू आना, सुनते जाना।
1: धत धत, महंगा सौदा है इसका, लुटना जाना।
2: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका।
1: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।

दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी। तू जा जा, अरे जा जा जा मुंह धो के आ, तू जा जा, अरे जा जा जा मुंह धो के आ।

0: की पहाड़ी है काटे की लाला।
1: सौदा है इसका लुटना जाना,
2: ये सब है जाल इसका।

0: अरे मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।

झुमरू फिल्म का गाना था, बहुत ही मजाकिया गीत। किशोर कुमार, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और किशोर कुमार का ही संगीत था। जी, हमारे श्रोता जो अपने गानों की लिस्ट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उनमें कुछ कुछ गाने हमारी लिस्ट से मिल रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट से मिल रहे हैं, लेकिन सभी गानों पर हमारे श्रोता अपनी पकड़ नहीं बैठा पाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पोस्ट भेजी है उसके हर शब्द पर गाना निकालते हैं। विविध भारती के सुरीला सफर में आज इन्हीं शब्दों पर गाने बजेंगे। जिंदगी पर आपने गाना निकाला है, कठिन रास्तों पर, बाजी पर, कांटे पर, फूल पर, बाबूजी पर, दुनिया पर, तमाशा पर, लेकिन गीत आपने बहुत अच्छे निकाले हैं, लेकिन हमारी लिस्ट से आपका कोई भी गीत नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की है। हाँ, एक गाना जरूर मिल रहा है, वो हम आपको सुनाने वाले हैं थोड़ी देर में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दीदी जी, सुरीला सफर की प्लेलिस्ट तैयार है, किस शब्द से शुरू करें, जिंदगी से या दुनिया से। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मैं गाना जो है गुलशन बावरा जी हारमोनियम के साथ हैं, गीतकार बिल्कुल सही कहा, और नृत्य करने वाली नायिका का नाम है संजना। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो हैं गीतकार और अभिनेता गुलशन बावरा, और उनके साथ जो नृत्य कर रही है नायिका वो है संजना। एक श्रोता ने लिखा है कि कार्यक्रम नया है, फिर भी मेरे अंदाज से कुछ गीत जरूर सुनने को मिल सकते हैं, जैसे मिले ना मिले, फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, बाबूजी धीरे चलना, इस तरह के कुछ गाने, और आखिर में तो तय है कि खाई के पान बनारस वाला गीत तो हमें सुनने को मिलेगा ही। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुहाना सफर एक नया कार्यक्रम है, बहुत पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है बहुत अच्छा कार्यक्रम है लेकिन कुछ समझ में कम आया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अच्छा, आप हमारी तारीफ लिखते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपका ये कार्यक्रम बहुत ही रोमांचक लग रहा है। एक श्रोता ने जिंदगी पर कुछ गीत लिखे हैं, लेकिन वही बात कि सिर्फ एक गाना हमारी लिस्ट से आपका मिल रहा है। जो अभी मजाकिया गीत आप सुन रहे थे, बाबू आना सुनते जाना, महंगा सौदा है इसका लुट न जाना, बताइए कभी आप लुटे इस महंगाई से? कहीं जाकर आपने कोई खरीदारी की हो और आपको पता चले कि भाई दुकानदार ने आपको लूट लिया और ज्यादा दाम लगा दिए, कभी पता चला आपको? अगर हाँ ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आपने क्या किया इसके बारे में हमें लिखकर बताइए। और हाँ, जिंदगी के इस सफर में देखिए, फूल हैं तो कांटे भी हैं, कई बार ये होता है कि कांटा लग जाता है तो गाना निकलता है क्या, कांटा लगा हाय लगा। हाँ।

जी हाँ, तो हमारी इबारत में आपने पढ़ा था, कहीं फूल है तो कहीं कांटा, तो ये गाना क्या आया, कांटा लगा है ना। तो इसी प्रकार जो हमने लिखा है उसी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गीत छिपा है, और अब आप दोस्तों को

0: दिमाग लगाना है भाई, जोर लगाना है कि कौन सा गीत हो सकता है। बहुत सारे गीत आपने लिखकर भेजे हैं, ऐसी बात नहीं है, आपने कोशिश बहुत की है, लेकिन हाँ एक या दो गीत हमारी लिस्ट से मिल पाए हैं, हमारी प्लेलिस्ट से मिल पाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं, कि भाई ये इबारत है क्या, अगर इबारत का अर्थ आप समझा पाए तो मैं कुछ लिख सकूं। ऐसी बात तो नहीं है कि आप इबारत के बारे में नहीं जानते होंगे, आपने जिस अंदाज में लिखा है वो अंदाज थोड़ा अजीब लगा है, लेकिन हाँ इबारत मतलब जो लेख हमने आपको दिया है, जो तहरीर, जो मजमून, जो लिखावट, जो लेखन शैली हमने आपके लिए रखी है, जो क्या पाठ है ना जो आपके लिए रखा है उसको पढ़िए। जो गद्य, इसे आप बहुत अगर हिंदी में समझना चाहते हैं कि हमने जो गद्य के रूप में लिखा है विचार, उस विचार या पाठ को आप पढ़ें और उसमें से निकालें कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि कांटा, कहीं फूल है कहीं कांटा, तो कांटा लगा। और अभी था जैसे थोड़ी देर पहले कोई घोड़े पर दौड़े जा रहा है, तो ये है घोड़ा, है ना, मैं हूँ घोड़ा, ये है गाड़ी। इस तरह के गीत हमने आपके लिए चुने ताकि थोड़ी सी दिमागी कसरत हो जाए और आपकी और हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। कैसे, कि हमारे विचार आपके विचार एक हो जाएं, वही कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि इबारत का मतलब क्या है और अब आप तुरंत अपने विचार हमें लिखकर भेजने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, लता मंगेशकर की आवाज थी, फिल्म का नाम था समाधि, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, राहुल देव बर्वन का संगीत। हम समझ सकते हैं कार्यक्रम नया है इसलिए समझने में और लिखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दिमागी काम है और हमें सोचना पड़ता है कि इस शब्द पर कौन कौन से गाने कहे गए हैं, लिखे गए हैं और हमने कौन से गाने छांटे हैं, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की है, सबसे अच्छी बात यही है, और क्या कह सकते हैं आपको, शुक्रिया। जी, और अब वो गाना आपके लिए पेशे खिदमत जो आपकी और हमारी लिस्ट में है।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा,

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था डॉन। आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की धुन। भाई बनारसी पान तो हम सबने लगभग खाया होगा, लेकिन आपने अपने शहर में कौन सा पान खाया है और वो पान कैसे लगाया जाता है, आप कौन सा पान खाते हैं इसके बारे में बताइएगा। और हाँ, पत्थर पर जब हमने कुछ सवाल आपसे किए थे, एक दो श्रोताओं ने लिखा है कि लाल पत्थर, फूल और पत्थर। जी हाँ बिल्कुल, उसके अलावा बहुत सारी फिल्में पत्थरों से बनी है, पत्थरों का शहर, लाल पत्थर, फूल और पत्थर, पत्थर, पत्थर के फूल, पत्थर के ख्वाब, पत्थर दिल, है ना, और हीरा और पत्थर, पत्थर के लोग, बहुत सारी फिल्में पत्थर शब्द पर बनाई गई है। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं जहां आशा भोंसले और मन्ना डे साहब गा रहे हैं फिल्म आंखें का गीत। साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि की धुन है।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी क्षण भंगुरता पर आधारित है। क्षण भंगुरता दो शब्दों से मिलकर बना है। क्षण एक छोटा समय, एक पल, भंगुर नाजुक अस्थिर टूटने वाला ऐसा स्वरूप जो केवल एक क्षण के लिए है, अस्थाई और नाजुक। जीवन की गति किसी भी पल रुक जाती है। हम जाने किस भ्रम जाल में जीते हैं कि अब हमारा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सच्चाई कुछ अलग ही होती है। जीवन परिवर्तनशील है, इसी जीवन के हर पल की अस्थिरता और अल्पकालिकता को क्षण भंगुरता कहते हैं। हमारे सुख दुख, मिलन विछोह सब क्षणिक होते हैं। ये हमें ये याद दिलाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे सुख हो या दुख और खुशी हो या गम, ये सब बदलते रहते हैं।

जैसे प्रकृति अपना रंग व्यवहार बदलती है, वृक्षों में पत्ते लगते हैं, फूल फल लगते हैं और एक दिन झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वृक्ष सूख जाते हैं, वैसे हमारा मनुष्य जीवन भी अपनी उम्र की अवस्थाओं को पार करता हुआ एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां सब क्षण भंगुर लगने लगता है। जो चीजें जन्म लेती हैं वे बदलती हैं और अंततः मिटती भी हैं। उनके क्षणिक माया मोह में उलझना व्यर्थ है, लेकिन मानव मन बड़ा चंचल होता है। वो हमेशा पाने की लालसा रखता है, खोने के बारे में सोचता ही नहीं। हमारी भावनाएं, रिश्ते, सफलता सब क्षणभंगुरी तो हैं।

आज जो है वो कल नहीं होगा। रूप स्वरूप का परिवर्तन होना तय है, पूर्व निर्धारित है। फिर खुद को भ्रम में क्यों रखना। जीवन को सादगी सरलता से जीना, उच्च आदर्शों का पालन करना और खुद को अनुशासित रखना ही मन को शांति प्रदान करेगा। और अपने जीवन का उपयोग अच्छे कार्यों में लगा देते हैं तब इस जीवन की क्षण भंगुरता की सत्यता से भयभीत नहीं होंगे। ध्यान और मंगल की शिक्षाएं यही सीख देती हैं कि क्षण भंगुरता को समझकर अन्य चीजों से लगाव कम करें। इसे समझने से विवेक और संतुलन आता है। क्षण भंगुरता हमें ये सिखाती है सब कुछ बदलता रहता है, स्थायित्व भ्रम है। वर्तमान पल का महत्व समझो, वही वास्तविक है। संतुलन, धैर्य और अपनापन इसी समझ से आता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56

56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच 12वां पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च

0: अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: इस बीच पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। दोपहर 1 बजे तक मगरहाट पश्चिम में लगभग 56% और डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु के सभी 234 विधानसभा सीटों पर सोमवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती के लिए कुल 62 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस बार डीएमके, एआईएडीएमके और राज्य के राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ी के तौर पर उभरी टीवीके पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कई सीटों पर पिछले चुनाव में कम अंतर से जीत हार होने और इस बार बहुकोणीय मुकाबले की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दल मतगणना के दिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं और इसके लिए विशेष वॉर रूम तैयार किए गए हैं। तमिलनाडु की प्रधान सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक भी आगामी मतगणना प्रक्रिया की तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला चुनाव अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं और तैयारियों का जायजा ले रही हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: उधर केरलम में सोमवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि मतगणना 8 बजे से 43 स्थानों पर 140 मतगणना केंद्रों पर होगी। इस प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, सूक्ष्म पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक और सहायकों सहित कुल 15,465 अधिकारी तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम में उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों, चुनाव पर्यवेक्षक और अधिकारियों की उपस्थिति में मतपत्र खोले जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को लोकसभा की 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फगन सिंह कुलस्ते करेंगे। समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। पंजाब पुलिस ने राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। संदीप पाठक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए थे। उनके साथ आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों की मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा

0: जनता सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र, ये संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर घाटी के बीच आज से वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपनी नियमित सेवा आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई। ये इस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा का उद्घाटन 30 अप्रैल को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया कि इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल समाप्त हुई थी।
2: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्य 30 मई तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत प्रशिक्षित गणनाकर्ता घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस बीच स्वगणना की सुविधा नगर निगम क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, मेघालय और झारखंड में भी शुरू हो गई है। ऑनलाइन सुविधा 15 मई तक रहेगी। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक घर घर जाकर जानकारी ली जाएगी। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाना है। इस चरण में आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता, जाति और अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों सहित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना का उद्देश्य नीति नियोजन और विकास पहलों को समर्थन देने के लिए व्यापक डेटा तैयार करना है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान देश ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए हैं। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक योजना ने संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% तक की वृद्धि की है।
3: हमने अपने स्रोतों में विविधता लाई है। कच्चे तेल की खरीद अब 27 देशों से बढ़कर 41 देशों तक हो गई है। हमने मध्य पूर्व के अलावा अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया से एलपीजी की खरीद शुरू कर दी है। हमने अपने घरेलू उत्पादन में 60% की वृद्धि की है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज पटना में बिहार और झारखंड के विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान श्री कुमार ने सभी मीडिया संस्थानों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया संस्थानों को डिजिटल मीडिया प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आगामी मॉनसून से पहले बाढ़ के पूर्वानुमान मॉडल पर भारत और नेपाल के बीच काठमांडू में बैठक हो रही है। भारत की ओर से बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक 30 अप्रैल और 1 मई को काठमांडू में आयोजित कोसी और गंडक परियोजनाओं पर भारत नेपाल संयुक्त समिति की 2 दिवसीय बैठक के बाद हो रही है। बैठक में दोनों पक्षों ने जल प्रबंधन और अवसंरचना से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। नेपाल ने पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के 35 किलोमीटर लंबे नेपाली हिस्से के साथ साथ कोसी बैराज, गंडक बैराज और पश्चिमी मुख्य नहर के कुछ हिस्सों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा पश्चिमी कोसी मुख्य नहर के तटबंधों पर लगे बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने की भी मंजूरी दी गई थी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त

0: आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमरीका और इसराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाजों को गुजरने की अनुमति दी और कभी कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाजों को वापस लौटाने के लिए कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आयात होने वाली कारों और ट्रकों पर शुल्क बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की है। इससे अमेरिका का यूरोप के साथ व्यापारिक तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर व्यापार समझौते का पालन न करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूरोप की वाहन निर्माता कंपनियों से अमेरिका में अपना उत्पादन स्थानांतरित करने का आग्रह किया है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वो अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है और अमेरिका से स्पष्टीकरण मांग रहा है। आयोग ने कहा कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए अपने विकल्प खुले रखेगा। ईरान द्वारा संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को भेजे गए ताजा प्रस्ताव के बाद कल वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। सप्ताह भर में ब्रेंट क्रूड ऑयल में 2.7% की वृद्धि हुई और WTI में 8% की तेजी आई। IPL क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। ये IPL इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेज है। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। भारत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे को 3-0 से पराजित किया था। फुटबॉल में भारतीय टीम AFC अंडर 17 महिला एशिया कप में आज चीन में ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना अभियान शुरू कर रही है। भारत 2005 के बाद पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। अंडर 17 राष्ट्रीय टीम मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा। ये भारतीय महिला फुटबॉल के लिए एक और ऐतिहासिक क्षण है। वरिष्ठ टीम और अंडर 20 टीम के बाद भारत तीसरी बार महिला एशिया कप में हिस्सा ले रहा है। मुख्य कोच पामेला कोंची ने कहा कि महीनों की तैयारी के बाद टीम उत्साहित और तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्वाचन आयोग के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप से इनकार। कहा, अधिकारियों का चयन आयोग का अधिकार। पश्चिम बंगाल की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान। लोकसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया। भारत और नेपाल के बीच बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल पर चर्चा जारी। मौसम विभाग का अगले 2 दिन पूर्वोत्तर और देश के प्रायद्वीपीय हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। IPL क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

0: ये स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था रानी रूपमती। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और संगीत दिया था एस एन त्रिपाठी ने।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध

फिल्म नया दौर का गीत सुनिए, गायिका आशा भोंसली, शब्दकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार ओपी नैयर।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में हम आपको शकील बदायूनी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है मदर इंडिया।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: तो आपका इंतजार अब खत्म हुआ, और अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी ठीक 3 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत।

0: हम पंछी एक डाल के अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आशा भोंसले और साथियों का गाया हुआ। गीतकार पीएल संतोषी थे और संगीतकार थे एन दत्ता।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध

यह अवश्य आशा भोंसले की और फिल्म का नाम था मेरा सलाम। गीत को शिवान रिजवी ने लिखा और हाफिज खान ने संगीतबद्ध किया था।

यह अवस्थी मन्ना डे की और फिल्म का नाम था जन्म जन्म की फेरी। गीत को पंडित भरत व्यास ने लिखा था और धुन बनाई थी एस एन त्रिपाठी ने। यह आवाज गीता दत्त की, फिल्म का नाम हिल स्टेशन।

हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में ये था एस एच बिहारी का लिखा गीत, गीता दत्त की आवाज में फिल्म हिल स्टेशन से। और आइए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत सुनते हैं।

तलत महमूद की आवाज में अभी आपने छोटे बाबू फिल्म का गीत सुना। कैफ इरफानी की बोल थी और मदन मोहन की धुन थी। इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं, प्रस्तुत है हमारा पसंदीदा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत।

0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी।

0: आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आपका अपना चहेता कार्यक्रम आज से फिर शुरू हो गया है। आज ये इसका पहला अंक है। हम आपको पहला गीत सुनाएं, उससे पहले ये संदेश।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आज हमने पहला गीत चुना है आप सबकी पसंद पर। आप हैं हमारे सबसे पहले श्रोता आज के चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और उनके परिवार वाले, नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से मधुलता पुरोहित, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रांजल, हर्षिता, राजन, कमाली, परम और ये खत हमें मिला है जिला लुधियाना पंजाब से संतोष जोशी, नरेश, मुक्ता जोशी, जोयल जोशी, वज्रा जोशी का और नासिक महाराष्ट्र से आप हैं सुमन पारिक, साहिल पारिक, भावना पारिक और ये खत लिखने वाले हैं नुहिया वाली हरियाणा से लीलाधर जोशी, कमला जोशी, गायत्री, मिथिलेश पुरोहित, दिनेश जोशी, पूजा और पवन पारिक। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म दो चोर में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

फिल्म दो चोर का ये गाना आप सभी सुनना चाहते थे। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, सुनवी और जयपाल यादव, और इसी गाने को सुनना चाहते थे। आपने ये खत लिखा है, नोखा से प्रेम बलबीर, हरि सिंह, दुर्गा देवी, अनिल, अनुप्रिया, सीता और कैलाश। आप सबने भी अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा था, सुनने वाले हैं आप जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियांज और रिफाकत। इसी गीत को सुनना चाहते थे रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और ये हैं देशमुख पेट अकोला से महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस जैन, जयेश, ऋषभ और संयम जैन। हमें उम्मीद है आप सभी ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

अवस्थी किशोर कुमार की फिल्म याराना के लिए गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे राजेश रोशन। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखा गांव जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभू दयाल खटक और उनके परिवार वालों ने। और आप हैं अन्य श्रोता लिखते हैं कि ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में आपने अपना नाम लिखा है कृष्ण कुमार डागी, भूपत कुमार डागी, राधा देवी डागी।

अन्य श्रोता लिखते हैं कि ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में आपने अपना नाम लिखा है। कृष्ण कुमार डागी, भूपत कुमार डागी, राधा देवी डागी, विक्रम, अर्चना और पूरा डागी परिवार, आपने लिखा है जिला बालोतरा से ये खत। हमें उम्मीद है आपने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

फिल्म शोर का गीत अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, महेंद्र कपूर और अन्य साथियों का गाया हुआ। गीतकार थे राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार वालों ने इस गीत को सुनना चाहा था और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे एक श्रोता है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे, आवाज मोहम्मद रफी की। सुनने के लिए ख्वाहिशमंद हैं कवन कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी, मीनूराज और उनके परिवार वाले।

मोहम्मद रफी को आपने सुना, फिल्म का नाम था आप तू ऐसे न थी। गीतकार निदा फाजली थी और संगीतकार थी उषा खन्ना। मनचाहे गीत की कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, फिल्म का नाम है ममता। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजें हैं, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना और रोशन की धुन। इस गीत को सुनना चाहते हैं जिला अंबाला से शहनवाज आलम, सरफरोज बेगम, शाह उमर आलम और उनके परिवार के अन्य लोग। और इसी गीत को सुनना चाहती हैं

0: इस दो गाने के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल। ये नाटक गोगोल के मूल नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की। तो सुनते हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल, इस नाटक का पहला भाग।
1: मिश्का, मिश्का।
2: जी हजूर।
1: सब लोग आ गए या नहीं?
2: जी जज साहब और स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब तो तशरीफ ले आए, लेकिन आरती फिलपौतिक जामलिनी का साहब,
1: इतने लंबे चौड़े नाम की जगह हेल्थ ऑफिसर कहते हुए तुझे शर्म आती है?
2: जी हाँ, बस वही नहीं आए।
1: आएंगे कैसे, वो तो अस्पताल के कोने में बैठे तंबाकू का धुआं उड़ा रहे होंगे। उन्हें इस बात की क्या फिक्र के यहाँ बैठे बैठाए मुझे मौत का परवाना मिल गया है। शहर का मेयर होना भी क्या मुसीबत है। अबे तू खड़ा खड़ा मुझे अपनी मनहूस शक्ल क्यों दिखा रहा है? भाग यहां से, चल चल। जय और सुन, जैसे ही वो हेल्थ ऑफिसर अंदर कदम रखे ना, मुझे इतला मिलनी चाहिए, समझा?
2: जी अच्छा
1: अच्छा अच्छा, तू रहने दे रहने दे रहने दे, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। हाँ
2: जी बहुत अच्छा। मौसम कितना प्यारा हो रहा है।
1: अरे आप आ गए मिस्टर जेमलियानी का।
2: नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए बैठिए।
3: माफी चाहता हूँ मेयर साहब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। दरअसल मैं
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा ख्याल है अब मुझे असली बात शुरू कर देनी चाहिए जिसके लिए आप लोगों को यहाँ आने की तकलीफ दी गई है।
3: जी
1: साहिबान, आज सुबह सुबह एक बुरी खबर मिली है
3: जी।
1: मुझे मालूम हुआ कि पीटर्सबर्ग से एक इंस्पेक्टर जनरल हमारे शहर का मुआयना

0: करने आ रहे हैं।
1: इंस्पेक्टर जनरल पीटर्सबर्ग से?
0: जी हाँ, सरकार ने इंस्पेक्टर जनरल साहब को सीक्रेट ऑर्डर्स दे रखे हैं। वो इस शहर में भेस बदल कर रहेंगे।
1: भेस बदल कर?
0: यकीन मानिए साहिबान, मुझे तो जैसे पहले से ही इंस्पेक्टर जनरल के आने का अंदेशा हो गया था। ठहरिए, मैं आप लोगों को अपने दोस्त की चिट्ठी सुनाता हूँ जिसके जरिए मुझे ये खतरनाक खबर मिली है। लिखा है, प्रिय एंटन एंटनोविच, ईश्वर तुम्हारी सेहत बराबर बनाए रखे, वगैरह वगैरह। हाँ, सुनिए दोस्त, एक जरूरी खबर यह है कि एक इंस्पेक्टर जनरल भेस बदलकर पूरे प्रांत का दौरा लगा रहे हैं, जिसमें वो हमारे शहर का खास तौर से मुआयना करेंगे।
1: मुआयना खास तौर से?
0: जी हाँ, मुझे ये सूचना एक बहुत ही खास आदमी से मिली है, लेकिन जो अपने को बहुत ही मामूली आदमी कहने का ढोंग करता है। वैसे तो मैं जानता हूँ दोस्त, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन तुम जरा ज्यादा ही अपनी मुट्ठी गर्म करने की फिराक में रहते। मेरा दोस्त भी देखो ना। कोई बात नहीं, आप लोग कोई गैर थोड़े ही हैं। हाँ, तो साहिबान आगे लिखता है, ध्यान रखना एंटन एंटोनोविच, इंस्पेक्टर किसी भी दिन पहुंच सकता है, और क्या मालूम पहुंच ही गया हो और खुफिया तौर पर वहां रह रहा हो। परसों मैं अपनी चचेरी बहन अन्ना किरी लोबना के यहां गया था। मेरा जीजा तो एकदम भैंस जैसा भारी हो गया है, और हर बाकी सब हमारी घरेलू बातें लिखी हुई है।
2: लेकिन मियां साहब, ये तो एकदम नामुमकिन लगता है, भला यूं चोरी से हमारे शहर में आना।
3: क्यों साहब, हमारे शहर में इंस्पेक्टर भेजने का मतलब है? हम तो राजधानी से पहले ही इतनी दूर पड़े हुए हैं, बेबात ही हमें छेड़ने में फायदा।
0: ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब
1: जी,
0: आज तक दूसरे शहरों का मुआयना होता रहा
1: जी,
0: और हम चैन की बंसी बजाते रहे
1: जी। हाँ।
0: आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाती, आज हमारा भी नंबर आ गया।
2: मेयर साहब
1: जी,
2: अगर मैं गलती पर नहीं हूँ
0: हाँ।
2: तो इस मुआयने के पीछे जरूर कोई गहरी राजनीतिक वजह है
0: जी।
2: हमारी सरकार जल्द ही लड़ाई की घोषणा करने वाली है, सरकार ने चुपचाप इस आदमी को भेजा होगा कि देखना इधर उधर बगावत तो नहीं हो रही है।
0: वे, क्या बात कही है। इस पर आप अपने आप को बहुत ही अकलमंद और विद्वान कहते हैं। इस छोटे से गांव जैसे शहर में बगावत, ये क्या देश की सरहद है जनाब? यहाँ से 3 दिन तक घोड़ा दौड़ाते हुए भी आप सरहद तक नहीं पहुँच पाएंगे, समझे कुछ?
2: जी, मैंने तो ऐसी ही बात कही थी हुजूर, लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हमारे अफसरान की किच की आंखें हैं।
0: इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना काम देखना है अपना। इस शहर के मेयर के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसके लिए मैंने कुछ जरूरी कदम भी उठाए हैं। आप लोगों को भी मैं कुछ सलाह देना चाहता
3: हूँ। जरूर, जरा ध्यान दीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब,
0: मैं आप सबसे ये बात कह रहा हूँ। पहले आप ही सुन लीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब
1: जी,
0: इंस्पेक्टर जनरल आपका अस्पताल जरूर देखेंगे, जल्दी से कुछ चादरें ले आइए और मरीजों को सफेद धुली वर्दियां पहना दीजिए। ये ध्यान रहे कि उनके शरीर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर दिखाई दे, समझे आप
1: जी?
0: चाहे तो वो भी ढका हुआ हो। हाँ, सिर पर टोपी पहना दीजिए।
1: ये तो बहुत मामूली बात है मेयर साहब, मैं अभी सब इंतजाम कराया देता हूं।
0: और मरीजों से कहिए तंबाकू पीना बंद करें, अस्पताल के कमरे अच्छी खासी फैक्ट्री की चिमनी दिखाई देते हैं। सुनिए, मरीजों को पहचानने के लिए उनके बिस्तरों पर तख्तियां लटका देना जिनमें झूठ मूठ मरीज का नंबर, बेड नंबर और बीमारी का नाम लिखा होना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रहे कि ये तख्तियां लैटिन, ग्रीक या किसी और भाषा में लिखी जाए ताकि इंस्पेक्टर के पल्ले कुछ ना पड़े, समझे आप? और हाँ, कुछ मरीजों को जबरदस्ती छुट्टी भी दे दीजिए, अफसर इतनी भीड़ देखेगा तो समझेगा यहाँ के डॉक्टर को कुछ आता ही नहीं है।
1: जी जनाब, मैंने और डॉक्टर हिब्बर ने तो शुरू से ही अस्पताल को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा को ही उत्तम मानते हैं, बेकार कीमती दवाओं पर पैसा खर्च करने से क्या फायदा। देखिए, और हमारे मरीज, ईश्वर उन्हें स्वर्ग में जगा दे, बहुत ही भले नागरिक हैं। जिन बेचारों को अच्छा होना होता है अपने आप अच्छे हो जाते हैं, और जिन्हें मरना होता है चुपचाप मर जाते हैं।
0: अब आपसे मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ जज ल्यापकिन त्यापकिन
2: जी,
0: आप इस शहर के आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज हैं
2: जी। हाँ।
0: लेकिन आपकी अदालत और जेल से तो चिड़ियाघर अच्छा है। जी, हर कमरे में चपरासियों की पाली हुई मुर्गियां और बत्तखें आजादी के साथ घूमती रहती है, और आने जाने वाले वकीलों और मुवक्किलों के पैरों से चिपटकर जबरदस्ती प्यार करती रहती है। मैं मानता हूँ मुर्गी पालन बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन ईश्वर के लिए इस नेक काम से अदालत को तो बख्शिए।
2: ये कोई बड़ी बात नहीं है साहब, मैं सारी मुर्गियों बत्तखों को आज ही हलाल कर देता हूँ। आप भी आइएगा ना आज शाम के खाने पर।
0: जेल तो परले सिरे का कूड़ा घर ही नजर आता है, कहीं जंगली जानवरों की खाल सूख रही है तो कहीं आपकी बंदूक शोभायमान हो रही है। खुशी की बात है कि आपको शिकार का इतना शौक है, लेकिन जब तक इंस्पेक्टर

0: मुआयना नहीं करता, आप ये गोदाम किसी और जगह बना सकें तो बड़ी कृपा होगी। बाद में चाहे फिर उन चीजों को यहाँ ले आइएगा, समझे आप?
1: बात चला,
0: और
1: चला।
0: आपका जो वो बूढ़ा मुंशी है ना जी, अजी माना कि उसे सारा कानून पहाड़े की तरह रटा हुआ है, लेकिन उसके पूरे शरीर से शराब की ऐसी भयंकर बू आती है कि बाप रे, मैं तो एक मिनट भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता।
1: मजे की बात यह है मेयर साहब कि ये मेरा मुंशी शराब छूता तक नहीं। बात यह हुआ ये कि बचपन में उसकी
0: अगर उसके बदन से कुदरती तौर पर ऐसी बू आती है तो मामला और भी टेढ़ा है। उससे कहिए प्याज लहसुन या ऐसी किसी तेज बू वाली चीज का सेवन करे जो शराब की बू को मार दे, या फिर फौरन डॉक्टर के पास भागे। और हाँ वो जज साहब, जरा आप भी अपने को अच्छी तरह टटोल
1: दीजिएगा। मैं तो ठीक ही चल रहा हूँ, देखिए ना रिश्वत भी लेता हूँ तो न लेने जैसी। शिकारी कुत्तों के पिल्ले, भला ये भी कोई रिश्वत है?
0: मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, रिश्वत रिश्वत होती है, चाहे वो शिकारी कुत्तों के पिल्लों के रूप में हो या किसी और रूप में।
1: वाह साहब वाह, ये कैसे हो सकता है? रिश्वत तो वो होती है जनाब कि जब एक आदमी 500 रूबल का फरकोट या अपनी बीवी के लिए कीमती शाल लेता है।
0: बस, इन बेकार के तर्कों से तुम अपने को नहीं बचा सकते मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन। हाँ स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
2: जी,
0: अपने स्कूल के बारे में दो एक बातें सुन लीजिए
2: जी।
0: मैं जानता हूँ आपके अध्यापक बहुत होशियार और विद्वान हैं, लेकिन उनकी चाल ढाल उनका व्यवहार दुनिया से निराला है। हो सकता है कि पढ़ाने का ये नया तरीका निकला हो। उदाहरण के लिए आपका एक टीचर तो हमेशा अजीबो गरीब तरीके से मुंह बनाता रहता, इंस्पेक्टर उसे देखेगा तो बौखला उठेगा
2: जी। इसके लिए मैं भी मजबूर हूँ मेयर साहब, मैंने इस बारे में एक बार उससे बात की थी। हुआ ये कि शहर के सबसे बड़े रईस अपने बच्चे को दाखिल कराने आए हुए थे, उसने उनके आगे इतना बुरा मुंह बनाया कि वो तो उसी वक्त बच्चे को लेकर चलते बने। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका, बड़ी मुश्किल से समझाया उन्हें, नहीं तो वो स्कूल के अध्यक्ष को चंदा देना ही बंद कर देते। लेकिन हुजूर वो कम वक्त पढ़ाता खूब है।
0: आप इतिहास के अध्यापक को ही ले लीजिए, वो बहुत दूरदर्शी और अपने विषय का पंडित है
2: जी,
0: लेकिन पढ़ाते वक्त उसे जो बेतहाशा जोश आ जाता है उसका क्या किया जाए। अभी उस दिन की बात है, वो बच्चों को जब तक असीरियनों का इतिहास बताता रहा तब तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही वो सिकंदर महान पर आया बस कुछ ना पूछो, अपनी कुर्सी से कूदा, एक कुर्सी उठाई और जोर से डेस्क पर दे मारी। मैं जानता हूं इस तरह से वो युद्ध का वर्णन कर रहा था। ठीक है सिकंदर महान एक शूरवीर योद्धा था, लेकिन इसके लिए स्कूल की कुर्सियां क्यों तोड़ी जाएं?
2: जी आप ठीक कहते हैं मियां साहब, मैंने भी एक दिन स्कूल का टूटा हुआ फर्नीचर सामने रखकर उसे समझाया, लेकिन उसको तो बस एक ही रट है।
0: क्या?
2: आप लोग कुछ भी कहते रहिए, मैंने तो शिक्षा के लिए अपने आप को मिटा देने की कसम खा रखी
0: और मिटा वो हमें रहा है। जीवन कितना रहस्यमय है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी खतरनाक होता है।
2: अजी शिक्षा विभाग से तो ईश्वर ही बचाए। अजी मेयर साहब, ये भी कोई चमत्कार ही है कि मैं इस लाइन में रहकर भी जिंदा हूँ, वरना ये अपने अकल के आगे किसी की चलने दें।
0: मुआयना, वैसे मुआयना है ना कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन यूं भेष बदल कर
2: जी, भेष बदल कर,
0: बदल कर, मान लो वो अभी प्रकट हो जाए और कहे अच्छा मित्रों तुम सब यहाँ जमा हो, हाँ तो तुम में से हेल्थ ऑफिसर कौन है
2: जी,
0: जरा आपके हाल चाल पूछने हैं, और जज साहब आप भी जरा मेरे कमरे में तशरीफ लाइए।
3: दोस्तों हमारे लिए तो ये डूब मरने की बात हो जाएगी।
2: कौन कौन कौन?
4: नमस्कार मैं,
0: क्या नमस्कार, तुम कोई नया समाचार लाए हो पोस्टमास्टर? मेरा मतलब है कोई खास चिट्ठी तो नहीं आई?
4: नहीं हुजूर, मैंने तो अभी बॉब चिंस्की से ही ये भयानक खबर सुनी है।
0: तुम्हारा क्या ख्याल है पोस्टमास्टर?
4: ख्याल क्या है मेहर साहब, लड़ाई है और कुछ नहीं।
0: लड़ाई?
4: जी हाँ, हमारा देश भयंकर युद्ध करने वाला।
0: तुम्हारी बेवकूफी का भी जवाब नहीं है पोस्टमास्टर।
3: अरे मियाँ ये हमला हमारे शहर पर हो रहा है, ये चिट्ठी बता रही है कि इस लड़ाई के शिकार हम हैं, सिर्फ हम
2: जी।
3: मुझे लगता है जरूर किसी ने मेरी शिकायत की है, वैसे मैं डरता मरता नहीं हूँ क्योंकि मेरे नेक कामों का भगवान साक्षी
2: जी
3: है।
2: जी हाँ, ठीक है,
3: लेकिन फिर भी थोड़ी सी घबराहट जरूर हो गई है, शहर के व्यापारियों ने जरूर मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखकर राजधानी में जहर उगला होगा।
4: जी हाँ, किसी की शिकायत पर ही इंस्पेक्टर यूं चोरी चोरी आ सकता है।
3: देखो पोस्टमास्टर, ये हमारे तुम्हारे दोनों के हित में है कि इस शहर से बाहर जाने वाली हर एक चिट्ठी को तुम खोल कर देख लिया करो, अगर उसमें हमारी शिकायत जैसी कोई बात नहीं लिखी है तो उसे फिर से चिपका कर या खुली ही आगे भेज दिया करो, और अगर वो समझ गए ना?
4: जी हाँ समझ गया बिल्कुल समझ गया। और इसमें आपके समझाने की बात ही क्या है, मैंने तो बरसों चिट्ठियां खोलने और पढ़ने का धंधा किया है। कुछ चिट्ठियों में तो इतनी मजेदार बातें लिखी रहती है कि उन्हें छोड़ने को मन ही नहीं करता।
0: सुनो, कोई ऐसी चिट्ठी तो तुमने नहीं देखी जिसमें पीटर्सबर्ग से अफसर आने की इत्तला हो?
4: जी नहीं, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा

0: दिलचस्प चिट्ठियां मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं। मेयर साहब, काश आपने भी एक आध चिट्ठी पढ़ी होती। वो मनोरंजक बातें, वो लच्छेदार शैली, एक के पढ़ने वाले की तबीयत फड़क उठे।
1: अच्छा?
0: एक लेफ्टिनेंट ने अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिख रखी थी। आप वो चिट्ठी पढ़ना चाहेंगे?
1: शुक्रिया शुक्रिया, मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ। मैंने जो सुझाव दिया है उसका तुम्हें ध्यान है ना?
2: ये भी ध्यान रहे पोस्टमास्टर साहब कि ऐसी हरकतों से तुम्हें जेल जाने में देर नहीं लगेगी।
1: आप बकते हो लियाकत। कोई सरे बाजार रिश्वत ले तो बेशक ये बुरा है, लेकिन ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है।
2: आपके सारे मामले व्यक्तिगत ही होते हैं मेयर साहब
1: जी।
2: हाँ छोड़िए। हाँ याद आया, ये बताइए क्या आप एक बहुत अच्छी नस्ल का शिकारी कुत्ता लेना पसंद करेंगे? मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था।
1: मैं ये भेंट तुम्हें मुबारक हो मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, मुझ पर मेहरबानी करो। मेरे चारों तरफ तो भेस बदला हुआ इंस्पेक्टर नाच रहा है। इंस्पेक्टर, तुम यहां बैठकर माज करो और इंतजार करो कि कब दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर है? लगता है इंस्पेक्टर जंगल से पहुंची आ गए हैं।
3: हे भगवान,
4: दरवाजा खोलिए मेयर साहब,
5: दरवाजा खोलिए मेयर साहब।
4: तुम चुप रह सकते हो डॉक्टर्स की, मेरा बोलना काफी है।
5: पर बॉब चिस्की, मेरी आवाज तुमसे ज्यादा तेज है। मेयर साहब दरवाजा खोलिए।
1: ये आप दोनों महाशय हैं।
6: कमाल हो गया मेयर साहब, कमाल हो गया।
7: सपने में भी इस बात की उम्मीद नहीं थी।
1: क्या हुआ
8: चिस्की? क्या
7: खबर है? हम लोग होटल में पहुंचे थे।
6: हाँ, मैं और डॉब चिस्की होटल में पहुंचे ही थे कि
7: बॉब चिस्की, जब मैं बता रहा हूँ तो।
6: अरे पर मुझे ही बताने दो ना डॉब चिस्की, तुम्हारा कहने का ढंग बहुत ही बचकाना है।
7: लेकिन तुम बीच में भूल जाओगे, तुम्हें आज तक कोई चीज याद रही?
6: जहाँ मैं भूल जाऊँ मुझे बता देना।
1: क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने, यहाँ पहले ही मेरा दिल बैठा जा रहा है।
6: सुन लिया ना डॉब चिस्की? लीजिए मेयर साहब, मैं शुरू से सारी बात सुनाता हूँ। सुबह आपसे वो अहम खबर सुनकर मैं कोरोबकिन को बताने के लिए गया, लेकिन उस वक्त वो घर पर नहीं था। मैंने सोचा रूस्ता कोविंस्की को ये समाचार दे दूं, लेकिन वो भी अपने साली की शादी में बाहर गया हुआ था। मैं वापस आ ही रहा था कि मेरी मुलाकात डॉबचिंस्की से हो गई।
7: समोसे वाले की दुकान के पास?
6: हाँ, समोसे वाले की दुकान के पास। लेकिन इससे ये खबर आपकी नौकरानी अवधोत्या से पहले ही मिल चुकी थी। वो आबकारी की दुकान पर कुछ लेने गई थी।
7: मेयर साहब के लिए फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी।
6: हाँ, फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी। बीच में मत टोको डॉबचिंस्की। इसने मुझसे कहा के मारे भूखे इसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मैं इसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए होटल में ले गया। जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो एक लंबा तगड़ा खूबसूरत नवयुवक
7: सूट बूट पहने हुए।
6: डॉब चिस्की, तुम बार बार टोकते हो, ये बहुत बुरी आदत है। तो हाँ साहब, सूट बूट पहने हुए खूबसूरत नौजवान कमरे में चहलकदमी कर रहा था। रोबीला गंभीर चेहरा, जैसे कोई बहुत अहम बात सोच रहा हो। मैंने छूटते ही डॉब चिस्की से कहा, हो न हो ये वही आदमी है। हम दौड़े दौड़े होटल के मालिक के पास गए। उसने बताया ये कोई सरकारी मुलाजिम है, पीटर्सबर्ग से आया है और सारातोव की तरफ जा रहा है। इसका नाम इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्तकोव है, लेकिन अजीब शैतान आदमी था। वो भी 2 हफ्ते से उनकी रोटियां तोड़ रहा था और उनकी छाती पर मूंग तल रहा था। न होटल से निकलने का नाम ले और न उनके बिल के चुकाने का नाम ले। होटल मालिक की बात सुनकर मैं तो जैसे उछल पड़ा। मैंने डॉब चिस्की से कहा, पकड़ा, ये वो आदमी।
7: नहीं बाप, पहले मैंने ये कहा।
6: अरे हो सकता है पहले तुमने कहा, लेकिन फिर मैंने भी तो कहा था यही है वो पीटर्सबर्ग का अफसर।
7: कौन सा अफसर?
6: अरे भूल गए मेयर साहब, अजीब पीटर्सबर्ग का अफसर
7: क्या,
6: यानी इंस्पेक्टर जनरल।
7: क्या?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता।
7: वो कैसे हो सकता?
1: वही है मेयर साहब, वही है। वो होटल में एक पैसा नहीं देता, वहां से जाता भी नहीं। इतनी हिम्मत एक इंस्पेक्टर जनरल की ही हो सकती है, किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे की नहीं।
6: एक बड़े अफसर की तरह वो हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहा था। हम लोग जब खा रहे थे तो उसने जिस ढंग से हमारे खाने की तरफ देखा, वो पैनी नजर एक इंस्पेक्टर जनरल के अलावा और किसी की नहीं हो सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
1: अगर सचमुच वो इंस्पेक्टर जनरल ही है तो फिर तो भगवान ही हमारा मालिक है। बॉब चिस्की, तुमने उसका नाम क्या बताया?
6: इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्तकोव।
1: उसके कमरे का नंबर क्या है?
7: नंबर 4,
6: जहाँ पिछले साल कमेटी के अफसरों में मारपीट हुई थी
1: ना। और उसे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए?
6: 2 हफ्ते।
1: मारे गए, अब क्या होगा?
9: मेरा एक सुझाव है मेयर साहब, हम सब मिलकर इंस्पेक्टर साहब का स्वागत कर दीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला ही वहाँ जाऊंगा, अकेला। आप लोग तो वहाँ जाकर ठूंठ की तरह खड़े हो जाएंगे। डॉब चिस्की, तुम बता रहे थे कि इंस्पेक्टर नव युवक सा लगता है।
7: जी हाँ, मुश्किल से 23-24 साल का होगा।
1: ये भी गनीमत है, नौजवान अफसरों को उल्लू बनाना आसान है। अच्छा साहिबान, आप लोग फटाफट सब चीजें ठीक ठाक कर लीजिए, समझे आप। मैं होटल का दौरा लगाने और यात्रियों की सुख सुविधा मालूम करने का बहाना कर इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ। मिश्का, मिश्का
10: जी हुजूर,
1: गाड़ी तैयार है?
10: जी तैयार है।
1: प्रहरात कहाँ है
10: हुजूर? वो आज ड्यूटी पर नहीं है।
1: क्यों नहीं है?

0: जी वो रात आबकारी वाले नुक्कड़ पर पहरा दे रहा था, सुबह जब ड्यूटी से लौटा तो नशे में धुत था। दो तीन टब पानी डाले जाने पर भी उसका नशा ज्यों का त्यों है।
1: तुम लोग सिपाही नहीं हो, बादशाह हो बादशाह। तुम भरकर अंदर जाओ। नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, भरो भरो भरो, और पुलिस सुपरिंटेंडेंट को बुला लो, समझे? जल्दी जल्दी।
2: अभी जज साहब, मेरा ख्याल है कि अब चलकर सब कुछ ठीक ठाक कर लेना चाहिए।
3: अबे तुम्हें क्या फिक्र है हेल्थ अफसर साहब, मरीजों को साफ वर्दी पहना दोगे, सब ढक जाएगा।
2: जी हाँ, और अस्पताल के कोने कोने से जो बदबू के झोंके आते रहते हैं उसे आप किस तरह से?
3: बदबू तो जनाब मेरी अदालत से भी बहुत आती है, पर मुझे इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं है। डर यह है कि कहीं इंस्पेक्टर साहब ने भूले भटके कागज पर नजर डाली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पिछले 15 साल से मैं फैसला देता आ रहा हूँ, लेकिन मैंने कसम खाने को भी कभी कागज पर नजर नहीं डाली और न पढ़ा।
4: चिंता मत करो मित्र, इंस्पेक्टर साहब तुम्हें इनाम दिए बिना नहीं रहेंगे। हाँ,
5: कौन
6: कौन है?
5: कौन?
7: हुजूर, आपने मुझे याद किया।
4: आ गए आप पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब। पलक झपकते देर नहीं होती कि आप ना जाने कहां उड़नछू हो जाते हैं। ये आलम है हमारे शहर के सम्मानीय पुलिस सुपरिंटेंडेंट का।
7: मगर हुजूर, मैं तो बाहर के गेट पर ड्यूटी दे रहा था।
4: सुनिए, इस शहर के मुआयने के लिए पीटर्सबर्ग से अफसर आ पहुंचा है, आपको सारा इंतजाम करना है। जल्दी से किसी लंबे तगड़े सिपाही को नई वर्दी पहनाकर पुल पर खड़ा कर दीजिए, ताकि अफसर पर रौब पड़ जाए। शहर का सारा कूड़ा किसी बुत या किसी स्मारक के पीछे फेंकवा दीजिए। शहर के एक किनारे कुछ खुदाई करवा दीजिए और मजदूरों को हिदायत दे दीजिए कि मिट्टी इधर उधर करते रहे, जिससे ये लगे वहां जमीन बराबर की जा रही है।
7: जी बहुत अच्छा।
4: और हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अफसर ने किसी पुलिस वाले से सवाल किया, तुम अपनी नौकरी में खुश तो हो, तो उसे तुरंत उत्तर देना चाहिए, जी आपकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूं। ऐसे आदमी को बाद में सचमुच संतुष्ट करने पर विचार किया जाएगा।
7: जी, मैं इस बारे में अभी एक नोटिस घुमा देता हूं।
4: एक बात और है, अगर कोई पूछे कि अभी तक अस्पताल में गिरजा क्यों नहीं बनवाया गया, जबकि इसके लिए 5 साल पहले ही चंदा इकट्ठा कर लिया गया था, तो उसका जवाब यह है कि गिरजाघर बना था लेकिन उसमें आग लग गई, समझे आप। मैंने इस बारे में सरकार को रिपोर्ट भी भेज रखी है। डर यही है कि तुम में से कोई बेवकूफ कहीं ये ना कह दे कि गिरजे का निर्माण तो कभी शुरू ही नहीं किया गया। अब मैं जाता हूं, डॉपचिंस्की तुम मेरे साथ।
8: जी बात, मेरे साथ, मुझे भी साथ ले लीजिए।
4: समझदारी की बात करो बॉबचिंस्की, गाड़ी में दो ही आदमियों की जगह।
8: कोई बात नहीं, मैं पायदान पर ही खड़ा खड़ा चला जाऊंगा। दरअसल मैं भी दरवाजे की दरार से अफसर और आपकी भेंट देखना चाहता हूं।
4: अच्छा, आइए आइए, चलिए चलिए
9: चलिए चलिए। सुनिए सुनिए,
10: अरे पापा तो चले गए। मम्मी
11: और क्या मारिया, ये देर सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है।
10: मम्मी मेरा नेकलेस कहाँ रखा है? मम्मी मेरे हेयर पिन नहीं मिल रहे। मम्मी क्या अफसर आ गया है? कैसा दिखता है, जवान है या बूढ़ा है?
11: लेकिन लेकिन पापा ने जाने से पहले हमें बुलाया क्यों नहीं? अब हम अफसर को कैसे देखेंगे?
10: तू क्या देखेगी, तुझे तो पोस्ट मास्टर को देखने से भी फुर्सत नहीं मिलती।
12: न जाने पापा का अफसर कैसा होगा, मेरा दिल कहता है वो बहुत सुंदर होगा।
13: धत तेरे की, हमें पीटर्सबर्ग से चले 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक आधे रास्ते में अटके हुए। लेकिन हमारे मालिक साहब को इसकी कोई फिक्र ही नहीं, उन्हें कोई काम ना काज ना नौकरी ना चाकरी, उन्हें तो बस हुक्म चलाना आता है।
14: और से इवान अलेक्जेंड्रोविच इलेस्टकोफ के लिए, यानी हमारे लिए शानदार होटल का शानदार कमरा बुक कर लो। आसिफ, जल्दी से बैरे को खाना लाने के लिए बोलो, लेकिन ध्यान रहे खाना एकदम लजीज हो, हमें घटिया खाना खाने की आदत नहीं।
13: घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुगा ले। अरे कभी इधर उधर से पैसे आ भी गए तो साहबजादे को जैसे पर लग जाते, फौरन बड़े बड़े आदमियों को जा घेरेंगे और जुए में तब तक जुटे रहेंगे जब तक जेब में आखिरी सिक्का रहेगा। हाँ, अरे कई बार मालिक जेबें गर्म करके भी आते हैं, तब मैंने भी खूब गुल छर्रे उड़ाए। कुछ ना पूछिए, खूब दावतें खाई हैं, बढ़िया कपड़े पहने। मैं और मालिक बाजार से निकलते हैं तो दुकानदार सिर झुका झुका कर स्वागत करते हैं, आइए आइए श्रीमान हमारी दुकान पवित्र कीजिए। ओहो, आज तो भूख के मारे ठीक से हंसा भी नहीं जा रहा, और होटल का मालिक है कि हमारी तरफ देखता तक नहीं। जोर की भूख लगी है कि ओह, मालिक आ गए। ओह मालिक, आज तो आप सह से जल्दी वापस आ गए।
4: नीचे जाकर मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत जोर की भूख लगी है।
13: मालिक ये काम मेरे बस का नहीं है।
4: क्या
13: मालिक, मेरा मतलब है मेरे जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। होटल के मालिक ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक आप उसका पिछला बिल नहीं चुका देते वो हमारे खाने की छुट्टी रखेगा।
4: उसकी शेम अचाल की हमें खाना देने से इनकार कर।
13: आज ही उसने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि वो शहर के मेयर के

0: पास हमारी शिकायत लेकर जा रहा है। कहने लगा मैं मेयर साहब को बताऊंगा कि पीटर्सबर्ग का एक उचक्का लफंगा अपने नौकर के साथ दो हफ्ते से मुफ्त मेरे होटल की रोटियां।
1: और तुम बहुत चाव के साथ ये सब सुनते रहे।
0: सुनना ही पड़ा मालिक। मुझसे कहने लगा फिक्र ना करो बच्चू, कल से तुम्हें जेल की रोटियां मिलेंगी।
2: बस भी करो, जाओ एक बार फिर उसे खाना भिजवाने के लिए बोलो।
0: मैं उसे यहीं बुला लाता हूँ, आप खुद ही उससे बात कर लीजिए ना।
2: मैं ऐसे घटिया आदमी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता।
0: अच्छा आप कहते हैं तो एक बार फिर बात करता हूँ।
2: ओफो, इतनी भूख लगना भी मुसीबत है इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्त को। तुम भी किस भूखे शहर में आकर फंस गए। यहाँ तो रहने का मजा ही नहीं आ रहा, पर यहाँ से निकले भी कैसे? जेब में फूटी कौड़ी नहीं, और उधर सारा तो मैं बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बाबा समझते हैं मैं पीटर्सबर्ग में किसी अच्छी खासी नौकरी में हूँ, और हमें अभी तक ये भी नहीं मालूम कि नौकरी किस बला का नाम।
0: मालिक लीजिए, वेटर खाना लेकर आ गया।
2: खाना?
0: जी
2: यानी कि खाना। खाना
3: हमारे मालिक ने कहा है आज के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा।
2: भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक। मेरा मतलब है मित्र, पैसा वैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, मुझे खाने का इतना चाव नहीं है, लेकिन इसलिए खाता हूँ क्योंकि क्योंकि क्योंकि मुझे खाना है। हाँ
3: जी जी।
2: खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये क्या सिर्फ सुपर मुर्गा? ये क्या बदतमीजी है, इसे ले जाओ और अपने मालिक से कहो ये बहुत कम है।
3: मालिक कहते हैं ये जरूरत से ज्यादा है।
2: बकता है, और बाकी चीजें कहाँ गई? मछली, कलेजी, कटलेट और वो अचार चटनी?
3: बाकी चीजें नहीं है।
2: क्यों नहीं? अरे मैंने ऊपर आते हुए खिड़की से झांक कर देखा था तो पिद्दी से गा उंगलियां चाट चाट कर दुनिया भर की चीजें हड़प रहे।
3: अजीब, ऊंचे ग्राहकों के लिए हैं, आप जैसों के लिए नहीं।
2: बको मत, मेरे गले में वो चीजें अटकती, वो लोग भी तो मुझ जैसे मुसाफिर हैं।
3: फर्क है हुजूर, वो नकद दाम देते हैं और आप।
2: मैं इतनी गजा नहीं खाता कि तुम जैसे जाहिल कमार से बहस कर सकूं। ये सूप, ये सूप है जैसे गर्म पानी में नमक घोल दिया गया।
3: कोई बात नहीं हुजूर, मालिक ने कहा था आपको जरूरत ना हो तो वापस ले आना।
2: वापस ले आना? लो आसिफ, बाकी तुम पी लो।
0: बहुत अच्छा।
4: ये मुर्गा बना मुंह में रखते ही जबड़ा अलग हो जाए जैसे किसी पेड़ का ठूंठ हो। लो आसिफ, थोड़ा तुम भी लो।
3: मैं अब जा सकता हूँ।
2: सुनो मित्र, खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। आसिफ, तुम बेटर जी के साथ चले जाओ, ये खाना है सूप की जगह उबला पानी और गोश्त।
0: मालिक, मालिक नीचे मेरा आया हुआ है और आपके बारे में कुछ पूछताछ कर रहा है।
2: क्या?
0: जी हाँ।
2: आखिर उस बदमाश ने मेयर के पास मेरी शिकायत करी थी? नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेयर की क्या मजाल कि मुझे जबरदस्ती जेल भेजे, मैं उसे ऐसी झाड़ दूंगा कि याद रखेगा। तुम्हारी ये हिम्मत हुई कैसे, तुम्हारी ये मजा?
5: श्रीमान मेरा अभिवादन स्वीकार करें।
2: आप भी मेरी नमस्ते दीजिए।
5: क्षमा कीजिएगा बिना पूछे ही चला।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं।
5: दरअसल शहर के मेयर की हैसियत से ये मेरा पहला फर्ज हो जाता है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखूं, उन्हें किसी भी तरह।
2: लेकिन आप ही बताइए इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो होटल की कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। दरअसल शरारत तो होटल के मालिक की है, वो मुझे जान बूझ कर घटिया खाना देता है, मांस ऐसा जैसे पत्थर के टुकड़े हों, और सूप भगवान ही जाने उसमें क्या डाला जाता है। मैंने अभी अभी उसे खिड़की से बाहर फेंका है, चाय में मछली की बू आती है, और ऊपर से वो मुझे धमकी देता है कि मुझे वो।
5: मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हुजूर, बहुत शर्मिंदा हूँ। आपसे सच बताऊं उसमें मेरी जरा भी गलती नहीं है, हमारा शहर तो ताजे गोश्त के लिए मशहूर है। ताज्जुब है ये आदमी कहां से कूटा उठा लाता है। दरअसल ये होटल आपके रहने लायक है भी नहीं, मैं आपसे कहीं और चलने की प्रार्थना कर सकता हूँ?
2: नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं खूब समझता हूँ कहीं और से आपका मतलब क्या है। आप इस बहाने मुझे जेल ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको मुझे जेल ले जाने का क्या अधिकार है?
6: हे भगवान, ये तो सब जानता है, जरूर किसी ने इससे मेरी शिकायत।
2: जनाब आप पूरी फौज लेकर आइए तो भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं सीधा जार के पास जाऊंगा। आप लोग मुझे समझते क्या हैं?
6: ऐसा ना कीजिएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे तबाह हो जाएंगे।
5: खूब खूब, तो आपके बीवी बच्चों को बचाने के लिए मैं जेल चला जाऊं?
2: माफ कीजिए, मैं भी सब जानता हूं,
6: मुझसे गलती हुई हुजूर। दरअसल मुझ में अकल की बहुत कमी है, और क्यों ना हो हुजूर, तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि सारा दिमाग उधर सोचने में ही खत्म हो जाता है, तभी तो भूले भटके रिश्वत लेने की गलती हुई है हुजूर।

0: लेकिन विश्वास कीजिए, रिश्वत में भी हमेशा छोटी मोटी चीजें ही ली हैं मैंने। और वो जो आपने वो देखी ना, हवलदार की विधवा को कोड़े लगाने वाली बात सुनी होगी ना, वो बिल्कुल झूठ है साहब, बिल्कुल झूठ है। मेरे दुश्मनों का गढ़ा हुआ किस्सा है। और हुजूर आपसे क्या कहूं, इन दुश्मनों से तो मुझे अपनी जान का भी खतरा हो गया।
1: मुझे इन बातों से क्या लेना देना, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं कर सकते।
0: नहीं नहीं,
1: मैं होटल का एक एक पैसा चुका दूंगा, पर इस समय मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
0: धूर्त कहीं का, किस चालाकी से पैसे की बात छिड़ी है। पर बच्चों, मैं भी तुझे अपने जाल में फंस कर ही छोड़ूंगा। माफ कीजिएगा हुजूर, अगर आपको पैसों की दिक्कत हो तो मैं सेवा के लिए उपस्थित हूं। शहर में आने वाले प्रत्येक यात्री की सेवा करना तो मेरा
1: ठीक है। ठीक है ठीक है, आप मुझे कुछ रूबल उधार दे दीजिए ताकि मैं होटल का बिल दे सकूं। मेरा ख्याल है 200 रूबल में काम चल जाएगा।
0: ये लीजिए, गिनने के कष्ट न कीजिएगा,
2: पूरे 200।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वापस जाते ही भिजवा दूंगा। अरे आसिफ,
0: डॉबचिंस्की,
3: शुक्र है इतने पैसे चुपचाप ले लिए इसने। मैंने भी समझदारी की, 200 की जगह 400 रूबल दे दिए।
1: आसिफ, वेटर को बुला लाओ।
4: जी अच्छा।
5: इंस्पेक्टर जनरल गोगोल के इस प्रसिद्ध नाटक के हिंदी रेडियो रूपांतरण का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार थे शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

आइए सुनते हैं फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। ये है फिल्म एडिटर दिलीप दरक के फिल्मी गीतों की एक झलक।

0: इतनी ही फिल्मी हस्तियों से आज तक हम मिलते रहे हैं, उनसे रूबरू होते रहे हैं, और आपने फिल्म के जितने भी पक्ष हैं, जितने पहलू हैं, फिल्म निर्माण हुआ, फिल्म निर्देशन हुआ, फिल्म में एक्टिंग करने वाले भी यहां आते रहे हैं, फिल्म के लिए गीत गाने वाले आते रहे हैं, संगीतकार आते रहे हैं, शायर आते रहे हैं, गीतकार आते रहे हैं, मगर फिल्म का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, एक पहलू है, जो है फिल्म एडिटिंग। आज उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है विविध भारती के स्टूडियो में जाने माने फिल्म एडिटर यानी फिल्म संपादक दिलीप दरक जी को। दिलीप जी, विविध भारती के स्टूडियो में इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हम भी आपका सबका आभार मानते हैं कि आपने हमको बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में, और सभी श्रोताओं को भी हम स्वागत करते हैं और सबका अभिनंदन करते हैं कि स्टाफ का पूरा विविध भारती के, जिन्होंने हमको इस इंटरव्यू के लिए बुलाया
0: जी।
1: और संवाद के लिए बुलाया, तो हम आपका आभारी है और हम ऐसी चीजों पर बातचीत करेंगे जो कि फिल्म से संबंधित है, सब बातचीत करेंगे। तो पात्रीकर जी, आप पूछिए क्या पूछना है।
0: दिलीप जी, फिल्मों में कहानी के मुताबिक जितने सीन्स शूट किए जाते हैं, गीतों का एडिटिंग होता है, इसकी तो बात हमने की, मगर कई बार एक एक्शन सीन्स होते हैं जो मारधाड़ वाले सीन्स हुए हैं, या कहीं से मोटर आ रही है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, इस तरह के सीन जो एक्शन सीन्स होते हैं, इनमें एडिटिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: क्यों? तो सर, वो शॉर्ट में क्या करते हैं, वो एक्शन सीन में
0: जी,
1: एक्शन सीन तो अभी सब तो कंप्यूटराइज हो गया, पहले रियल हो जाता था।
0: अच्छा,
1: मतलब पहले गाड़ियां उड़ाते थे।
0: हाँ।
1: तो एक पिक्चर हमने की थी, उसमें 6 गाड़ियां उड़ा दिए थे।
0: ओहो,
1: रियल चेस हुई थी।
0: अच्छा,
1: और वो इतनी बड़ी चेस है, हिंदुस्तान की पहली चेस थी।
0: हाँ।
1: जो राजश्री ने पिक्चर बनाया था एजेंट विनोद।
0: हाँ।
1: उसमें 6 के 6 गाड़ियां उन्होंने उड़ाए थे, उसमें कोई वायर नहीं था।
0: हाँ।
1: या कोई ट्रिक नहीं थी।
0: अच्छा,
1: वीरू देवगन उसका ये था फाइट कंपोजर एक्शन सीक्वेंस
0: जी,
1: उन्होंने गाड़ियां कैसे उड़ाए थे आज भी हम देखते हैं। और उन्होंने तो यहां तक किया था कि बॉम्बे में कोलाबा में शूट चल रही थी, मोटर बाइक जाते ऐसा ऊपर से। वो तो उन्होंने अपना इसे कहते, उस टाइम में कोई वायर नहीं था, अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत भी हुआ तो वायर लगा देते।
0: अच्छा।
1: जैसा अभी टेबल पर से कूदना है, वायर लगाए कूदे। मतलब उस टाइम के जो हीरो थे, जितने भी हीरो है, धर्मेंद्र है, शम्मी कपूर है, ये मतलब ज्यादा से ज्यादा खुद बॉक्सिंग
0: स्टंट किया करते थे, पूरा
1: एक्ट करते थे। उस टाइम में वायर था ही नहीं सर, खाली चेस वगैरह में होता था तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ये हो जाता।
0: हाँ।
1: बाकी खुद कर लेते थे सब, और बहुत सारे सीन रहते थे जैसे जंप मारने का वगैरह।
0: हाँ,
1: उसमें
0: हाँ।
1: कहीं जगह पर डुप्लीकेट यूज करते थे। और उस टाइम में तो क्या होता था कि एक पिक्चर आई थी, मैं बताता हूँ, गीता मेरा नाम पिक्चर का नाम है
0: जी,
1: और एक आई थी हमराई रामन। हाँ। सागर की
0: जी,
1: उसके अंदर एक सीन है हमराई में, रणधीर कपूर, तनुजा और गजानन झागीदार
0: जी,
1: उनके पीछे गुंडे लगते हैं और वो भागते हुए जाते हैं, और एक टूटा हुआ ब्रिज था उधर।
0: हाँ।
1: आप पिक्चर में अभी भी देखेंगे
0: जी, जी।
1: तो पहले टेक में वो जो डुप्लीकेट जो भी बैठे थे उन्होंने पूरा मार दिए थे जंप उधर।
0: अच्छा,
1: मतलब तो 40-50 मतलब 30-40 फीट का होगा ऐसा।
0: हाँ।
1: ब्रिज तो आपको मालूम है, छोटे नाले पर रहते हैं।
0: अच्छा,
1: मगर सेकंड टेक में वो गिर गए थे उधर आधे में।
0: ओहो,
1: तो ऐसा है। और एक पिक्चर आई थी गीता मेरा नाम, उसमें फिरोज खान, सुनील दत्त और साधना
0: जी,
1: तीनों के चेस तीनों भी क्रॉस करते पूरा।
0: अच्छा।
1: जंप करके, तो उसमें पहले जोखिम रहता था, कर लेते थे पहले, बहुत सारे में एक्सीडेंट हो जाते थे, कभी वो फाइटर ये हो जाता था। और अभी क्या है, तो अभी तो कंप्यूटराइज हो गया, अभी तो इजी हो गया
0: जी जी। तो ऐसे जो ये एक्शन सीन्स होते हैं, इन दृश्यों को जोड़ना, ये कितना मुश्किल काम होता था?
1: मुश्किल काम नहीं, उनके शॉट रहते सर।
0: अच्छा,
1: शॉट वो कटिंग में ले लेते शॉट।
0: अच्छा,
1: कटिंग में लेने के बाद हम वो काट लेते, जैसा इधर से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया। जैसा विलन में एक्सीलेटर दबा दिया।
0: अच्छा,
1: हीरो उधर से आ रहा है।
0: हाँ।
1: विलन इधर से आ रहा है, दोनों की टक्कर हो रही है, दोनों उड़ के गिर रहे हैं, ये अलग अलग शॉट लेते वो।
0: अच्छा,
1: कट में।
0: हाँ।
1: तो हमको वो टाइमिंग के हिसाब से ड्रुर किया उधर, उसने ड्रुर किया, फिर इसने देखा।
0: हाँ।
1: उसने देखा, बैंग आ गया उसमें, फिर उसके बाद ये कर लेते। ये सब पूरे यूनिट का काम है सर। अकेला एडिटिंग में क्या होता है कि जिसमें डायरेक्टर का कल्पना रहती है, उसका थॉट रहता है
0: जी, जी।
1: उसको वो नैरेट करते हैं फाइट कंपोजर के साथ में।
0: हाँ।
1: फाइट कंपोजर उसको एग्जीबिट कर लेता है, पहले करके बताता है, वो भी सोचता है कि कैसा करे, ये करने के बाद फिर बाद में वो शॉट लिए जाता है, उसको असेंबल करते हैं।
0: हाँ।
1: और उसका असेंबल करने के बाद में वो जो हम पब्लिक को दिखाते हैं, असेंबल करने के बाद में फाइनल जो फुटेज रहता है उसका।
0: हाँ।
1: जो इम्पैक्ट क्या रहता है,

0: सीक्वेंस देखा रहता है कि भाई इधर से हीरो आएगा, इधर से विलन आएगा, दोनों की टक्कर होगी, दोनों हवा में गिरेंगे, इधर गिरेंगे, उधर गिर गए, रिएक्शन आ गया, दोनों उठ के भाग गए। ये तो अपना कहानी में हो गया, वो शूट कर लेते। शूट करने के बाद डायरेक्टर वगैरह दोनों मिलकर अपना दिमाग लगा के सब जो उनका कॉन्सेप्ट है वैसा कर लेते, बाद में एडिटर को लाके दे देते भाई काट दो। तो हम काटते हैं और डायरेक्टर को पसंद आ गया तो हम जीत गए।
1: अच्छा,

0: आपको क्या चाहिए,
1: हाँ,
0: आपने शूट किया क्या चाहिए, वही डायरेक्टर ये कर लेता था।
1: कोई ऐसी फिल्म का एक्शन सीन याद आ रहा है जिसको एडिट करने में आपको बहुत मजा आया हो और डायरेक्टर को बहुत ज्यादा आपका काम पसंद आया हो?
0: पिक्चर तो किया था मैं, इंडिपेंडेंट बहुत पिक्चर किया था।
1: हाँ जी,
0: एक पिक्चर थी हमारा एक जख्म बोल के पिक्चर था एक,
1: हाँ,
0: मैंने इंडिपेंडेंट 2006 में आया था पिक्चर
1: जी,
0: उसमें मुकेश तिवारी एंड नया हीरो था,
1: हाँ,
0: उसका था। और एक जानी दुश्मन पिक्चर आई थी हमारी
1: जी जी
0: जो सनी देओल की,
1: हाँ,
0: उसमें ग्राफिक था पूरा इसमें, तो उसके अंदर टूनू वर्मा सनी देओल तरफ से फाइट मास्टर था और अक्षय कुमार तेरी तरफ से अब्बास अली मुगल।
1: अच्छा,
0: तो इतना अच्छी तरह से शूट किए थे, वो हमको बोलते थे दादा ये शॉट ऐसा यहां से आएगा, ये ऐसा आएगा, ये आएगा। तो उसमें क्या है कि जो पंच रहते थे जैसा इधर मुंह पर मार दिया वो अलग लेते थे, वो लॉन्ग शॉट में अलग रहता था, जैसा आपने बोले ना लॉन्ग शॉट में हीरो आया नजदीक क्लोज में फेस के ऊपर विषम कर दिया,
1: अच्छा,
0: तो वो अलग शॉट रहता था। फिर गिरने का इनका, अभी तो आजकल क्या है गिरना पड़ना ज्यादा हो गया, ऊपर से जंप मार लेते गोल गोल घूमते,
1: हाँ,
0: मगर उस टाइम में ज्यादा नहीं रहता था। तो वो पूरा मैच करके वो पसंद आना चाहिए, डायरेक्टर बोले कि भाई अच्छा लगा हमको।
1: जी जी
0: कुछ एडिटर ऐसे थे कि डायरेक्टर उनको बोलते थे दादा ये काम कर लो आप। हमारे एक डायरेक्टर थे, मेरे भाई के साथ भी मैंने काम किया था नागेंद्र के साथ में
1: जी,
0: मगर एक डायरेक्टर थे प्रकाश पंचाल
1: जी जी
0: तो उनके साथ में मेरी पहली पिक्चर थी लाभलो सौभाग्य चलेनी
1: मराठी फिल्म,
0: मराठी फिल्म।
1: जी
0: तो उसमें उसके पास 7 एडिटर जा चुके थे वो पिक्चर में।
1: हाँ,
0: उसका कंडीशन क्या था कि 22 फरवरी को पिक्चर की शूटिंग चालू करने वाले थे वो,
1: हाँ,
0: 22 मार्च को पिक्चर की शूटिंग खत्म,
1: अच्छा,
0: 1 तारीख से डबिंग चालू,
1: हाँ,
0: और 17 तारीख के दिन उनको मिक्सिंग, और उनका हीरो का कोई जाने वाला था बाहर। तो वहां पर सब डर गए कि भाई इतना कैसा काम होगा ऐसा फास्ट। तो मुझे बुलाया डायरेक्टर ने,
1: जी,
0: तो प्रोड्यूसर भी थे साथ में 3, अजय शाह, राजेंद्र काले और अमित मंगतानी, 3 प्रोड्यूसर थे। अनित मंगतानी का था कैसेट का, कैसेट बनाते थे
1: जी,
0: और ये राजेंद्र काले तो कॉरपोरेटर थे गोरेगांव के, और अमित शाह बिजनेसमैन थे,
1: जी
0: तो उनको तो कुछ ज्यादा नहीं था। तो मुझे बोले कैसा करेंगे, मैं बोले करके दे दूंगा बताओ। तो उन्होंने पूछा कैसा करोगे, मैं डायरेक्टर को बोला कि एक काम करो, जो पिक्चर फ्लैशबैक चालू होती थी,
1: जी,
0: एक समारोह है उधर शादी हो रही एंगेजमेंट, मगर कोई आदमी विलन आके बोलता है कि भाई ये नाजायज बच्चा है, तो फिर वो एक्सप्लेन कर लेता है पूरी पिक्चर की कहानी। तो उसमें क्या फ्लैशबैक था, फ्लैशबैक 1 नंबर में चालू होता था, 16 नंबर में खत्म हो जाता था।
1: अच्छा,
0: तो डायरेक्टर को मैंने क्या बोला कि सर आप एक काम करो, आप मुझे कहानी बताओ खाली क्लाइमैक्स में आप बैठो, सुन जाना। और बहुत सारे डायरेक्टर कॉम्पैक्ट स्क्रिप्ट रहता था, भाई ये सीन है इसमें इतनी शॉर्ट है,
1: अच्छा,
0: वो स्क्रिप्ट हमको दिए जाते थे, मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से एडिट किया उसको, और टेकिंग अच्छी रहती थी, बहुत सारे डायरेक्टर टेकिंग अच्छी करते थे। मेरे डायलॉग के बाद आपका डायलॉग आ गया, हीरोइन का आ गया, ये आ गया, इंसर्शन आ गया, ये आ गया, हो गया, हो गया, और हम सीन दिखे दिखाते थे। कुछ डायरेक्टर तो इजी रहता था, प्रकाश पंचाल के साथ मैंने 9 पिक्चर की है एक ही डायरेक्टर के साथ में।
1: अच्छा,
0: तो उनका क्या था कि भाई वो शूटिंग उधर करते थे, कभी कभी हम एडिटिंग इधर करते थे, तो आने तक टाइम बच जाता था। उन्होंने जब 22 को मार्च को खत्म किया,
1: हाँ,
0: तो मेरा क्लाइमैक्स छोड़ के गाने छोड़ के सब एडिट कर लिया था मैं।
1: अच्छा,
0: आने के बाद देखे उन्होंने, क्लाइमैक्स के लिए बैठ गए, क्लाइमैक्स बैठने के बाद वो क्या रहता, थॉट रहता है ना उनका, कहां से चालू करना है कहां खत्म करना है,
1: हाँ,
0: बाकी तो सब था। और गाने तो एडिट अच्छी तरह से पिक्चराइज किए थे, तो वो हमने वो पिक्चर को उनको करके दे दिया, तो पिक्चर रिलीज हो गई। उसके बाद वो डायरेक्टर हमको छोड़ा ही नहीं,
1: अच्छा,
0: 10 पिक्चर किया, मेरे भाई की पिक्चर नहीं किया मैं दूसरी, मगर उसकी किया था।
1: अच्छा, तो कार्यक्रम के इस मोड पर आप कौन सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
0: मेरा सर एक गाना था मैं जिसको बहुत लाइक करता हूं,
1: हाँ जी,
0: हर एक आदमी की जिंदगी में एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है हर एक का, लड़की का भी रहता है, लड़के लड़के को लगता है कि हमको राजकुमार मिले,
1: हाँ,
0: लड़के को लगता है कि हमको राजकुमारी मिले, जो जीवन संगिनी है,
1: हाँ,
0: अर्धंगिनी जो बोलते हैं जिसको,
1: हाँ जी,
0: वो अच्छी मिले तो वो हमेशा सपने में सोचते रहते हैं।
1: हाँ,
0: एक गाना था वो, पहले मिले थे सपनों में, आज सामने पाया तो एक बात जानू, ये जिंदगी पिक्चर का गाना है, राजेंद्र कुमार वैजयंती माला का,
1: हाँ,
0: रामानंद सागर की पहली पिक्चर मतलब उनके बैनर में बनी थी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था,
1: अच्छा,
0: और वो गाना बहुत अच्छा लगा।
1: आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं यही गाना।

0: दिलीप जी, फिल्म देखते समय सबसे पहले टाइटल्स आते हैं, तो हमारे श्रोता जितने भी आम दर्शक हैं फिल्मों के, उन टाइटल्स में एक नाम देखते हैं, उस लिखा होता है फिल्म एडिटर, और उस नाम के नीचे लिखा होता है AFE। ये AFE क्या होता है
1: सर? जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है,
0: हाँ जी,
1: फिल्म लाइन में, आर्टिस्ट का,
0: हाँ जी,
1: उसके बाद प्रोड्यूसर का,
0: हाँ,
1: डायरेक्टर का, कैमरामैन का, एडिटर का, सबके एक अपने यूनियन है उनके।
0: अच्छा,
1: यूनियन मतलब एक एसोसिएशन है,
0: हाँ हाँ,
1: जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, तो उसका नाम है AFE लिखा जाता है, तो एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर।
0: एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो
1: हमारा पूरा जो है ना,
0: हाँ हाँ,
1: कुछ जितने भी एसोसिएशन है मेरे, 20-30 जितने भी है,
0: हाँ,
1: वो सारे का एक फेडरेशन है।
0: अच्छा,
1: वो उड़ा जुड़ा जाता है, तो इसमें सबको लिया जाता है, जैसे डायरेक्टर का IFDA, IFDA इंडियन फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन, WICA कैमरेमैन का रहता है उनका, ऐसा सबका अलग अलग है।
0: तो ये यानी कि एक प्रोफेशनल एडिटर जो बन जाता है और इंडिपेंडेंटली फिल्म को एडिट करता है ना, तो स्वतंत्र रूप से, तो वो AFE अपने नाम के आगे लिख सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं?
1: नहीं, हमारे संस्था में क्या था कि हम जितने भी लोग काम करते हैं
0: जी,
1: चाहे उसमें म्यूजिक डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो,
0: हाँ,
1: राइटर हो, इनके एसोसिएशन है, तो उनको जो भी आप काम करेंगे वहां रजिस्टर करना पड़ता है आपको।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: बिकॉज कुछ आगे चल के मैटर आ जाए या कोई बोले कि भाई ये पिक्चर का एडिटर मैं हूं, तो उसलिए हमारा एग्रीमेंट बनता था।
0: अच्छा,
1: तो एग्रीमेंट के साथ में हम जाके उधर हम ये कर लेते थे, रजिस्ट्रेशन होता था।
0: अच्छा,
1: तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद एसोसिएशन में सपोज करो मैं काम कर रहा हूँ
0: जी,
1: और अगर समझो वो पिक्चर का प्रोड्यूसर ने किसी दूसरे को रखा था पहले, तो अगर चल के वो क्लेम करेगा तो हमको अड़चन आ जाएगी, इसीलिए हम पहले वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं।
0: तो आप इस एसोसिएशन से सबसे पहले कब जुड़े थे?
1: मैं 78 में
0: 78 में ही शुरुआत में ही
1: हाँ।
0: जी जी जी जी
1: 78 में जुड़ा था,
0: हाँ।
1: जो

0: राजश्री में एक साल पूरा हो गया था, जून 78 में, जो अगस्त 78 में, जून जुलाई ऐसा कुछ था, तो उस टाइम में हमको एक कार्ड मिलता था पहले कि भाई अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस में 25 रूपये में हमको भर के कार्ड मिलता था
1: जी।
0: तो आजकल सब कार्ड बने हैं, वो हम दिखाते थे तो हमको लैब में जाने देते थे।
1: अच्छा।
0: शूटिंग में हमको जाना है जाने देते थे, क्योंकि तो उस टाइम, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, उस टाइम में भी स्ट्रिक्ट था मगर इतना ये नहीं था, गड़बड़ जो होती है आजकल हाँ। वो नहीं था, तो वो हम दिखाते थे हमको छोड़ देते थे। फिर उसके बाद हमारा कार्ड बना मेरा असिस्टेंट का 78 में
1: जी।
0: उसके बाद मुझे मनोकामना पिक्चर मिली थी, तो हमको कार्ड मिला था, तो हमारा उस टाइम में फीस कुछ हमसे 251 रूपये लिए थे।
1: अच्छा।
0: एसोसिएशन ने
1: जी।
0: जो कि उनको लेते हैं, सब एसोसिएशन में मेंबर बने लेने आते हैं, तो उसके बाद वो कार्ड देते, तो कार्ड में लिखा रहता है कि IFDA जो आप बोले ना,
1: हाँ, AFE लिखा होता
0: है, AFE लिखा रहता है
1: हाँ।
0: तो वो कार्ड ऐसा रहता है कि वो हमको कार्ड मिल जाता है
1: जी जी जी।
0: तो ये कार्ड में हमको, हम किधर भी जा सकते हैं ये।
1: अच्छा।
0: और एनी स्टेट में ये अप्रूवल है गवर्नमेंट से,
1: हाँ,
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एसोसिएशन फेडरेशन अप्रूवल है
1: हाँ।
0: जैसा हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको जाना पड़ता है मद्रास, एडिटिंग के लिए मैं मद्रास जाता था, कलकत्ता जाता था, भुवनेश्वर जाता था, जितने भी लैब है उधर जाता था, तो उधर हमको ये कार्ड कैरी करना पड़ता था।
1: अच्छा।
0: तो ताकि वो बोलते थे कि हम इधर के मेंबर है और ये हम ऐसा है, तो AFE का मतलब ये है, मतलब एसोसिएशन ऑफ फिल्म एडिटर।
1: चलिए यहाँ इस बात पे एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
0: मैं तो सर जिंदगी में नोक झोक
1: जी
0: प्यार के साथ में नोक झोक जो होना जरूरी है।
1: हाँ।
0: आज हम बीबी के पास चले जाते हैं, हमारी बीबी रूठी रहती है, कभी हम देर से जाते हैं।
1: अच्छा।
0: हमारी लाइन ऐसी है, कभी कभी हम 2-3 दिन घर नहीं जाते थे तो रूठी रहती थी, तो उसके ऊपर एक गाना है शम्मी कपूर का, जवां मोहब्बत पिक्चर का,
1: हाँ।
0: रूठो रूठो ना मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी हो गई पहचान।
1: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है, आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

फिर ऐसा समा होगा न किस्मत जगमगाएगी। जरा सी बात का आखिर बनाती हो क्यों अफसाना।

0: रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जान सी बहाने आज तेरी मेरी खो गई पहचान।
1: दिलीप जी, एडिटिंग की बात हम कर रहे हैं। एक जमाना था जब फिल्में रील पर बनती थी, निगेटिव रील हुआ करता था
2: जी, जी।
1: और वो फुटेज आपके पास आता था, आप उसको एडिट करते थे। अब जमाना बदल गया है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। शूटिंग जो कैमरे भी जो है वो डिजिटल कैमरे हैं
2: जी सर।
1: तो शूटिंग जो है उसमें डेटा के रूप में वो शूटिंग कैद हो जाती है और बाद में उसकी एडिटिंग भी उसी तरह से होती है कंप्यूटर पे। ये जो फासला है रील से डिजिटल कैमरे तक का, आपको भी ये सीखना पड़ा होगा?
2: नहीं सर, हमारे पास क्या है कि मेरा क्या हुआ कि मेरे जो प्रोड्यूसर जितने भी है,
1: हाँ,
2: प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने में हम पर डिपेंड रहते, डिपेंड मतलब वो बोलते थे कि भाई तुझे ये हमने लाके दे दिए,
1: हाँ,
2: तुम काम कर दे, हमको मालूम नहीं।
1: अच्छा।
2: तो क्या पैसा लेना है ले ले, ये कर ले।
1: अच्छा।
2: तो हम लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर लेते थे।
1: अच्छा।
2: अभी क्या हुआ, अभी भी सेम सिस्टम है, खाली अपना कैमरा चेंज हो गया, ये हो गया। तो उसमें क्या है कि अभी कैमरे में चिप्स आ गए,
1: हाँ,
2: कैमरे में चिप्स आ गया। जो अभी मैंने भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है
1: जी,
2: वो मैंने बनाई है माताजी के नाम से, मूसा माता के नाम से
1: जी।
2: तो मैंने भी क्या किया, कैमरा लिया,
1: अच्छा,
2: उसके अंदर चिप्स आते हैं, फिर वो अपना कंप्यूटर में लेके वो पूरा जो हमने शूट किया है
1: जी,
2: हमको हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करके दे दिए उन्होंने, शूट किए उसमें।
1: अच्छा।
2: तो पूरा कन्वर्ट करके देने के बाद वो जो कन्वर्ट किया हुआ है हमारा मटेरियल,
1: हाँ,
2: वो हम फिल्म मशीन आते हैं एफसीपी बोलते हैं,
1: अच्छा,
2: उसमें जाके उसको लोड कर लेते हैं,
1: अच्छा,
2: कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें, और फिर बाद में उसका एडिटिंग होता है अभी।
1: अच्छा।
2: पहले क्या होता था कि फिल्म पर जब एडिटिंग होती थी,
1: हाँ,
2: तो कैमरा में फूजी कलर, ईस्टमन कलर, ओलो कलर रील आते थे 400-400 फीट के,
1: हाँ,
2: तो वो रील क्या होता था कि शूट होने के बाद उसको हम डेवलप करके लिए प्रोड्यूसर लैब में भेज देता था। जैसे एक फोटो निकालने के बाद हमारे पास पॉजिटिव आता है, निगेटिव,
1: हाँ,
2: निगेटिव चला जाता है लैब में डेवलपिंग के लिए, डेवलप होने के बाद हम उसको जोड़ देते थे।
1: अच्छा।
2: जोड़ के रील बनता था उसका, वो रील हम लैब में देते थे, उसका पॉजिटिव बन के आता था।
1: अच्छा।
2: नेगेटिव उधर ही रहता था,
1: हाँ,
2: पॉजिटिव हमारे पास आने के बाद में हम उसको, उसका एक क्लैप रहता था, 1/2 take 1 ऐसा करके आता था आवाज
1: जी, जी,
2: तो वो आवाज आता था, वो आवाज के साथ में वो जो पिक्चर में आवाज है,
1: हाँ,
2: वो मैच करते थे, तो हमारा पूरा साउंड सिंक में जाता था वो पूरे शॉट।
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा।
2: फिर वो क्या सब असेंबल होने के बाद है ना,
1: हाँ,
2: तो वो हमको आगे पीछे का सब काट के जो ओरिजिनल बेस्ट है, जो हमारा डायलॉग है,
1: हाँ,
2: जो सीन की रिक्वायरमेंट है, उतना ही हम पोर्शन रख के बाकी निकाल लेते थे।
1: अच्छा।
2: और उसका फिर रील बनता था, रील बनने के बाद उसमें सब प्रोसेस होता था, बैकग्राउंड म्यूजिक है, इफेक्ट है,
1: हाँ,
2: सब होता था। फिर वो जैसा रील बनी है उसके हिसाब से नेगेटिव कटिंग होता था उधर
1: जी,
2: तो वो होता था। अभी सब कंप्यूटर पे हो गया सर।
1: आपने एक फिल्म दीवाना मुझसा नहीं, इसके साउंड एडिटर का भी काम किया है, तो ये साउंड एडिटिंग क्या अलग होती है फिल्मों के एडिटिंग में?
2: पहले क्या होता था सर कि एडिटर बॉस, उसके दो असिस्टेंट रहते थे
1: जी,
2: तो पॉजिटिव हम काट लेते थे, पॉजिटिव मतलब जो हमारा एडिटिंग हो गया
1: जी,
2: उसके बाद में उस वो पिक्चर का, वो पूरा पिक्चर कंप्लीट हो गया, डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, प्रोड्यूसर ने ओके बोल दिया, सब हो गया, तो वो पिक्चर में जितने भी कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर आके डबिंग करते थे उसका।
1: अच्छा।
2: डबिंग करते

0: देते तो उसका ट्रैक आता था जिसको डब ट्रैक बोलते थे हम, वो आता था, फिर उसमें कुछ इफेक्ट रहते थे।
1: अच्छा,
0: ये डबिंग वाला तो पोर्शन हो गया, कैरेक्टर आपका जो आर्टिस्ट है वो डब करते थे, सब आर्टिस्ट उसमें 20 हो 25 हो कोई अच्छा, भी हो अच्छा। हीरो हीरोइन लॉ अपना विलन हीरोइन की मां सब डबिंग करते थे। उसके बाद उसका एक ट्रैक बनता था डायलॉग का।
1: अच्छा,
0: फिर दूसरा ये इफेक्ट जैसा होता है ना कि ये चाय का कप रख रहे और हीरो चलते हुए आ रहा है टक टक टक टक, ये असेंबल करते थे, असेंबल रिकॉर्ड किया जाता था फिर से उसको।
1: अच्छा,
0: डबिंग की तरह। और वो सब डालते थे, जैसा गाड़ी का साउंड है वो हमारे पास रिकॉर्डिंग लाके देता था, हम काट के उसको डाल देते थे। तो उसका एक ट्रैक बनता था
1: जी जी
0: अलग सा, उसमें दो तीन ट्रैक बनने का था, ये एक ट्रैक में है ब्लो, एक में है किक, एक में है बॉडी फॉल।
1: अच्छा,
0: ये सब असेंबल होता था। जो म्यूजिक वाले रहते थे जैसा बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर है, रिकॉर्ड करते थे बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन का
1: जी,
0: उसके अंदर रिएक्शन का अलग वो म्यूजिक लेते थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक।
1: अच्छा,
0: जैसा ढम एक आवाज आता था बैंक का, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है उसमें ढम आवाज आता था पूरा, तो अलग देते थे, उसका बनता था। तो ये सब ट्रैक बनते थे, वो एडिटर लोग जो रहते ना उनके असिस्टेंट काम करते थे
1: जी।
0: कोई कोई एडिटर को डबिंग देते थे, वो परफेक्ट मैच करता था जैसा इसमें किया है अपना, उसको डबिंग एडिटर बोलते थे। बहुत लोगों ने नाम दिए, कोई देते नहीं थे।
1: जी
0: जैसा मनोज कुमार के पिक्चर में नाम आता था उमा शंकर नायक,
1: हाँ जी,
0: मतलब स्पेशली वो डबिंग के लिए था।
1: जी
0: बहुत सारे लोग आए, एक बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए अलग आदमी था। तो ये लोग क्या बराबर काम करते थे वो, और परफेक्ट सिंक, मतलब जो आर्टिस्ट ने बोला है वॉइस टू वॉइस लिप सिंक
1: जी,
0: पफ बब ये रहता है ना, मैच करके पूरा उसका ट्रैक बनता था पूरा। और म्यूजिक का भी ऐसा होता था, साउंड का, वो सब बोलते थे उसको। फॉरेन के अंदर
1: जी,
0: फॉरेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी ये चीज के।
1: हाँ हाँ
0: तो डबिंग एडिटर अलग, बहुत सारे पिक्चर में आप नाम देखते थे पुराने में, डबिंग एडिटर, इफेक्ट एडिटर, बैकग्राउंड म्यूजिक का एडिटर। इधर क्या होता था कि हमारा जो प्रोड्यूसर के हिसाब से हम काम करते थे
1: जी,
0: तो उसमें हमारा नाम नहीं आता था पहले, मगर ये दीवाना मुस्तानी में क्या किए थे कि सारा काम बॉम्बे में साउंड का हुआ था।
1: अच्छा,
0: शूटिंग उधर होती थी, एडिटिंग भी उधर होती थी, कुछ पैच शूटिंग इधर किए थे
1: जी।
0: उसमें मिस्टर परवेश मिर्जा बोल के एक डायलॉग राइटर थे उसके,
1: हाँ,
0: उन्होंने हमारे पास आए और बोले कि भाई इसका सारा काम करना है। तो लास्ट में ये हुआ है कि हमने भी काम किया है, एडिटर ने भी काम किया है।
1: हाँ,
0: तो उन्होंने बोले क्या करे, तुम्हारा नाम देना है, ये तो आपने पैसे हमने आपको दिए। तो मैंने उसको बोला कि भाई एक काम करो, साउंड एडिटर बोल के नाम दे दो।
1: अच्छा,
0: जो कि फॉरेन पिक्चर में आता है।
1: हाँ हाँ
0: जैसे आप शान पिक्चर देखोगे तो उसमें जो साउंड एडिटिंग का काम किया है,
1: हाँ,
0: डेविड नाम है, डेविड पॉल,
1: अच्छा,
0: स्पेशली नाम आता था उसका साउंड एडिटिंग। तो वो हम देखे थे तो हमने बोले यार हमारा भी नाम दे दो। और पर्दे पर हमारा नाम आया है तो नाम तो देखो, मेरा नाम आया है तो मेरे फैमिली खुश हो जाएंगे
1: जी, जी।
0: नाम से कुछ नहीं, मगर क्या है कि लोग भी जानते थे
1: हाँ,
0: कि भाई जैसा अभी कोई आया हमारे दोस्तों को कहते थे यार तेरी पिक्चर लगी है उधर, तेरा नाम देख लिया हमने। मुझे सबसे ज्यादा फेमस मैं हो गया मैंने प्यार किया से।
1: अच्छा,
0: तो उसमें मेरा चीफ असिस्टेंट एडिटर नाम दिए थे
1: जी जी
0: तो हमारा औरंगाबाद में पिक्चर लगी थी अजंता थिएटर में।
1: हाँ,
0: और हमारा जो कॉलेज थे मैं जहां पर पढ़ता था,
1: अच्छा,
0: उसके कुछ लोग उधर पढ़ते थे।
1: हाँ,
0: और लातूर में रमा में पिक्चर लगी थी। तो उधर क्या हुआ था कि फिल्म लाइन में हम दो ही आदमी थे, मेरा भाई था 62 में आया था, मैं 77 में, उसके बाद बहुत आ गए उधर मराठवाड़ा से।
1: हाँ,
0: तो जितने भी मेरे प्रोफेसर वगैरह सब थे कॉलेज के फ्रेंड थे
1: जी,
0: वो पिक्चर देख रहे थे।
1: हाँ,
0: उन्होंने मेरा नाम देखे, थिएटर वाला खुद गया भागते हुए मेरे मम्मी के पास में और बोला मम्मी को कि भाई आज मतलब मेरे जो प्रोफेसर थे जो दोस्त लोग थे उन्होंने बोला कि भाई हमको खुशी हो गई कि एक छोटे से कस्बे का लड़का मतलब ज्यादा एजुकेटेड पढ़ा नहीं है,
1: हाँ जी,
0: मतलब उधर का एजुकेशन अलग है बॉम्बे का अलग है, तो इतना बड़ा पिक्चर में काम किया। वो भी 100-100 फीट के उधर ये रहते थे स्क्रीन रहते थे, 200-300-400 फीट के बड़े बड़े बड़े बड़े थिएटर रहते थे, उन्होंने नाम पढ़ लिए भागते हुए गए।
1: हाँ,
0: फिर उसके बाद जो भी पिक्चर में काम करता था वो घर में जाके बोलते थे अरे अपने दिलीप का नाम है चलो पिक्चर, हमको फ्री में पिक्चर रहती थी
1: जी जी। तो ये आपके गांव के लोग, आपके घर के लोग, आपके साथ पढ़ने वाले लोग, इनके लिए आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे?
0: सर गाने तो अपना भंडार है, हिंदुस्तान में म्यूजिक का भंडार है, अभी एक एक चुने तो बहुत ये हो जाएगा
1: बिल्कुल,
0: मगर उसका एक गाना ही मैं फिर से सुनाना चाहूंगा मैंने प्यार किया का, जो कि बिरहा गीत है, कहे तो से सजना वो तोरी उमरिया, ऐसा गाना है।
1: हाँ जी,
0: वो उन्होंने शारदा सिन्हा ने गाया था, वो इसकी लोक गायिका है बिहार की
1: जी, जी जी
0: बहुत बढ़िया गाना था उसके पीछे।
1: आइए सुनते हैं।

0: जैसे जैसे दिलीप जी आपका करियर आगे बढ़ा और नई फिल्में भी आप करने लगे, आपने मराठी में फिल्में की हैं, रीजनल फिल्मों की एडिटिंग और हिंदी फिल्मों की एडिटिंग, इसमें कुछ फर्क महसूस करते हैं आप?
1: मैंने तो सर एक पिक्चर किया था, बकला नाम था उसका, छत्तीसगढ़ी।
0: अच्छा,
1: छत्तीसगढ़ी पिक्चर किया था। अच्छा, रीजनल पिक्चर में इसमें क्या रहता है, बहुत सारा फर्क रहता है। फर्क क्या रहता है?
0: हाँ,
1: कि ये हिंदी पिक्चर जो है उसका बिग कैनवस है
0: जी,
1: इंटरनेशनल लेवल पर है
0: जी जी।
1: मतलब आज जो हम इधर देखते हैं फॉरेन में भी हमारे लोग देखते हैं
0: जी,
1: मगर जो रीजनल पिक्चर रहते हैं ना पर्टिकुलर वो स्टेट का रहता है। जैसा भोजपुरी है अपना, ज्यादा से ज्यादा यूपी बिहार, जैसा बंगाली पिक्चर है बंगाल, और क्या बोलते हैं अपना छत्तीसगढ़ी। मगर रीजनल पिक्चर में टॉप के दो तीन टेरिटरी है जो कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, वो हिंदी के लेवल के पिक्चर बनाते हैं, उनका बजटिंग हिंदी के बराबर रहता है। मगर ये पार्ट, ये दो टेरिटरी छोड़कर, मतलब तमिल पिक्चर और तेलुगु पिक्चर छोड़कर,
0: हाँ जी,
1: बाकी सबका क्या है, लिमिट रहता है, क्योंकि उनका एग्जीबिशन ज्यादा नहीं रहता है ना।
0: हाँ जी,
1: जो कि हिंदी पिक्चर में क्या रहता है कि 10 टेरिटरी है, पूरा बिक जाता है, इंटरनेशनल लेवल मार्केट भी है उनका। मगर जो अपनी रीजनल पिक्चर रहती है वो लिमिटेड उसी स्टेट के लिए रहता है।
0: हाँ,
1: अभी भोजपुरी है, अभी भोजपुरी तो सब जगह पर जाता है, पंजाबी में जाता है, सब जगह पर जाता था, मगर ज्यादा था वो एक उनका स्टेट के उस पर रहता है, मतलब एक क्षत्रिय भाषा रहती है।
0: अच्छा,
1: और उनका पर्टिकुलर वो स्टेट में ही ज्यादा चलता है, तो उनका क्या रहता है कि एक लिमिटेशन रहता है कि भाई हमको ऐसा करना है, इतने में करना है, ऐसा करना है।
0: अच्छा,
1: तो उनका क्या रहता है कि फर्क ये रहता है कि उनको हमको फास्ट काम करके देना पड़ता है, फास्ट काम के, चलो भाई हमको 20 दिन में वो जैसा पिक्चर कर लेते तो वो डबिंग का डेट लेके आ जाते हैं, कभी कभी मिक्सिंग का डेट, रिलीज डेट फिक्स रहता है उनका, तो हमको चेस करना पड़ता है, तो उनका काम हमको बहुत जल्दी फास्ट करना पड़ता है।
0: अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कि बहुत से एडिटर, पहले एडिटर जो थे बाद में निर्देशक बन गए, बहुत से सिनेमाटोग्राफर बाद में निर्देशक भी बने हैं, आपका भविष्य में ऐसा कोई विचार है फिल्म निर्देशन?
1: अभी क्या है कि सर वो क्या रहता है कि अपनी लाइन जो है या सभी का ही है, जो विधाता ने लिखा है, जो आपका लक है
0: जी,
1: उतना ही आदमी, हम मेहनत तो सब कर लेते हैं।
0: हाँ जी,
1: मेहनत तो बहुत लोग कर लेते हैं। अभी बहुत लोगों को क्या हुआ कि उस टाइम में पर्टिकुलर प्रोडक्शन मिल गया, प्रोड्यूसर मिल गए
0: जी,
1: जैसा हमारे मिस्टर राजकुमार हिरानी है, उनको बिग प्रोडक्शन मिल गया, उनके कॉन्सेप्ट रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते तो निशिकांत मुखर्जी तो पूरा आर्ट में थे, इससे काम करते थे, उनके साथ में थे वो, तो उतना अपना चला उनका। ऋषिकेश मुखर्जी तो आठ फिल्म से तरफ जरा झुकाव था उनका
0: जी,
1: और बनाते थे अच्छे पिक्चर है, जैसे डेविड धवन है कमर्शियल में सक्सेस हो गए, एन चंद्रा तो एक दो पिक्चर के बाद ही टॉप में पहुंच गए, तो नसीब होता है। अभी क्या पड़ाव ऐसा हुआ है कि अभी एक तो उम्र हो गई है, तब भी हमने कोशिश किया है
0: जी,
1: कि जो हमारे राजस्थान में मेरी कुलदेवी है जो दरक परिवार,
0: अच्छा,
1: दरक परिवार नहीं, जहां महेश्वरी मारवाड़ी है, मतलब महाराष्ट्र से है, मराठी हमको आती है, घर में लैंग्वेज हम बोलते हैं, तो हमने हमारी कुलदेवी है एक मूसा माता
0: जी,
1: तो हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने बोले थे, हमारा दादा दादी कुलदेवी ढूंढो, तो हम राजस्थान बहुत बार गए मगर उसमें हमको किधर नहीं मिले वो।
0: अच्छा,
1: तो हम एक दिन हमारे जो दरक है कोई, उन्होंने बोले हमारे कि उधर मंदिर बन रहा था, हम उधर चले गए, तो उधर मंदिर बन रहा था 2018 में।
0: अच्छा,
1: मूसा माता का तो कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हम पिछले साल 2021 में मंदिर बन गया
0: जी जी,
1: तो मैं उधर गया था 2022 में अप्रैल में, मंदिर के दर्शन किया मैं, माता जी का सह परिवार गया था, तो उसमें मुझे ऐसी कल्पना आई

0: माता जी के लिए एक भक्ति गीत बनाते हैं।
1: अच्छा,
0: तो वहां से कल्पना आई, मगर वो अभी क्या था कि सब चीजें असेंबल करना पॉसिबिलिटी नहीं थी। हम म्यूजिक डायरेक्टर को अप्रोच किए कि भाई ऐसा ऐसा है, तो अभी क्या था कि माता जी मतलब अभी भी बना था, जैसा दूसरे की हिस्ट्री है वैसा कोई माता जी का हिस्ट्री नहीं था। तो हमने क्या किया, सारा थोड़ा बहुत माहिती लेकर मतलब जो भी है अपना सब उनका सब हमने इकट्ठा किया
1: जी,
0: उनके बारे में
1: जानकारी
0: ली
1: जी,
0: और वो उस पर हमने एक गीत बनाया।
1: अच्छा,
0: गीत बना के मैंने उसको फिल्म फॉर्मेट पर शूट किया, रेड एमएक्स पर शूट किया
1: जी,
0: और जो कि अभी मैं नवरात्रि में रिलीज किया है। और वो शॉर्ट फिल्म है।
1: अच्छा,
0: तो वो हमने किया है। और अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा ही सिलसिला चलता रहे। इसमें मैंने प्रोड्यूस खुद किया है, डायरेक्ट खुद किया है।
1: अच्छा,
0: उसमें बहुत लोगों का सहभाग है, डांस मास्टर का, कैमरामैन ने अच्छा काम किया। तो वो गीत हमने बना के रिलीज कर दिया जो चल रहा है, कि हम चाहते हैं कि भाई दूरदर्शन पर भी आ जाए। तो हम उसको कोशिश में लगे कि उसका जरा अच्छे लेवल में, अच्छे कैनवास में उसको ये करके ब्रॉडकास्ट करें, बनाए हैं और ये करते रहेंगे
1: जी।
0: अभी क्या है कि हालात ऐसा हो गया है फिल्म लाइन का।
1: हाँ जी।
0: तो आजकल मतलब जो कॉमन मैन है,
1: हाँ,
0: ये कॉमन डायरेक्टर है, पिक्चर नहीं बना सकता।
1: जी जी जी,
0: मतलब इतना कमर्शियलाइज हो गया है कि एक तो बजटिंग बहुत हो गया है। पहले क्या होता था कि मराठी पिक्चर में भी हम पिक्चर बना सकते थे, 30-40 लाख रुपए है तो पिक्चर बना सकते थे।
1: अच्छा,
0: अभी मराठी में भी करोड़ों रुपए लग रहे। क्यों? तो लोगों का सोच अलग हो गया
1: जी,
0: कैनवास अलग हो गया, लोग सोचते, थिंकिंग बड़ी हो गई।
1: हाँ,
0: उसके अंदर भी जो जैसा मैंने बोला ना, दे के पर आंचलिक उपन्यास था
1: जी,
0: एक पिक्चर आई थी सौराट, तो पिक्चर में 100 करोड़ का धंधा किया है वो पिक्चर। ये शोलापुर के पास में यरमाड़ा के करमाड़ा कोई गांव है,
1: हाँ,
0: उसमें शूट किया है। वो पिक्चर में एक कहानी इतनी सिमिट की है उसने,
1: हाँ,
0: कि एक ही जगह पर शूट किया है। अभी मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ,
1: जी,
0: गांव में तो जा नहीं सकता मैं, मगर वो पिक्चर देखने का मुझे लगा कि मैं गांव में आके बैठ के देख लिया। तो क्या रहता है कि अभी इम्पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गए।
1: अच्छा,
0: क्यों? तो ट्रेड पूरा डिफरेंट चेंज हो गया पूरा। पहले क्या होता था कि ABC पिक्चर बनती थी, ए में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र बहुत थे, बी में फिर उसके नीचे वाले थे, सी में मतलब छोटे मोटे थे, पिक्चरें बनती थी, पिक्चर बिक जाती थी, हर पिक्चर छोटे में पिक्चर बिक जाती थी। मगर अभी क्या हुआ, पिक्चर का मार्केटिंग खत्म हो गए। अभी कॉरपोरेट के हाथ में है सब, बड़ी बड़ी कंपनियां ने ये कर लिया है। तो ये दौरान तो मैं बना ही नहीं सकता ना सोच सकता। सबसे पहले डेविड धवन वगैरह भी क्या थे, इनका आर्टिस्ट अप्रोच बहुत था।
1: अच्छा जी,
0: जैसा संजय दत्त है, गोविंदा ने इनको सपोर्ट किया, गोविंदा ने बहुत हेल्प किया, प्रोड्यूसर ने पहला नीलानी ने किया
1: जी।
0: और वो टाइम का माहौल अच्छा था, थिएटर बॉम्बे के अंदर 200-300 थिएटर थे।
1: अच्छा,
0: पिक्चर चलती थी, अभी थिएटर खत्म हो गए पूरे।
1: हाँ हाँ,
0: तो अभी तो क्या इम्पॉसिबल लग रहा है, माहौल ऐसा है।
1: अब कार्यक्रम में हम आपकी तरफ से एक और गीत सुनना चाहेंगे। कौन सा गीत सुनवाएंगे आप श्रोताओं को?
0: मेरा एक गीत था, मतलब आदमी हमेशा आपके वाइफ को तो चाहता ही है खुद के, मतलब अर्धांगिनी है जो, मगर उसके पहले आदमी जो कॉलेज डे रहता है, उसमें मैं एक जगह पर बैठा था टेरेस के ऊपर, और हमारे उस टाइम में तो फॉरवर्ड नहीं था कॉलेज के टाइम में
1: जी,
0: उधर तो हम किसी को देखे तो 4-5 आदमी आते थे, बोले क्यों देखा उसको। तो मैं एक जगह पर खड़ा था और एक बहुत खूबसूरत लड़की सामने बैठी थी, और उसके बाल जो है ना बार बार वो आ रहे थे चेहरे पर।
1: अच्छा,
0: तो कॉलेज में मैं गाने भी गाता था, कॉलेज में मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो मैंने ऐसा ही गाना गाया, चेहरे पे गिरी जुल्फे कहे दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी माँ, बोलते मैं भागते हुए नीचे आ गया। मुझे लगा कि भाई उसके कोई आ जाएंगे और पकड़ के मुझे पीटेंगे।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो वो हुआ ही ऐसा, मैं बैठा हुआ था कि वो लड़की आ गई और साथ में दो लड़कियां थे और एक लड़का था। तो मैं देखा उसको, मैं बोला मेरे से गलती हो गया क्या कुछ, नहीं बोले वो गाना तुमने अधूरा गाया, पूरा गाना सुना।
1: क्या बात है। तो वही गीत सूरज फिल्म का गीत हम श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: दिलीप दरक जी, आज फिल्म एडिटिंग के बारे में, फिल्म के संपादन के बारे में आपसे बहुत विस्तार से बातचीत हुई और अपने अनुभव आपने हमसे साझा किए। हमारे श्रोताओं को बताएं, आपके यहां आने के लिए विविध भारती परिवार की ओर से, हमारे श्रोताओं की ओर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: आपका
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने हमको इतना नवाजा, मतलब ढूंढ के निकाला और बहुत मैं आज खुश नसीब हूं कि इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा स्वागत मेरा आज तक किसी ने नहीं किया है। जो हम बचपन से सुनते थे विविध भारती, जैसा रेडियो ऑन होता तो भागते हुए जाते थे, चलो ये गाना आने वाला है, उसमें पहले बोला जाता था कि अभी एक गीत सुनिए, एक गीत के बोलिए, इसको म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जय किशन है, लिरिक्स ये है, ये गाना है।
0: अच्छा,
1: तो हम सुनते थे पूरा। वो स्टूडियो में बैठो कि मैं कभी रेडियो पर सुना करता था नाम विविध भारती सा, आज मैं ये स्टूडियो में आया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मन पूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि आपका ये कारवा जो चल रहा है, हम पैदा होने से पहले विविध भारती है, अभी मरने के बाद भी रहेगा विविध भारती, हम तो आते जाते रहेंगे, तो बहुत बढ़िया, हमको आनंद हो गया और बहुत खुशी हो गई कि आपने हमारा इतना बहुत बढ़िया स्वागत किया। मैं तहे दिल से, मतलब मेरे अंतर आत्मा से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका आभार मानता हूँ।
2: अभी आप सुन रहे थे फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

उस रोज की बात है जब बड़ी जोर से धड़का था दिल और उतरा था आसमान पे संभल संभल कर चांद। हवा ने हंस के कहा, ये मसला कुछ और ही है, बदल देता है इश्क जिंदगी के सुबह शाम।

हाँ, कैसे अचानक खो गया खुद का वजूद, फिर भला किसको बताते। ये हकीकत है कि झूठ भूलते जाते हैं वो जो नजर के सामने है। दिख रही है तो बस वो दो निगाहें और उनके सपनों का सुरूर।

0: कितना।
1: तारों की छांव तले संग गुजरता है वक्त, रुखसती में उसके हाथों के छुअन लेकर लौटने की वो चाह। कोई रोके लाख कि ऐसे बढ़ेंगी मुश्किलें, ये सफर आसान नहीं, आगे नहीं है कोई राह। पर न माना मन, तसल्ली खुद को देता बार बार, चंद लम्हे ही सही, कल फिर मिलेंगे हम यहाँ।

कोई पैमाना नहीं, इसका नहीं कोई हिसाब। छलक जाता है कभी बातों में, कभी आंखों में, और कभी बरसों की दूरी में भी रहता है दिल इसके साथ। इनके बिना फीके है रंग, रीति है दुनिया। कहने को सिर्फ ढाई अक्षर हैं, मगर अनमोल हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।

वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार श्रोताओं, सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम तराने नए पुराने में। आज के इस सफर में आपके साथ है पूजा नरानिया। लीजिए सुनवाते हैं आपको इस कार्यक्रम का पहला गीत। हीरो नंबर वन फिल्म से उदित नारायण और पूर्णिमा की युगल आवाजों में समीर के बोल हैं।

कार्यक्रम तराने नए पुराने की ये पहली पेशकश आपने सुनी फिल्म हीरो नंबर वन से। लीजिए अब सुनिए तीसरी मंजिल फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीतकार है आर डी बर्मन।

0: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
1: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
0: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। ये गीत है फिल्म कृष्णा से, अलका याग्निक का स्वर है, आनंद राज आनंद के बोलों को धुन में सवारा है अनु मलिक ने।

फिल्म कृष्णा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक के स्वर में। मेरे हुजूर इस फिल्म से सुनिए, हसरत जयपुरी के शब्द हैं, संगीत शंकर जयकिशन का, ये गीत मन्ना डे।

मेरे हुजूर इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अगला गीत ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म से बाबुल सुप्रियो, सुदेश भोसले और साथियों के स्वर हैं, समीर के बोल हैं, संगीतकार हैं जतिन ललित।

0: समीर के बोलों को संगीत में ढाला था जतिन ललित ने। ये गीत अभी आप सुन रहे थे बाबुल सुप्रियो, सुदेश भोसले और साथियों के स्वर में। फिल्म का नाम था ढाई अक्षर प्रेम के और ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं विविध भारती से तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: कार्यक्रम तराने नए पुराने के शेष गीत आपको समाचारों के बाद सुनवाए जाएंगे। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 3 बजे तक 72.43% मतदान की खबर है। निर्वाचन आयोग ने अनियमितताओं की खबरें सामने आने के बाद इन सीटों पर पुनर्मतदान कराया है। पश्चिम बंगाल, केरलम, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतगणना 4 मई को होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा है कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता है।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज गुजरात के सूरत में संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं को अवसरों में बदलना और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देशभर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ काम करेगा। श्री

0: टून जोशी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज आईईडी निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 1 जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेठिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना आरंभ हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस महीने भीषण गर्मी की आशंका से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और लू चलने की आशंका है। श्री सिंह ने कहा कि मई के दूसरे और चौथे सप्ताह में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों के साथ साथ पूर्वी तट पर भी लू की स्थिति रहने का अनुमान है। हालांकि पहले और तीसरे सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ और बारिश तथा बादलों के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा मुंबई इंडियंस से। कल जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम तरानी नई पुरानी में स्वागत है।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के बोल थे। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत, फिल्म का नाम था देवी।

0: विश्वात्मा फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम की आवाज में।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
3: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981 बसेरा।
4: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
1: 1984 दुनिया।
3: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजा।
1: 1993 फिल्म साहिबा।
3: कैसे जियूंगा
1: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
4: नजरों से कह दो प्यार।
1: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
5: क्यों?
1: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
6: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है
1: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।

विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मन चाहे गीत कार्यक्रम, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,700

0: इस पते पर मनचाही गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091 मनचाही गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091 आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: पटरानी इस फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। शंकर जयकिशन संगीतकार हैं।

लता मंगेशकर का स्वर, फिल्म का नाम पटरानी। अगला गीत मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से। कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर हैं। हसर जयपुरी का लिखा गीत।

अनवर और आशा भोसले की आवाजों में, आनंद बख्शी के शब्दों को संगीत में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम दो दिशाएं।

0: दो दिशाएं फिल्म से अनवर और आशा भोसले के युगल स्वरों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे और ये गीत था कार्यक्रम तराने नए पुराने का आखिरी गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम तराने नए पुराने अब यहीं संपन्न होता है।
1: तराने

श्रोताओं, हमारी आज की शेष रहे और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा से आपको अवगत कराते हैं। लीजिए सुनिए झरोखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा संध्या रंजन संगीत सरिता। ये कार्यक्रम 6:45 पर आप सुन सकेंगे, जिसके अंतर्गत श्रृंखला आप सुन रहे हैं मेरी संगीत यात्रा, इसका भाग 15 प्रसारित किया जाएगा। कलाकार गीतकार गुलजार, संगीतकार आरजी बर्मन, गायिका आशा भोसले। विशेष जयमाला ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा। बजे हवा महल में सुनिएगा सुनो कहानी पत्नी का पत्र का भाग 1। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी है, वाचन ममता सिंह का। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:15 पर। 9:00 कार्यक्रम आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार, जो कि केंद्रित रहेगा फिल्मकार सत्यजीत रे पर। छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:00, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का है। ढलती जाए रात 10:30 पर और रात्रि 11:00 आप सुनेंगे चित्रपट संगीत और मैटिनी शो का पुनः प्रसारण। ये थी रूपरेखा हमारी आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रमों की। लीजिए अब आपको कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा बता देते हैं। सुबह 6:05 पर सुनिएगा वंदनवार भक्ति संगीत का कार्यक्रम 6:30 पर, और शाम को पुनः 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा। श्री रामचरितमानस का भाग 177 आप सुन पाएंगे 6:35 पर। सुबह और पुनः शाम को 6:45 पर ही संगीत सरिता में श्रृंखला सुनिएगा महिला रचनाकारों की बंदिशें, कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। इस श्रृंखला का भाग 1 प्रसारित होगा, गायन सहभाग अनुजा जोकरकर का है, तबला यति भागवत, हारमोनियम ज्ञानेश्वर सोनवने, निवेदन ममता सिंह का। भूले बिस्तरे गीत सुबह 7:00, 7:30 पर सुनिएगा हम है राही प्यार के कार्यक्रम। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2:00 आप सुनेंगे

कार्यक्रम त्रिवेणी। चित्रलोक इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 8:30 से आप सुन पाएंगे, 9:30 पर सुबह और पुनः रात को 9:30 पर सुनिएगा आज की फनकार कार्यक्रम, जो कि कल केंद्रित रहेगा अभिनेत्री नरगिस पर। सुबह 10:00 पिटारा में सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज, फिल्म एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत का भाग दूसरा। सुबह 11:00 विविधा में सुनिएगा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र और साथ ही गीत, प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। दोपहर 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम, दोपहर 1:00 एक नया कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 2:30 पर। 3:00

नाट्य तरंग कल दोपहर बाद 3:30 पर 4 बजे पिटारा में सुनिएगा उजाले उनकी यादों के निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का भाग दूसरा। छाया गीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम। संध्या रंजन 6:35 पर आप सुन सकेंगे। 7 बजे विशेष जयमाला के अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा में सुनिएगा महावीर चक्र नायक दिगेंद्र कुमार की शौर्य गाथा। इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज 7:45 पर। कल हवा महल में 8 बजे आप सुनेंगे नाटिका अटरिया पे चोर, लेखन आशा मिश्रा का, निर्देशक कमला सक्सेना। चित्रलोक 8:15 पर सुनिएगा। आपके लिए रात 9 बजे 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित रहेगा अभिनेत्री नरगिस पर। 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रात को पुनः विविधा कार्यक्रम विविधा का पुनः प्रसारण किया जाएगा। तो ये था झरोका के अंतर्गत आज के और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

संध्या रंजन में अभी ये भक्ति संगीत में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीतबद्ध किया गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुलक्षणा पंडित की आवाज में ये गीत।

0: मेरी संगीत यात्रा। श्रोताओं, इस श्रृंखला में हमने सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन से किए गए संवाद के माध्यम से फिल्म संगीत के अनेक उपयोगी एवं रोचक पहलुओं की जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। तो सुनिए इसी श्रृंखला की 15वीं और अंतिम कड़ी। श्री राहुल देव बर्मन के साथ हुए संवाद में भाग लिया है आपके चिरपरिचित फिल्म लेखक, गीतकार, निर्माता एवं निर्देशक श्री गुलजार ने एवं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले ने।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार। ये आज हम लोग मेरे ख्याल से आखिरी प्रोग्राम के लिए
1: आपको
2: हैं।
1: मेरे नमस्कार में सैडनेस नहीं दिखाई दी? कितना नमस्कार,
3: उदासी तो मुझे उदासी सुनाई दे रही थी।
1: जी हाँ, जब हमने दिल पड़ोसी ये रिकॉर्ड बनाने की सोची
2: जी,
1: सब लोगों ने कहा कि बर्मन साहब, गुलजार साहब और मैं ये रिकॉर्ड करें। हर एक ने कहा, फॉरेन से लोगों ने मुझे चिट्ठियां लिखी कि एक ऐसा रिकॉर्ड बनाइए। तो हम लोग बहुत सोच रहे थे कि क्या टॉपिक पे जाना चाहिए, किस टॉपिक पे जाना चाहिए। तो गुलजार भाई ने अपने मन से ही टॉपिक चुन लिया और उस टॉपिक पे उन्होंने पूरा रिकॉर्ड उसी पे चलता है। अलग अलग गाने आते हैं लेकिन मकसद एक होता है।
3: वैसे इस एल्बम का मैं पूरा क्रेडिट आपको देता हूँ।
1: नहीं,
3: ये इस वजह से कि बाकी सब कुछ होते हुए भी ये अगर आप इसकी कॉम्पोजिशंस के लिए, इसे बनाने के लिए
1: पीछे नहीं पड़ती।
3: जी हाँ, ये हजरत को ना पकड़ती यहाँ पर इस तरह, तो ये एल्बम का भी ना होती।
1: और इस एल्बम की खास बात है कि बर्मन साहब का हमेशा ऐसा रहा है कि आज से आने वाले 10 साल का म्यूजिक वो पहले बना देते हैं, आने वाली चीज वो पहले करते हैं। और
2: तारीफ इतना क्यों कर रहे हैं?
1: और गुलजार भाई का लिखना भी ऐसा है कि आम आदमी के फट से समझ में नहीं आता है कि वो क्या लिख गए, वो क्या कह गए हैं। अगर आप सोचे 2 मिनट तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही सुंदर उसको
2: गहरी बात
1: से वो कह जाते हैं। और कुछ अलग ही अपना तरीका है उनका लिखने का। और मेरा ख्याल है हमारी इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान में शायद इस किस्म के लिखने वाले दूसरे कोई नहीं है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है, आप ज्यादा तारीफ कर रही हैं मेरी।
1: नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मुंह देखे भी नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा से कहती हूँ और सब, शायद दुनिया के सब लोग

0: जानते हैं कि मैं बहुत साफ जो सच्चाई वो कह देती हूँ।
1: तो नहीं, जो खास बात इन कॉम्पोजिशंस में जिस तरह से आपने कहा आने वाले वक्त की, उसमें जो अलग बात है इसमें दिल पड़ोसी में, वो ये है कि बहुत से रिलेशनशिप्स हमारे हैं जिनके बारे में हम कहानियां लिखते हैं, गाने नहीं लिखते, नज़्में भी नहीं लिखते, पोएट्री में भी नहीं कहते। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का हिस्सा है, लेकिन हमने इस पर गाने कभी नहीं किए। जैसे आपने गाना इस प्रोग्राम में गाया है जाने दो मुझे, जाने दो, एक औरत जो अपने हस्बैंड से अलग हो रही है, जाना चाहती है और उसके दुख का फिर भी एहसास है कि कुछ देर तन्हाई रहेगी, उसके बाद तुम भूल जाओगे, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, पर मुझे जाने दो। वो उस उन चोटों का जिक्र करती है जो उसके चेहरे पर निशानियां लेके जा रही है, द मैन हैज बीन अ वाइफ बीटर, जिसका जिक्र कोई गानों में या नज्मों में करते नहीं हम लोग, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है ये, और उन पे गाना कह लेना और उस दर्द को बता देना। इसी में गाना है जिसमें औरत शादीशुदा है और मैं सजदे में थी तूने लब छू लिए, एक जगह आता है इसमें एक गाने में, और तुमको परवाह नहीं थी मैं अकेली न थी, कुछ इस तरह की लाइनें जिससे सजेस्ट करते हैं हम कि शी इज अ मैरिड वुमन एंड इन लव विद समबडी। तो ये इस तरह के हिस्से जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये सिचुएशंस हम फिल्मों में कह नहीं पाते, बाहर लिखते नहीं, दिल पड़ोसी है मैं, ये पहली बार हुआ था
2: रात क्रिसमस की थी।
0: इस गाने में
1: ना तेरे बस की थी ना मेरे बस की थी,
0: और बर्मन साहब ने इसमें जिस तरह लगता है कि वाकई क्रिसमस हो रहा है कहीं लंदन में पेरिस में, इसी तरह कुछ वो क्या गाड़ी छन छन छन छन आवाज और क्रिश्चियन लड़कियां गा रही हैं, और उसमें से ये गाना जैसे शुरू होता है, ये बहुत सुंदर गाना है। तो आज
1: अच्छा, ये मैं सिर्फ बदला नहीं चुका रहा हूँ, लेकिन ये कि आपकी रेंडरिंग और आपकी गायकी, आपने जिस तरह से गाया है उसे,
0: मेरा ख्याल आप लोग प्यार करते हैं इसलिए आपको मेरे गाना अच्छा लगता है।
1: सही बात यह है कि आज क्योंकि आखिरी प्रोग्राम है, इसलिए जाने से पहले कह देना चाहता हूँ सबके सामने कि आपकी रेंडरिंग उसमें एक और सोने पे सुहागा था।

0: मेरी संगीत यात्रा। सुप्रसिद्ध फिल्म संगीतकार श्री राहुल देव बर्मन से हुए संवाद पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की 15वीं और अंतिम कड़ी। इस संवाद में भाग ले रहे थे सुपरिचित फिल्म लेखक, गीतकार, निर्माता एवं निर्देशक श्री गुलजार और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका श्रीमती आशा भोसले। इस कड़ी के साथ ही संगीत सरिता की वर्तमान श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा का समापन होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

आप सुन रहे हैं विविध भारती भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम विशेष जयमाला के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

0: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला प्रस्तुत किया है संगीतकार नौशाद ने।
1: आपने जिस दिलेरी से अपने देश की रक्षा की है, दुनिया में उसका जवाब मुश्किल से ही मिलेगा। हम सब की दिली दुआएं आपके साथ हैं। आप ऐसे वीर जवानों का सहारा और देश के अंदर एक दूसरे से हमदर्दी और प्यार हमारी बेशकीमत आजादी को सदा अमर रखेंगे। जैसा कि सब जानते हैं, एक और बहुत बड़ी शक्ति है जो आप में जोश बरकरार रख सकती है और साथ ही साथ शांति का संदेशा भी पहुंचा सकती है, वो है संगीत की शक्ति। हाँ तो मेरे फौजी भाइयों, इसी संगीत के आधार पर आज का खास प्रोग्राम जयमाला आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं। हमारे संगीत में बहुत से रस माने गए हैं, लेकिन वो रस जो इंसान को माया मोह से हटाकर भगवान तक पहुंचा सकता है, वो है भक्ति रस। तो लीजिए सबसे पहले इसी रस में डूबा हुआ एक गाना सुनिए।

ये इस गाने की तर्ज मैंने फिल्म बैजू बावरा के लिए तैयार की थी। रचना शकील बदायूनी के कलम का नतीजा है। इस गाने की बंदिश राग मालकोस में है। मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि अपने मुल्क के संगीत का प्रचार किया जाए ताकि हर खास और आम राग और रागनियों की अहमियत को समझ सके। इस गाने के सिलसिले में मुझे वो वाकया अच्छी तरह याद है जबकि ये फिल्म सबसे पहले मरहूम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति भवन में दिखाई जा रही थी। फिल्म के निर्माता विजय भट्ट साहब भी वहां मौजूद थे। फिल्म चल रही थी और जैसे ही ये गाना मन तर्पत हरि दर्शन को आज शुरू हुआ और पर्दे पर कृष्ण भगवान की सुंदर मूर्ति नजर आई, उस वक्त राष्ट्रपति जी ने अपनी जगह से उठकर बड़ी श्रद्धा से आंखें बंद करके मुरली वाले शाम की छाया को नमस्कार किया, मानो स्वयं कृष्ण भगवान उस समय दर्शन दे रहे हों। तो लीजिए ये गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सुनिए, मन तर्पत हरि दर्शन को आज।

भक्ति रस की इस रचना के बाद एक गीत सुनिए जिसमें देशभक्ति की झलक है। इस गीत में भारत माता का पैगाम मुल्क वालों के नाम है। ये गाना बंबई में 1963 में कौमी तरानों के उस सम्मेलन में पेश किया गया था जिसके सदर थे हमारे लाडले प्रधानमंत्री मरहूम पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस कौमी तराने की तरस भी मैंने ही बनाई है और खुमार बंकिमी साहब ने इसे लिखा है। ये गाना भी मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है।

श्रृंगार रस के और तो बहुत से पहलू हैं, लेकिन खास तौर पर दो रंग अक्सर देखने में आते हैं, एक विरह यानी फुरकत और दूसरा मिलन यानी वसल। जहां मिलन में बेपनाह खुशी महसूस होती है, वहां विरह की चुभन और मीठे मीठे दर्द में एक खास लज्जत मिलती है। ये वो कैफियत है जबकि कोई भी अरमान पूरे नहीं होते और हर हसरत अधूरी रह जाती हो। इस भावना को फिल्म नौरंग में भरत व्यास की इस रचना में अच्छी तरह जाहिर किया गया है। इस दोगाने को गा रहे हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले। श्री रामचंद्र ने इस रचना को अपनी सुंदर धुन से सजाया है। लीजिए सुनिए, आधा है चंद्रमा रात आधी।

किसी को क्या हो दिलों की शिकस्तगी की खबर के टूटने में ये शीशे सदा नहीं रखते। दिल की नजाकत के बारे में मीर अनीस का ये शेर कितना मुकम्मल है। महबूब की बेवफाई या जमाने के जुल्म सितम से बेशुमार दिल पाश पाश हो गए होंगे। इसी मजमून का एक नगमा मैंने फिल्म शाहजहां के लिए तैयार किया था। मजरू सुल्तानपुरी के इस गीत को मरहूम सहगल ने अपनी सुरीली आवाज में गाया था। यह गाना उनको इस कदर पसंद था कि मरने से पहले उन्होंने अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को ये कहा और ये वसीयत की कि जब वो इस जहां से सफर करें, रुखसत हों, तो आखिर वक्त उनके शमशान भूमि के सफर तक साज यही धुन बजाते जाएं, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। और लोगों ने उनकी इस वसीयत को पूरा भी किया था। तो लीजिए, उस महान कलाकार की याद ताजा करने के लिए ये रिकॉर्ड सुनिए।

0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला।
1: ऐसी मजबूरियों में किसी के हमदर्दी के चंद अल्फाज से तसल्ली मिलती है, और हाँ, अगर कोई सुरीली गुनगुनाहट या सुरीली धुन सुनने को मिल जाए तो ढारस बंधने के साथ साथ गम भी गलत होता है, और जबकि कोई खास किस्म के लोकगीत की आवाज कानों में पड़ती है तो भावनाएं जाग उठती हैं और उसकी तरंग से कायनात का जर्रा जर्रा झूम उठता है। ऐसी ही एक धुन मैं आपको सुनवा रहा हूँ SD बर्मन की आवाज में, जिन्होंने इसकी तरस भी बनाई है। सुन मेरे बंधुरे, ये गाना फिल्म सुजाता से चुना गया है, रचना है मजरू सुल्तानपुरी की। लीजिए सुनिए।

शायद ऐसे ही धुनों से मुतासिर होकर एक प्रेमी अपनी महबूबा को यकीन दिलाता है कि उसकी एक निगाह करम के बदले वो उसे जीवन भर सुंदर गीत सुनाता रहेगा और वो मन की वीणा के तार भी छेड़ता रहेगा। शायद इसी तरह वो अपने दिल की आग दूसरों के दिलों में लगाकर रोमानी दुनिया में एक तहलका मचा सके। ये जज्बात आपको फिल्म अंदाज के उस गाने में मिलेंगे जिसे मुकेश ने गाया और मैंने ही उसकी तरस बनाई। इस नगमे को मजरू सुल्तानपुरी ने तरतीब दिया जिसका मुखड़ा है, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं।

लेकिन ये जरूरी नहीं कि नगमा वसल का जरिया बनेगा। एक बिरहा की मारी अपने पिया की याद में बेचैन है, उसकी तारीफ का बयान करके कुछ गुनगुना रही है, लेकिन दरस को तरस रही है। ऐसी जुदाई की घड़ियां उस वक्त की याद दिलाती हैं जबकि शाम कन्हैया बिंद्रावन में राधा और सब गोपियों को छोड़कर द्वारका जा बसे थे और हर शख्स उनकी मुरली सुनने के लिए बेकरार था। ऐसे ही मजमून की तरह मैंने फिल्म बैजू बावरा के लिए तैयार की थी, जिसे शकील बदायूनी ने लिखा और लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और उनकी सहेलियों ने गाया। अभी तक मुझे याद है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त सब लोगों पर रूहानियत का क्या असर हुआ था। चूंकि मैं भी अपनी तबीयत से रूहानियत और तसव्वुफ का कायल हूं, मैं भी उस माहौल से बगैर मुतासिर हुए नहीं रह सका था। थोड़ी देर के लिए मैं भी अपनी सुध-बुध खो बैठा था। वो गाना इस तरह शुरू होता है, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन छलिया बाजे ना मुरलिया।

0: विशेष जयमाला इस कार्यक्रम का शेष भाग इस अंतराल के बाद।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: कुमार साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
1: संगीतकार खयाम।
2: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला।
3: तो कुछ गलत फहमियां एक नारी को घेर लेती हैं। वो इस तरह से कि वो ये सोचती है कि कहीं उसका साजन किसी और के तीरे नजर का शिकार तो नहीं हो गया। फिर तो हर वक्त उसे सौतन का ख्याल उसके मन को व्याकुल करता रहता है। मजबूर होकर वो इंतहाई बेकरारी से उसकी वापसी का इंतजार करती है, लेकिन जब उसका पिया घर आ जाता है तो उससे रूठ जाती है। क्यों? इसलिए कि शायद वो सच नहीं बोल रहा है और उसके साथ छल फरेब से प्रीत का ढोंग रचा रहा है। बसंत बहार फिल्म के इस गाने में इस प्यार की नोक झोंक का नक्शा बड़ी खूबी से पेश किया गया है। रचना शैलेंद्र की है और संगीत शंकर जयकिशन का। जज्बात से भरपूर आवाज है लता मंगेशकर की।

ऐसी छेड़छाड़ से तो मोहब्बत संवरती है और उसका बंधन और भी मजबूत हो जाता है, लेकिन दिल की बात जबान पर लाना कितना मुश्किल है। सारी दास्तान एक खूबसूरत राज बनकर रह जाती है। ऐसी आजमाइश की घड़ी की नजाकतों को आप फिल्म भीगी रात के इस गीत को सुनकर महसूस कर सकेंगे, जिसे लता मंगेशकर ने रोशन के संगीत निर्देशन में गाया है। शब्दकार है मजरू सुल्तानपुरी,

सच्ची मोहब्बत में एक आशिक को सिर्फ अपने महबूब का ही तसव्वुर हर घड़ी रहता है। उसके जोर सितम के बावजूद भी उसके लिए लब पर दुआएं हर वक्त रहती हैं। मोहब्बत का ये राज फिल्म पूर्णिमा में कारफरमा है। गुलजार के इस नगमे को मुकेश ने कल्याण जी आनंद जी की बनाई हुई तरस पर गाया है। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक।

इस प्रोग्राम के अंत में अब एक गीत सुनिए जिसकी तर्ज मैंने अपनी आने वाली ताजा फिल्म पालकी के लिए तैयार की है, जिसे शकील बदायूनी ने लिखा और इस दोगाने को पेश करने वाले फनकार हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर।

0: तो मेरे फौजी भाइयों, आज का जयमाला प्रोग्राम खत्म करता हूं। एक बार फिर आप सब मेरा सलाम कबूल फरमाएं। जय हिंद।
1: फौजी साथियों की सेवा में सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम अभी आपने सुना, जिसे हमने प्राप्त किया विविध भारती के संग्रहालय से।

0: तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम अमिताभ बच्चन।
1: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
0: मीना कुमारी,
2: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
0: जीवन,
3: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
0: देव आनंद,
4: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
0: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला। आप है विविध भारती के संग।

जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की

0: जिज्ञासा। जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का स्वागत करता हूं। इस हफ्ते के ज्ञान विज्ञान की बातें करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे मई दिवस की। 1 मई 1890 को श्रमिकों पर केंद्रित पहला मई दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का इतिहास 1886 से मिलता है, जब अमेरिका में शिकागो में कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल की थी और उन्होंने मांग की थी कि उन्हें दिन में 8 घंटे काम करने की अनुमति दी जाए। आपको ये बता दें कि इससे पहले मजदूरों से असीमित घंटों तक काम करवाया जाता था। अमूमन 15-15 घंटे मजदूर खटते रहते थे और उन्हें छुट्टी तक नहीं दी जाती थी। इस हड़ताल के बाद कई देशों में काम के घंटे 8 घंटे तक सीमित कर दिए गए थे। हालांकि मजदूरों के कामकाज के जो हालात थे उन पर इसका फौरन कोई असर नहीं पड़ा था, पर कम से कम 8 घंटे का एक दिन, ये बात निर्धारित हो गई थी। इस दिन की शुरुआत अमेरिका के शिकागो में हुई थी, जहां 1886 में मजदूरों ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाते हुए आंदोलन किया। 15-15 घंटे काम करने वाले मजदूर चाहते थे कि वो 8 घंटे काम करें। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, फायरिंग की, बहुत सारे मजदूरों की जान चली गई, कई मजदूर घायल हो गए। इसके 3 साल बाद 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन की बैठक हुई और इसमें तय किया गया कि हर मजदूर से रोजाना 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। इस तरह से मजदूर अधिकारों की बात शुरू होती है और ये सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। 1 मई को हर साल मनाया जाता है मजदूर दिवस।
1: मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर।
0: जिज्ञासा कार्यक्रम में अगली बात हम कर रहे हैं दादा साहब फाल्के की। 30 अप्रैल को उनका जन्मदिन होता है। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम था धुंडीराज गोविंद फाल्के। पैदा हुए थे महाराष्ट्र के नासिक शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्र्यंबकेश्वर में। इनके पिता संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ाते थे। इसी वजह से दादा साहब फाल्के की पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई। 25 दिसंबर 1811 को दादा साहब फाल्के ने मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में एक विदेशी साइलेंट फिल्म देखी, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। दादा साहब फाल्के इस मूवी को देखते ही जैसे हिल गए। उन्हें लगा कि ईसा मसीह के स्थान पर भगवान कृष्ण, भगवान राम, समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी और तुकाराम जैसी महान विभूतियों की कहानियां भी कही जा सकती हैं। बस उन्हें एक तरह से जुनून आ गया कि वो भी फिल्म बनाएंगे। वैसे आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के ने सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से ट्रेनिंग ली थी और वो मंच के अनुभवी अभिनेता भी थे। शौकिया तौर पर वो जादूगर भी थे। उन्होंने कला भवन बड़ौदा से फोटोग्राफी की पढ़ाई भी की थी और फोटोकेमिकल प्रिंटिंग की प्रोसेस में कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे।

इसके बाद उन्होंने प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू किया और इस बिजनेस में उन्हें नाकामी हासिल हुई। तब तक वो 40 बरस के हो चुके थे, बहुत सारा घाटा लग चुका था, बहुत चिड़चिड़े और फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे। इसी समय में उन्होंने लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखी और ये तय किया कि उनकी जिंदगी का मकसद है फिल्म बनाना। उन्होंने 5 पाउंड में एक सस्ता कैमरा खरीदा और दिन में 20-20 घंटे तक एक्सपेरिमेंट किए। इस जुनून की वजह से उनकी एक आंख खराब भी हुई, पर जुनून कायम रहा। उनकी पत्नी सरस्वती बाई ने उनका हर मौके पर, हर चुनौती पर साथ दिया, अपने जेवर तक गिरवी रखे। फरवरी 1912 फिल्म प्रोडक्शन में एक क्रैश कोर्स करने के लिए दादा साहब फाल्के चले गए इंग्लैंड। एक सप्ताह तक सीसिल हेपवर्थ के साथ उन्होंने काम सीखा, कैमरा, परफोरेटर, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग मशीन वगैरह उन्होंने वहां से खरीदी और इन तमाम मशीनों की मदद से उन्होंने राजा हरिश्चंद्र बनाई। चूंकि उनकी कोई टीम नहीं थी, इसलिए चाहे अभिनय करना हो, दृश्य लिखने हो, फोटोग्राफी हो, फिल्म प्रोजेक्शन हो, सारे काम दादा साहब फाल्के को खुद करने पड़े। उन दिनों महिलाएं फिल्मों में काम करने के लिए राजी नहीं होती थीं, इसलिए तारामती की भूमिका सालुंके ने निभाई थी। 6 महीने में 3,700 फुट लंबी फिल्म तैयार हुई और इसे सबसे पहले दिसंबर 1913 में मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में प्रदर्शित किया गया। दादा साहब फाल्के जानते थे कि ये आम जनता के लिए बनी फिल्म है और इस तरह से हरिश्चंद्र तारामती जबरदस्त हिट रही। इसके बाद दादा साहब फाल्के ने भस्मासुर, मोहिनी और सावित्री बनाई। 1915 में अपनी इन तीन फिल्मों के साथ दादा साहब चले गए विदेश। लंदन में इन फिल्मों की बहुत प्रशंसा हुई। कोल्हापुर के राजा के आग्रह पर 1937 में दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली और आखिरी सवाक फिल्म बनाई गंगावतरण। दादा साहब फाल्के ने कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया। 16 फरवरी 1944 को 74 साल की उम्र में नासिक में उन्होंने आखिरी सांस ली। भारतीय सिनेमा का एक पितृपुरुष चला गया। भारत सरकार उनकी स्मृति में हर साल किसी विशिष्ट व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देती है। हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे। इसकी शुरुआत 1982 में 29 अप्रैल से हुई थी। इसका उद्देश्य था एक कला के रूप में डांस को बढ़ावा देना, लोगों को जागरूक करना और इस डांस के माध्यम से पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोना। ये दिन आधुनिक बैले के जनक जीन जॉर्जेस नोवेरे के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। आपको बता दें कि नोवेरे फ्रांस के एक पारंपरिक बैले डांसर थे और उन्होंने डांस पर एक बुक लिखी थी, लेटर्स ऑन द डांस। यूनेस्को हर साल इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की मदद से डांस डे मनाती है। डांस डे का जो मकसद है वो है ये स्थापित करना कि नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि अपने जज्बात को व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। चाहे आप खुश हो, आपके भीतर आक्रोश हो, उमंग हो, जश्न हो या उदासी, डांस अपने भीतर के जज्बात को उजागर कर सकता है। भारत में संगीत नाटक अकादमी ने कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। ये नृत्य हैं भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया। चलिए इनके बारे में एक एक करके आपको बताते हैं। भरतनाट्यम भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु में 2000 साल पहले हुई थी। ये नृत्य मुख्य रूप से मंदिरों में भगवान शिव की आराधना के लिए किया जाता था और धार्मिक अनुष्ठानों का एक हिस्सा था। इसकी हर एक मुद्रा कोई कहानी या कोई भावना व्यक्त करती है। कभी मंदिरों तक सीमित रहने वाला भरतनाट्यम अब दुनिया भर के थिएटरों और उत्सवों में प्रस्तुत किया जाता है। ये नृत्य भक्ति पर केंद्रित होता है और इसमें हिंदू महाकाव्यों की कहानियां सुनाने के लिए हाव भाव का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। कथक की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई है और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 1600 साल पहले कथक शुरू हुआ था। कथा शब्द से कथक बना है और कथा का मतलब होता है कहानी। कथक मुख्य रूप से मंदिरों में देवी देवताओं की कहानियां सुनाने के लिए किया जाता था। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, कलाकारों ने राजदरबारों में कथक का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। भक्तिपूर्ण विषयों को मनोरंजन के साथ कथक में प्रस्तुत किया जाता था। इसमें फुटवर्क यानी पैरों की जटिल थिरकन का बड़ा महत्व है। कथक के महान कलाकारों में शामिल हैं सितारा देवी और पंडित बिरजू महाराज वगैरह। कथकली केरल का नृत्य है। इसका जो आगाज है वो तकरीबन 17वीं सदी में हुआ था। ये नृत्य और नाटक का एक अनूठा संगम है जिसके माध्यम से रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई जाती हैं। पारंपरिक रूप से कथकली का

दर्शन मंदिरों में किया जाता था, जहां इसके द्वारा अच्छाई और बुराई के बीच होने वाले संघर्ष को दिखाया जाता था। इस नृत्य शैली का विकास अनुष्ठानिक रंगमंच और भक्तिपूर्ण प्रदर्शनों से हुआ है। आमतौर पर कथकली का प्रदर्शन मंदिरों के प्रांगणों या खुले मंचों पर किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। 17वीं सदी में ये शुरू हुआ था और इसने अपना शास्त्रीय रूप धारण किया। कुचिपुड़ी में लयबद्ध पैरों की थिरकन, मनमोहक चाल और भावपूर्ण मुद्राओं का सुंदर मेल देखने को मिलता है। इसे एक नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें नर्तक कहानियों के संवाद बोलते थे। कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति। ओडिसी भारत के सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति तकरीबन 2000 साल पहले उड़ीसा में हुई थी और इसका ताल्लुक भी मंदिर की पूजा अर्चना से है, विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ की आराधना से इसका गहरा संबंध है। उड़ीसी अपनी तरल प्रवाहमय मुद्राओं और मूर्ति कला जैसी भंगिमाओं के लिए जाना जाता है। ओडिसी के महान कलाकारों में शामिल हैं गुरु केलू चरण महापात्र और संजुक्ता पाणिग्रही। मणिपुरी नृत्य शैली का उद्भव भारत के उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर से होता है। 500 साल से भी ज्यादा पुराना यह नृत्य भगवान कृष्ण और उनकी प्रियतमा राधा को समर्पित है और एक भक्तिपूर्ण नृत्य के रूप में ये विकसित हुआ है। मणिपुर की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है मणिपुरी नृत्य। इसके प्रख्यात कलाकारों में शामिल हैं गुरु विपिन सिंह और दर्शना जवेरी वगैरह। और इसके अलावा मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है, जिसका अर्थ है मोहिनी का नृत्य। इसका इतिहास भी तकरीबन 400 साल पुराना है। ये एक स्त्री की गरिमा और उसके आकर्षण को दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से इसे मंदिरों में एक भक्तिपूर्ण भेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ये नृत्य प्रेम और भक्ति की कहानियों को चित्रित करता है, जो अक्सर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ी हुई होती है। मोहिनी अट्टम की जानी मानी कलाकार मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा और कनक रेले हैं। सत्रिया असम का एक नृत्य है। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने इसे शुरू किया था। इसे सत्र कहे जाने वाले मठों में भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाने के लिए एक भक्ति नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। सत्रिया में नृत्य नाटक और संगीत के तत्व शामिल है। प्रसिद्ध सत्रिया कलाकारों में शामिल है जतिन गोस्वामी और गुरु घनकांत बोरा। इस हफ्ते हम एक और महान फिल्मकार को याद कर रहे हैं, सत्यजीत रे, जिनका जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता थे सुकुमार रे और मां सुप्रभा रे। जब 2 साल के थे तब पिता का निधन हो गया और अपने दादा उपेंद्र किशोर रे के घर में उनकी परवरिश हुई। उपेंद्र किशोर एक बच्चों की पत्रिका निकालते थे संदेश, जिसके जरिए सत्यजीत रे में लिखने पढ़ने के संस्कार बने। 1943 में सत्यजीत रे एक ब्रिटिश विज्ञापन एजेंसी डीजे कीमर में जूनियर विजुलाइजर के रूप में काम करने लगे। उन्होंने कई पुस्तकों के कवर डिजाइन किए, जिसमें जीवनानंद दास की वनलता सेन, रूपसी बंगला, विभूति भूषण बंदोपाध्याय की चंदेर पहाड़, जिम कॉर्बेट की कुमाऊं के नरभक्षी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया शामिल हैं। चिदानंद दास गुप्ता और अन्य लोगों के साथ मिलकर 1947 में सत्यजीत रे ने कोलकाता फिल्म सोसाइटी की स्थापना की और कई विदेशी फिल्मों का प्रदर्शन किया। बांग्ला साहित्य की क्लासिक रचना पाथेर पांचाली से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर सत्यजीत रे ने इसे अपनी पहली फिल्म के लिए चुना। पाथेर पांचाली एक अर्ध आत्मकथात्मक उपन्यास है, जो बंगाल के गांव में रहने वाले एक छोटे से लड़के अपू के परिपक्व होने का वर्णन करता है। सत्यजीत रे की अगली फिल्म थी अपराजितो, जो 1956 में आई थी। ये फिल्म युवक अपू की महत्वाकांक्षाओं और उसे प्यार करने वाली मां के बीच शाश्वत संघर्ष को दिखाती है। इस फिल्म ने वेनिस फिल्म महोत्सव में गोल्डन लायन जीता था। इसके बाद 1958 में सत्यजीत रे ने 2 फिल्में बनाई, पराश पत्थर और जलसाघर। लेकिन वेनिस में यूं हुआ कि किसी ने उनसे पूछा कि क्या आप अपुत्रयी बना रहे हैं, इसलिए पथेर पांचाली और अपराजितों के बाद उन्होंने अपूर संसार के बारे में सोचा। 1959 में ये फिल्म आई। इस फिल्म में सौमित्र चटर्जी और शर्मिला टैगोर ने अभिनय किया था। इसके बाद सत्यजीत रे ने महापुरुष, कंचनजंगा, चारुलता, महानगर, 3 कन्या, अभिजान, शतरंज के खिलाड़ी जैसी फिल्में बनाई। सत्यजीत रे ने कई पुरस्कार जीते। 37 बार उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला, 1 गोल्डन लायन, 1 गोल्डन बेयर, 2 सिल्वर

बेयर मिले और इसके अलावा एकेडमी के मानद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो फिल्मों की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा 1978 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया था। भारत सरकार ने 1992 में सत्यजीत रे को भारत रत्न से सम्मानित किया था। सत्यजीत रे को हमारा विनम्र नमन। जिज्ञासा के इस अंक में न केवल हमने मई दिवस की बात की, डांस डे की बात की, बल्कि हमने दो महान फिल्मकारों को याद किया, दादा साहब फाल्के और सत्यजीत रे। जिज्ञासा का आज का अंक यहीं तक। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख स्वर और संपादन यूनुस खान का। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। जिज्ञासा।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। इस श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र। वाचन स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। श्री चरण कमलेशु, आज हमारे विवाह को 15 बरस हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी न लिखी। सदा तुम्हारे पास ही बनी रही, न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी नहीं मिली। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ, तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंघे के साथ शंख का होता है, वो तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तुम्हारे घर की मछली बहू हूँ मैं, पर आज 15 बरस बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है, इसलिए आज साहस करके ये चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मछली बहू की ही चिट्ठी मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़कर जब इस संभावना का और किसी को पता न था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई एक साथ ही सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए थे। भाई तो मारा गया, पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगीं, अरे मृणाल लड़की है ना, इसीलिए बच गई। लड़का होती तो क्या भला बच सकती थी। चोरी की कला में यमराज भी निपुण हैं, उनकी नजर कीमती चीज पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है, यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं ये चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोलते रहे। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई जिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन, मामा उस भोजन की हंसी उड़ाना आज भी नहीं भूलते। तुम्हारी माँ की एक ही जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मझली बहू के द्वारा पूरी करें, नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते। पीलिया, यकृत, उदरशूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती, वे स्वयं ही आकर घेर लेते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी, माँ दुर्गा का नाम जपने लगी।

शहर के देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे। बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मृत्यु नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे वही उसका मूल्य होता है। इसीलिए तो हजार रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह से दूर नहीं होता। सारे मोहल्ले का ये आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला और संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो इस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को दो परीक्षकों की दो जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़ कर रखने के लिए निगरानी कर रही थी। मुझे कहीं छिपने की जगह न मिली। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कपाती हुई शहनाई बज उठी, मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुंची। मेरे सारे ऐबों का व्यवरावार हिसाब लगाकर गृहिणियों को ये स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूँ। ये बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया, लेकिन सोचती हूँ मुझे रूप की जरूरत ही क्या थी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी ब्राह्मण ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने न केवल अपने आनंद से निर्मित किया है, इसलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन लग गए, लेकिन मुझ में बुद्धि भी है। ये बात तुम लोगों को पग पग पर याद दिलानी पड़ती। मेरी ये बुद्धि इतनी प्रकृत है कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वो आज भी टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि से माँ बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए ये तो एक बला ही है, बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है, वो यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खा कर उसका सिर फूटेगा ही। लेकिन तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत है, विधाता ने लापरवाही में मुझे उससे बहुत ज्यादा बुद्धि दे डाली है। अब मैं उसे लौटाऊं भी तो किसको। तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य को कड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है, इसीलिए मैंने उसको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सबसे छिपाकर कविता लिखा करती थी, वो भले ही कूड़ा करकट क्यों न हो, उस पर तुम्हारे अंतःपुर की दीवार न उठ सकी। वहीं मुझे मृत्यु मिलती थी, वहीं पर मैं रो पाती थी। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। मेरे भीतर तुम लोगों की मछली बहू के अतिरिक्त जो कुछ था उसे तुम लोगों ने कभी पसंद ही नहीं किया, क्योंकि उसे तुम लोग पहचान भी नहीं पाए। मैं कवि हूँ, ये बात 15 बरस में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज्यादा जगती रहती है वो है तुम लोगों की गौशाला। अंतःपुर को जाने वाले जीने के बगल के कोठे में तुम लोगों की गौवें रहती हैं। सामने के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह नहीं थी। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नींद थी। सवेरे नौकर तरह तरह के काम करते रहते, इसलिए भूखी गायें नांद के किनारों को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरच देती और मेरा मन इसे देखकर रोने लगता था। और मैं गांव गवई की बेटी जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर में आई, उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे दो गायें और तीन बछड़े चिर परिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं रही बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गौओं के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते रहे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वो बची रहती तो मेरे जीवन

में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वो सब मुझे ला देती, तब मैं मझली बहू से एकदम एकदम मां बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती है। पर मुझे मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, सिर्फ वेदना, मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे याद है अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था, और जच्चा घर देखकर नाराज होकर उसने डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। वहां न कोई लज्जा है, न सौंदर्य, न श्रृंगार। उजाला वहां टिमटिमाता रहता है, हवा चोर की भांति प्रवेश करती है, आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम ही नहीं लेता। फर्श और दीवार पर काली माँ अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी, उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है, अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है, वो शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रहती है, लेकिन ऊपर से उसके ताप को प्रकट नहीं होने देती। जब आत्मसम्मान घट जाता है, तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। इसीलिए मैं कहती हूं, अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी दुख को पाना ही होगा, तो फिर जहां तक संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। हाँ, आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम मुझे चाहे जैसे रखते रहे, मुझे दुख है, ये बात कभी मेरे ख्याल में ही नहीं आई। घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी, तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है कि मौत से डरना पड़े। जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज मुझे घसीटने लगते, तो मैं उसी तरह उखड़ आती जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खिंच आती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है भला। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है। मेरी बेटी संध्या तारा के तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें ये चिट्ठी लिखने की जरूरत न पड़ती, लेकिन लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ा कर ले जाती है, और पक्के दालान में पीपल का अंकुर फूट उठता है, और होते होते उसी से लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहां से उड़कर आ पड़ा, तभी से दरार शुरू हो गई।

पत्नी का पत्र, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी का ये था पहला भाग। इस कहानी का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले शनिवार को सुनो कहानी के अंतर्गत। इसमें वाचन स्वर था ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।

आप सुन रहे हैं भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत करती हूँ मैं आपकी रेडियो साथी पूजा नारायणिया। कुछ कुछ होता है इस फिल्म से सुनिए ये गीत। समीर के बोलों को संगीत में ढाला है जतिन ललित ने। अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजें हैं।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो

0: शाम 6:35 से 6:45 तक एक नया कार्यक्रम संध्या रंजन। आपको बता दें, रंग तरंग कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 11 से 12 तक होगा।
1: ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो।
0: हर शनिवार दिन में 11:30 पर विविध भारती लेकर आ रहा है अपना नया कार्यक्रम मैटिनी शो। रविवार दिन में 11 से 12 के बीच सुनिए विविधा। श्रोताओं के लिए एक और खुशखबरी, अब आप चिट्ठियां लिखकर कर सकते हैं अपने मन चाहे गीत की फरमाइश। जी हाँ, मन चाहे गीत कार्यक्रम की वापसी हो रही है। ये कार्यक्रम सुना जा सकता है हर शनिवार और रविवार दिन में 3 से 3:30 के बीच। और हाँ, विविध भारती पर लौट रहे हैं सेल्यूलॉइड के सितारे। ये कार्यक्रम अब होगा हर मंगलवार शाम 4:00।
2: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: 1 से विविध भारती के कार्यक्रमों में हो रहे हैं कुछ बदलाव।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। जब भी मैट फिल्म से सुनिए ये गीत, मीका सिंह की आवाज में इरशाद कामिल के शब्द हैं, धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: एक मई से विविध भारती के कार्यक्रमों में हो रहे हैं कुछ बदलाव। अब झरोखा यानी कार्यक्रम विवरण होगा हर रोज सुबह 6:30 पर और शाम 6:30 पर। भारत की गूंज कार्यक्रम की जगह अब हर रोज सुबह 8:30 पर होगा कार्यक्रम चित्रलोक। आज के फनकार कार्यक्रम अब अपने पुराने समय पर सुबह और शाम 9:30 पर सुना जा सकेगा और छाया गीत कार्यक्रम अब होगा हर रोज रात 10:00।
1: शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
0: दिन में 1 से 2 तक विविध भारती लेकर आ रहा है अपना नया कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब होगा हर रोज दिन में 2:30 से 3:00 तक।

जब वी मेड फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मीका सिंह की आवाज में। और इस गीत के साथ ही अब वक्त हो चला है अंतराल का। कहीं नहीं जाइएगा, हम बस अभी लौट आएंगे कार्यक्रम चित्रलोक लेकर।

कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। आप सभी का एक बार फिर से ही स्वागत करते हैं और सुनवाते हैं ये गीत। राजेश रोशन के संगीत से सजा, देव कोहली के शब्द हैं, उदित नारायण अलका याग्निक के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम कोई मिल गया।

0: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
1: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
0: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
2: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981 बसेरा।
3: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984 दुनिया।
4: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजा।
0: 1993 फिल्म साहिबा।
5: कैसे जियूंगा
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
6: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: आँखों में
8: काजल है।
9: शिमला मिर्च फिल्म से सुनिए मीट ब्रदर्स अनजान फिएट स्टेबिन बैंड के स्वरों में कुमार का लिखा गीत, मीट ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

हिमेश रेशमिया के संगीत से सजा समीर के बोल हैं, अदनान सामी और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत फिल्म का नाम एतराज़।

की आवाजों में, समीर के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत, और ये गीत बना है कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश। इसी के साथ कार्यक्रम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 90% वोट पड़े। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की दो सीटों के 15 बूथों पर आज पुनर्मतदान कराया गया। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर वोट डाले गए। इस दौरान लगभग 90% मतदान हुआ।
1: दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। चुनाव आयोग ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। इन मतदान केंद्रों पर विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के तहत पिछले महीने की 29 तारीख को वोट डाले गए थे। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती सोमवार को होगी। असम की सभी 126 सीटों, केरलम की 140 और पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान कराया गया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया गया। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था। मतगणना सोमवार सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों से शुरू होगी।
2: चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया पर रिटर्निंग अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य सहायकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। 10 लाख से अधिक डाक मतदाताओं ने अपने मत इस बार डाले हैं, जिनमें चुनावी ड्यूटी पर तैनात लोग और 85 वर्ष से ज्यादा आयु के लोग भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में ऐतिहासिक रूप से 85.10% मतदान हुआ है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। करूर विधानसभा क्षेत्र में न केवल अधिकतम 79 उम्मीदवार थे बल्कि अधिकतम 89% मतदान भी दर्ज किया गया। इसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 852,690 मतदाता हैं, जो इस बार अपने नेता का चुनाव करेंगे। कुल मिलाकर राज्य भर के 75,064 मतदान केंद्रों में 5,73,43,291 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है।

0: न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जॉय माल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विशेष पीठ ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश वाले 13 अप्रैल के परिपत्र को गलत नहीं कहा जा सकता।
1: निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्रीय कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं है। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि निर्वाचन आयोग का राज्य कर्मचारियों के बजाय केंद्रीय कर्मियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय वैध है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में कराया गया था। कोलकाता से संदीपन और मानस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने आज भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूरसंचार विकास केंद्र CDOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत के आपदा प्रबंधन ढांचे में एक क्रांतिकारी पहल बताया है।
2: आज CDOT जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज उस CDOT की संस्था के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण में सुरक्षा को सुनिश्चित करने की देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3: सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS सटीक जियो टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है जिससे सूचना को व्यक्तिगत सेल टावरों या उनके समूहों के स्तर पर प्रसारित किया जा सकता है। साथ ही इसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों तक भी विस्तार दिया जा सकता है। यह पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी और कुशलता से पहुंचाई जा सके। यह प्रणाली लगभग रियल टाइम में बहुभाषी जानकारी प्रदान करती है जिससे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव जैसी आपदाओं के दौरान लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए महत्वपूर्ण समय मिल पाता है। ये सूचना बिना किसी देरी के कुछ ही सेकंड में उपयोगकर्ताओं तक पहुंच जाते हैं। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर आज एक IED निष्क्रिय करने के दौरान विस्फोट होने से सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इंस्पेक्टर सुखराम वट्टी और कांस्टेबल कृष्णा कोमरा, संजय गढ़पाले तथा परमानंद कोमरा विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार थाना छोटे बेटिया क्षेत्र में विस्फोटकों को निष्क्रिय करने और छानबीन अभियान के लिए टीम रवाना की गई थी। घायल कांस्टेबल को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आज सूरत में संपन्न हो गया। समापन सत्र में केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
4: आपदा को हम अवसर में बदले, इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में हमको देखने की जरूरत है और इसलिए हमको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और जरूरी है कि हम

0: इस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से ज्यादा अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एरिया को हम तवज्जो दें और साथ में हम सेल्फ रिलायंस की ओर जाएं, इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है।
1: इस सम्मेलन में 3,53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के 2,792 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इन समझौतों से अगले 3 साल में 2,82,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की आशा है।
2: श्री संघवी ने दक्षिण गुजरात के तापी, डांग, वलसाड़ और भरूच जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक विशेष योजना साझा की, जिसके तहत महिलाओं की अधिकतम भागीदारी वाले प्रदूषण मुक्त उद्योगों को इस प्रदेश में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिषद में सूरत के कपड़ा उद्योग को गारमेंट सेक्टर के रूप में विस्तार देने और स्थानीय स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रख्यात गीतकार, लेखक और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी का साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। अपने प्रभावशाली लेखन और गहन सांस्कृतिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध श्री जोशी की समकालीन भारतीय मीडिया की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ काम करेगी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना शुरू हो गई है। इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्वगणना की 15 दिन की पूर्व सूचना अवधि कल खत्म हो गई थी। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण के अंतर्गत घरों की सूची बनाने का काम 22 मई से शुरू होगा। 7 मई से स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने लखनऊ में बताया कि राज्य में जनगणना अभियान के तहत घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी।
3: पूरे प्रदेश को एक ग्रिड में बांटा जाता है, ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं, या मकान सूचीकरण ब्लॉक, दोनों एक ही चीज है। पहले फेज में उनको मकान सूचीकरण ब्लॉक कहते हैं, दूसरे फेज में उसको गणना ब्लॉक कहते हैं। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं। इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं, 800 हम लोगों ने अपर लिमिट रखी है। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई है, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। ऐसे हमारे देश प्रदेश में 3,90,000 गणना ब्लॉक बने।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर टीम को कप्तानी और स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा, जबकि फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। चेन्नई में IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 16 ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला फ्रांस से होगा। लक्ष्य सेन चोट के कारण इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेंगे। लक्ष्य की अनुपस्थिति में विश्व के 30वें नंबर के खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत कोर्ट में उतरेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान के दौरान लगभग 80-90% वोट पड़े, जबकि पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और

0: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना सोमवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। सरकार ने भारत की आपातकालीन संचार प्रणालियों को सुदृढ़ करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर एक आईईडी विस्फोट में सुरक्षा बलों के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। लोकप्रिय गीतकार प्रसून जोशी प्रसार भारती के अध्यक्ष नियुक्त हुए और बीसीसीआई ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के लिए हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। दो रास्ते स्वयं से गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: मुकेश सुमन कल्याणपुर और शारदा के स्वरों में अगला गीत, वर्मा मलिक के शब्दों को धुन में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम पहचान।

बाजे थम छम मेरा निकले है दम, इसे भांगड़ा

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
3: विचारा
5: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
4: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
5: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
4: सुनिए

0: आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
1: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
0: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
3: दर्पण फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
1: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
0: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।

0: बसेरा,
1: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
0: 1984 दुनिया,
2: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजा।
0: 1993 फिल्म साहिबा,
3: जैसे जियूंगा मैं।
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार,
1: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अब कार्यक्रम आपके लिए की आखिरी प्रस्तुति। जीवन मृत्यु फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जीवन मृत्यु फिल्म से ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

दोस्तों नमस्कार, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है सत्यजीत रे की स्मृति को। सत्यजीत रे का शुमार भारत के महानतम फिल्मकारों में होता है। आज पश्चिमी दुनिया में अगर भारतीय सिनेमा अपनी कोई पहचान कायम कर पाया है या अपना परचम बुलंद कर पाया है तो इसका सीधा श्रेय जाता है सत्यजीत रे को, जिनकी पहली ही फिल्म पाथेर पांचाली सन 1956 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। सत्यजीत रे का सिनेमा सरोकारों का सिनेमा था। वहां पॉपुलर सिनेमा की कोई चमक दमक नहीं थी, वहां समस्याओं से जूझते भारतीय समाज की चिंता थी, वहां भूख और गरीबी के खिलाफ रचनात्मक हस्तक्षेप था, वहां सामाजिक अन्याय की बातें थीं, सदियों से शोषित होती चली आई नारी की पीड़ा को पर्दे पर साकार रूप देने की आकांक्षा थी सत्यजीत रे के सिनेमा में।

मुंबई सिनेमा की मार धाड़, उसका नाच गाना और उसका स्वप्निल संसार एक छोर पर है और दूसरे छोर पर है सत्यजीत रे का यथार्थवादी सिनेमा। आइए एक नजर डालें सत्यजीत रे की सिने यात्रा पर। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता के एक सांस्कृतिक परिवार में हुआ था। फिल्मों का शौक सत्यजीत रे को बचपन में ही लग गया था। उन्हें वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक का शौक भी लग गया और पेंटिंग का भी। अपनी मां के कहने पर सत्यजीत रे सन 1940 में शांति निकेतन आ गए। वे चित्रकला के छात्र बनकर यहां आए थे। सन 1942 में वे शांति निकेतन छोड़कर अपने घर चले आए। सन 1943 सत्यजीत रे ने डीजे कीमर नामक एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जूनियर विजुलाइजर का काम शुरू किया। 13 साल तक सत्यजीत रे इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बने रहे। इसी दौरान सत्यजीत रे ने शौकिया तौर पर पटकथाएं लिखना शुरू किया। रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी घोरे बाईरे पर आधारित पटकथा इन्हीं दिनों सत्यजीत रे ने लिखी थी। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने सन 1950 में उन्हें लंदन हेडक्वार्टर भेज दिया।

छह महीने के लंदन प्रवास में सत्यजीत रे ने विक्टोरिया देसीका की फिल्म बाइसाइकिल थीफ देखी और इसका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब सत्यजीत रे ने यह तय कर लिया था कि वे शौकिया कलाकारों को लेकर एक यथार्थवादी फिल्म जरूर बनाएंगे। उन्होंने विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कृति पाथेर पांचाली के अधिकार खरीद लिए। तलाश थी एक फाइनेंसर की। प्रोड्यूसरों को प्रभावित करने के लिए सत्यजीत रे अपने साथ एक नोटबुक लेकर जाते थे जिसमें पाथेर पांचाली के कुछ अहम दृश्यों के रेखा चित्र बनाए हुए थे। 2 साल तक सत्यजीत रे प्रोड्यूसरों की तलाश में भटकते रहे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार निराश होकर सत्यजीत रे ने अपनी जीवन बीमा पॉलिसी गिरवी रख दी। कुछ पैसा मित्रों और रिश्तेदारों से मिला और 27 अक्टूबर 1952 को रविवार यानी दफ्तर की छुट्टी के दिन पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया गया। जैसा कि हमने आपको बताया, 27 अक्टूबर 1952 को सत्यजीत रे ने फिल्म पाथेर पांचाली का पहला दृश्य फिल्माया था। ये वो दृश्य है जिसमें अपू दुर्गा के पीछे काश के खेत में से भागता है। काश एक बहुत ऊंची सी घास होती है। ये दोनों लोग खेतों में से भागते हुए जा रहे हैं पहली बार गांव के नजदीक से गुजरती छुप छुप रेलगाड़ी को देखने के लिए। सत्यजीत रे को ये लगा था कि ये दृश्य बहुत ही प्रभावी होगा और इसके जरिए उन्हें पाथेर पांचाली के प्रोड्यूसर मिल जाएंगे, यानी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो इस फिल्म में पैसा लगाने को तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत आसान नहीं था। अपू की भूमिका के लिए कलाकार को ढूंढना सत्यजीत रे के लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने समाचार पत्रों में विज्ञापन छापे, सैकड़ों लोग इसके लिए ऑडिशन देने के लिए आए, लेकिन आखिरकार सत्यजीत रे को दक्षिण कलकत्ता के एक फ्लैट के पास बिजोया खेलता हुआ दिख गया और बस उन्हें लगा कि यही है उनका अपू। इसी दौरान बिमल रॉय ने सलील चौधरी की कहानी पर बनाई अपनी यथार्थवादी फिल्म 2 बीघा जमीन, जिसे सन 1954 में कैंस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्री अवार्ड मिला।

0: जाए।
1: 2 बीघा जमीन और कुरुसावा की रोशोमन ने यथार्थवादी सिनेमा पर सत्यजीत रे का विश्वास प्रबल कर दिया। बहुत मुश्किलों से बनी फिल्म पाथेर पांचाली आखिरकार 26 अगस्त को कलकत्ता में प्रदर्शित हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कामयाब रही। सन 1955 में कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने स्पेशल जूरी अवार्ड जीता और सत्यजीत रे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मकार बन गए।
2: सोनार मानुष भासछे रसे, सोनार मानुष भासछे रसे।
1: पाथेर पांचाली की कामयाबी ने सत्यजीत रे को नई ऊर्जा से भर दिया। पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार, ये तीनों अपूत्रयी के नाम से विख्यात हैं। सन 1981 तक हर साल सत्यजीत रे अपनी एक फिल्म जरूर लेकर आए। सत्यजीत रे की फिल्म यात्रा सिने इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। सन 1958 में आई परश पाथर, इसी साल आई जलसाघर, 1960 देवी, सन 1961 तीन कन्या, सन 1962 कंचनजंगा, सन 1963 महानगर, 1964 में आई चारुलता, 1968 में आई गोपीगाइन बाघबाइन, सन 1977 में आई उनकी हिंदी फीचर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी। प्रेमचंद की कहानी पर उन्होंने अपनी एक टेलीफिल्म भी बनाई सदगति, सन 1984 घरे बाईरे, सन 1989 गणशत्रु। 1984 के बाद कुछ साल सत्यजीत रे अपनी बीमारी की वजह से सिनेमा से दूर रहे। सन 1989 में उन्होंने इप्सन की कृति एनिमी ऑफ द पीपल पर अपनी फिल्म बनाई गणशत्रु, इसके अगले वर्ष शाखा प्रशाखा और सन 1991 में आई सत्यजीत रे की अंतिम फिल्म आगंतुक। सत्यजीत रे ने अपनी अधिकांश फिल्में साहित्यिक कृतियों पर बनाई थीं। सन 1992 में सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड मिला था।

0: इसी साल उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म का लेखन जानी मानी लेखिका शमा जैदी ने चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी के साथ किया था। मैंने शमा जैदी और जावेद सिद्दीकी दोनों से बातें की। शमा जैदी ने हमें बताया,
1: बंसी चंद्रगुप्त उनके आर्ट डायरेक्टर थे
0: जी।
1: तो जावेद और मेरे वो बहुत दोस्त थे, वो तो उनके यहाँ हम जाके
0: जावेद सिद्दीकी जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में आपके
1: तो
0: साथ
1: मैं उनके साथ जाती थी। तो उन्होंने कहा कि तुम चलो, सत्यजीत रे आए हुए फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बैकग्राउंड मटेरियल मेरे लिए जमा करो। तो काफी मैंने इधर उधर से उनको मटेरियल भी दिया उसके लिए
0: जी।
1: तो उन्होंने कहा कि तुम डायलॉग भी लिख लो। तो मैंने कहा ऐसी फंसी उर्दू शायद मैं नहीं लिख पाऊंगी, मगर मेरे एक दोस्त हैं, मैं बात करती हूँ उनसे। तो मैंने जावेद से कहा, जावेद ने कहा अरे मैंने कभी फिल्म के लिए नहीं लिखा है।
0: उन दिनों वो जर्नलिस्ट थे।
1: हाँ जर्नलिस्ट थे। मैंने कहा नहीं नहीं तुम लिखोगे।
2: अब ये शतरंज भी कंपनी की अमलदारी में आ गई क्या? खूब। वैसे मैंने ला मार्टिनेर के कॉलिन साहब से सीखी है, मैं उन्हें उर्दू फारसी पढ़ाने जाता हूँ ना।
3: अच्छा अच्छा मुंशी साहब, ये दोनों वजहों में फर्क क्या है?
2: नवाज साहब को ज्यादा फर्क नहीं है। यह आपका वजीर जो है वो अंग्रेजी खेल में क्वीन यानी मलिका कहलाता है, और दोनों आमने सामने रहती हैं, और प्यादा पहली चाल में दो घर चल सकता है।
3: दो घर?
2: जी हाँ दो घर। और मुखालिफ सिरे पर पहुंच जाए तो मलिका बन जाता है।
3: कमाल करते हैं ये अंग्रेज भी। मगर इन तब्दीलियों से फायदा?
2: बाजी झटपट खत्म हो जाती है।
3: क्यों? उन्हें हमारा खेल सुस्त लगता है क्या?
2: जी हाँ, उन्हें हमारी सवारियां भी सुस्त लगती हैं, इसीलिए तो रेलगाड़ियां आने वाली है।
3: और तार?
2: जी हाँ। तार घर तो कब के आ गए, लेकिन मुझे एक आंख भी नहीं भाते।
3: क्यों?
2: बुरी खबरें जो फौरन पहुंच जाती हैं।
3: बुरी खबरें?
2: आपने कुछ सुना नहीं?
3: हम सुनते उनते कुछ नहीं मुंशी साहब, खेलते हैं।
2: मीर साहब, हंसने से बला नहीं टलेगी। सुना है कंपनी बहादुर अवध पे कब्जा करने वाली है। यही खबर देने को तो हाजिर हुआ था मैं।
4: मुंशी साहब, आप अंग्रेजी वजह की शतरंज खेलते हैं फिर भी अंग्रेजों की चाल नहीं समझ सके। अरे हाय, ये नेपाल में लड़ाई, पंजाब में लड़ाई, अफगानिस्तान में लड़ाई, इन लड़ाइयों के लिए दरकार है पैसा, और कंपनी ठहरी कंगाल। पैसा लाए कहां से?

0: ये हैं चर्चित लेखक जावेद सिद्दीकी, जो सत्यजीत रे से जुड़ी निजी यादें हमारे साथ बांट रहे हैं।
1: भाई, शतरंज के खिलाड़ी की याद मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट याद है। उसकी वजह यह है कि शतरंज के खिलाड़ी वो फिल्म है जहां से मेरे फिल्मी सफर का आगाज होता है।
0: बिल्कुल,
1: उससे पहले मैंने कोई फिल्म लिखी नहीं थी, मेरा कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मैंने जर्नलिज्म छोड़ दिया था। और उस जमाने में मेरी दोस्त शमा जैदी ने मुझसे कहा कि सत्यजीत रे से मिलना चाहते हैं, और पहले तो मैं समझा कि ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये कि फिर मैं सत्यजीत रे से मिलने के लिए गया, जो बॉम्बे में एक होटल में ठहरे हुए थे। बड़ा मैं हैज बैज में था कि मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा है क्या है, लेकिन मैंने जब फोन किया तो एक बड़ी गूंजती हुई आवाज आई, क्योंकि सत्यजीत रे की आवाज जिसे इंग्लिश में बैरिटोन कहते हैं,
0: बिल्कुल
1: वो वैसी एक आवाज थी, बड़ी इम्प्रेसिव
0: जी।
1: और उन्होंने कहा कि कम आप, मैं चला गया और उन्होंने वो खुद दरवाजा खोला, क्योंकि वो कमरे में अकेले थे
0: जी।
1: पहली मरतबा मैंने इतना लंबा बंगाली देखा बाल वो कोई 6 फीट से मेरा ख्याल है 1-2 इंच ऊपर ही थे
0: जी हाँ।
1: और एक बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, खादी का कुर्ता पजामा सफेद पहने हुए, और मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया, वो बैठे रहे, मैं उनके सामने बैठ गया। और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो कोई जब सोचते थे तो कोई चीज चबाया करते थे।
0: अच्छा,
1: कभी वो रुमाल का कोना चबाया करते थे, कभी अपने चश्मे का डंडा चबाया करते थे, तो उनके बेचारे सारे चश्मे जितने भी थे वो सब बहुत जख्मी हालत में, वो अपने चश्मे की डंडी चबाते रहे और वो मुझे देखते रहे कुछ देर तक, और फिर कहने लगे कि अच्छा, उनको एक बात मैं बता दूं यूनुस साहब, कि उन्हें इंग्लिश और बंगला के सिवा कोई जबान नहीं आती थी,
0: और ये फिल्म उनकी पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी,
1: पहली और आखिरी हिंदी फिल्म। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई एम टोल्ड दैट यू आर ए वेरी गुड शॉर्ट स्टोरी राइटर। मैंने कहा साहब, आई राइट in Urdu and nobody can be a good judge of his own work. If you like, I can get some of my work translated for you and you can have a look. So wo kehne lage ki no young man, I can have a look at you
0: ji
1: and here is my script and you are writing the dialogue.
0: Oh,
1: to ye kul 1.5 minute ki mulaqat thi sir, aur matlab wo aisi ajeeb o ghareeb mulaqat thi ki use bhulne ka sawal hi nahi paida hota.
0: Bilkul.
1: To fir main bokhla ke fir main bhaga hua wahan se apne dost Shamal Zaidi ke gaya aur maine unse पूछा भैया ये बताओ डायलॉग कैसे लिखे जाते। तो वहां से सत्यजीत रे, अच्छा जब हमने डायलॉग लिख दिए तो उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था कि हमने जोश में लिख तो डाले, लेकिन जो लोग बाकी लोग इन्वॉल्व थे, खासतौर से हमारे दोस्त बाद में बहुत ज्यादा बन गए सुरेश जिंदल जो प्रोड्यूसर थे
0: जी,
1: वो बेचारे बहुत घबराए हुए थे, पकड़ लिया पता नहीं कहां से, और उसको इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म जिसकी पूरी दुनिया वेट कर रही है उसके डायलॉग इन्होंने लिखवा लिए। हालांकि उस रेस में दूसरे लोग भी थे, वो जिसे फारसी में कहते हैं ना कुरए फाल बनामे मने दीवाना जदन, कि वो कुरए फाल जो था वो इस दीवाने के नाम। तो बाहर हमने वो लिख दिए, और सुरेश जिंदल साहब ने जो बम्बई में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, खासतौर से उर्दू जानने वाले, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और ये वो पता नहीं कौन कौन, उनको बुला के बिठाया, और कोई 20 आदमियों की एक महफिल थी जिसमें मैंने वो पढ़ के डायलॉग उनको सुना दी फ्रॉम पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक
0: जी।
1: अब सब चुप थे, वो मोमेंट मेरे लिए बड़ा अजीब गरीब था कि सब चुप बैठे हुए, भाई पता नहीं मैंने पहली बार लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। सडनली उनकी बूमिंग वॉइस मुझे सत्यजीत रे की सुनाई दी, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है जो मैं कभी नहीं भूलता
0: जी,
1: कि आई डोंट नो व्हाट ही हैज रिटन बट इट साउंड्स वेरी गुड।
0: वाह।
1: उसके बाद की यादें भी बड़ी प्यारी हैं कि जब फिर हम, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने लोग उनके करीब थे वो उन्हें सत्यजीत रे या कुछ ऐसा नहीं कहते थे, या मिस्टर रे नहीं कहते थे, हम लोग उन्हें मानिक दा कहा करते थे।
0: बिल्कुल।
1: जो मानिक उनके घर का नाम था, और बोधी जो उनकी बीवी हैं वो असल में उन्हें मानिक कहा करती थी, तो सभी मानिक दा ही कहते थे।

0: कुछ दिनों के बाद फिर मानिकदा का फोन आया, कहने लगे भाई वो तुमने डायलॉग तो लिख दिए और वो बहुत अच्छे भी हैं। मैंने कई लोगों से उनको पढ़वा के तर्जमा करा के देखा और बहुत बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका शीन काफ कौन बताएगा। विल यू बी एबल टू बी द डायलॉग डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। तो वो गरीबी का जमाना था, मैंने अरे भाई अंधा क्या चाहे दो आंखें, तो मैं भाग के फौरन कलकत्ता पहुंच गया। अच्छा फिर जब हम वहां पहुंचे तो वहां एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी। वहां सूरत हाल ये थी कि वो उनके जो बंगाली असिस्टेंट थे वो कलकत्ते के इंद्रपुरी स्टूडियो में एक लखनऊ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जाहिर है कि वो इसलिए नामुमकिन था तो वो बेचारे किसी लखनऊ से पहले तो खुद वाकिफ नहीं थे, और दूसरी चीज ये कि लखनऊ हो या यूपी को आप अगर इन जनरल कह लें तो वो एक कल्चर है, वो एक मिजाज है, और कल्चर और मिजाज को आप जब तक आप उसे जिए नहीं, आप उसे बरते नहीं, आप उसे महसूस नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे बहुत ही अजीब लगा कि ये तो क्या हो रहा है भाई, ये तो सब सारी की सारी चीजें गलत हैं। फिर हमने उसमें दखल अंदाजी की कि साहब ये तलवारें ऐसी नहीं होती थी और ये कपड़े ऐसे नहीं होते थे और ये चलते ऐसे नहीं थे और ये ऐसे होता था वो ऐसे होता था। फिर हम ढूंढते फिरे कलकत्ते में एक एक चीज पुराने जमाने की, क्योंकि 1857 का माहौल था
1: जी।
0: तो मानिकदा बहुत इम्प्रेस हुए हमारी मेहनत से। और तो आप अगर देखें तो उसमें फिल्म में मेरा टाइटल दो मर्तबा आता है, एक मर्तबा एज एन असिस्टेंट स्पेशल असिस्टेंट और दूसरा डायलॉग राइटर।
1: ये बताएं कि जब शतरंज की खिलाड़ी बन रही थी, अब आप उसमें दो तरह से शामिल हो चुके थे, बतौर डायरेक्टर आप उनको कहां किस तरह से पाते हैं?
0: मैं जिस सत्यजीत रे को जानता हूं, मेरा ख्याल ये है कि वो एक बेहद जहीन, बेहद समझदार और फिल्म को महसूस करके बनाने वाला डायरेक्टर था, और ये बहुत ही अहम बात मेरे लिए थी। और उसकी बहुत सारी मिसालें थी। एक तो ये कि वो, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि उसके फोटोग्राफर जो थे, सिनेमाटोग्राफर, वो शोमेंदु रॉय थे, लेकिन ये कि कैमरा ऑपरेट मानिकदा खुद करते थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ, वो हमेशा खुद करते थे, ज्यादातर काम वो खुद ही करते थे, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक वो खुद स्कोर करते, कंपोज करते थे, एडिटिंग पे वो खुद बैठते थे, और कैमरा ऑपरेट भी खुद करते थे। अक्सर हम लोग में से कोई अगर उनको कोई राय दे देता था तो वो उसको बड़े गौर से सुनते थे और उसको करते भी थे। उनमें वो जो एक गुरूर होता है कि साहब मैं सत्यजीत रे हूँ, तो वो मुझे नहीं दिखाई दिया। और कुछ ऐसी बातें भी थी बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग जिन्हें सीखने का हमको मौका मिला। मिसाल के तौर पर ये कि जब मीर का घर बन रहा था सईद जाफरी का, और बंसी चंद्रगुप्त का आर्ट डायरेक्शन था, तो हम जब वहाँ पहुंचे सवेरे सवेरे देखने के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए बंसीदा, और बंगला में बातें कर रहे थे लेकिन ये बंगला समझ में आने लगी थी, वैसे भी आसान जबान है वो। तो उन्होंने कहा कि देखिए वो मीर के जो हालात हैं वो काफी खराब हैं, और मैं नहीं समझता कि ये जो रंग रोगन है इस हवेली का ये सही है, तो इसको थोड़ी एजिंग की जरूरत है। तो बंसीदा ने कहा कि हाँ मैं एजिंग कर दूंगा। और वो जाने लगे मानिकदा, और जाते जाते उनको वो एक बाल्टी दिखाई थी जिसके अंदर पेंट करने वालों ने इस खौफ से कि ब्रश सूख न जाए वो भिगो दिए थे पानी में, और वो गंदा सा पानी वहाँ पड़ा हुआ था। एंड सडनली ही स्टॉप्ड, और उन्होंने वो ब्रश उठाया और उसको उन्होंने दीवार के ऊपर पेंट करना शुरू कर दिया। और जब वो बहुत ही गंदी मैली सी एक तह चढ़ गई, तो उन्होंने कहा मुझे ये चाहिए और धब्बे चाहिए मुझे, ताकि ये एहसास हो सके कि इस आदमी की माली हालत जो है वो कैसी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैं कभी नहीं भूलता, डायरेक्शन की जो जहानत होती है वो मैं उसके लिए मैं कोट करूंगा कि एक सेट था, तो उसमें वो मिर्जा साहब जो है वो शतरंज खेलने के लिए आते हैं सवेरे सवेरे। वो आए और वो बाहर एक, उस जमाने में ब्रूट हुआ करते थे वो बड़ी बड़ी, मतलब 10K का जो की लाइट होती थी, तो वो एक

0: लकड़ी का घोड़ा बना के और उसके ऊपर रख दी गई थी
1: जी,
0: बाहर की रेज जो है वो अंदर आ सके। तो उन्होंने लाइटिंग जब देखी तो उन्होंने उनसे शिवेंद्र राय से कहा कि इसको एक 2 फुट ऊपर कर दो। तो जी 2 फीट ऊपर करने वाली बात थी, मुझे तो कुछ इतनी समझ में नहीं आई। तो शिवेंद्र राय ने कहा ठीक है दादा मैं कर देता हूँ। तो मैं उनके पीछे पड़ गया, मैंने कहा कि मानिकदा ये बताइए आप, वो उससे क्या फर्क पड़ता है लाइट, आपने उसे 2 फुट ऊपर क्यों कराया। तो वो बहुत देर तक टालते रहे, फिर लंच में मैंने फिर उनको घेर लिया। हम सब लोग साथ में ही लंच करते थे और उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि वो एक मरतबा जब सेट पे आ जाते थे तो पैकअप बोलने के बाद ही सेट से निकलते थे, लंच में भी वो बाहर नहीं जाते, वहीं सेट पर खाना खाते। तो मैंने कहा कि ये आपने क्यों किया, थोड़ा सा चिढ़ गए, कहने लगे तुमने स्क्रिप्ट लिखा है ना। मैंने कहा हाँ। तुमने क्या टाइम लिखा है, क्या वक्त है। सुबह का वक्त है, 9:30-10 बजे का वक्त होगा। तो कहने लगे और ये मौसम कौन सा है, महीना कौन सा है। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू अस ये दिसंबर है। तो कहने लगे कि दिसंबर में लखनऊ में 10 बजे सूरज निकलता है, तो सूरज की जो किरणें हैं वो ऊपर से आएंगी, बीच में से नहीं आएंगी।
1: वाह,
0: समझे आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सूरज अभी निकला है तो उसकी जो एंगल जो होना चाहिए किरणों का वो हायर साइड पे होगा न के नीचे। तो ये जो बात थी वो तरीके की, वो मुझे बहुत ही बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला। जब भी आते थे यहाँ बॉम्बे में तो 1-2 मुलाकातें उनसे जरूर होती थी, हम उनके घर जाया करते थे, चाय के बड़े शौकीन थे वो।
1: अच्छा,
0: मुझे भी चाय का बड़ा शौक, तो मैं उस लालच में बहुत जाता था उनके घर, क्योंकि उनके कोई एक बहुत चाहने वाले थे जिनका दार्जिलिंग में 30 स्टेट था। तो वो हाथ से तोड़ी हुई चाय की पत्तियां उनको भेजा करते थे, वो ब्लेंडेड या ये नाम वाली चाय नहीं होती थी, और वो चाय का फ्लेवर ही अजीब होता था और उसको वो बड़े प्यार से बना के वो उसके ऊपर लेक्चर भी देते जाते थे और समझाते भी जाते थे और पीते भी जाते थे। और गुड ओल्ड डेज के ऐसा लगता है कि यादें कल की हैं।
1: सत्यजीत रे ने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई। सन 1971 में उनकी बनाई डॉक्यूमेंट्री थी सिक्किम। इसके बाद सन 1987 में उन्होंने अपने पिता पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई सुकुमार रे। सन 1976 में आई डॉक्यूमेंट्री बाला और सन 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर पर एक डॉक्यूमेंट्री आई। सन 1972 में उन्होंने द इनर आई नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस तरह सत्यजीत रे न सिर्फ फीचर फिल्में बनाते थे बल्कि डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने में भी उनकी अच्छी खासी रुचि थी। सत्यजीत रे केवल सिनेकार ही नहीं थे, वे चित्रकार भी थे, संगीतकार भी थे और लेखक भी। बच्चों के लिए उन्होंने अपार लेखन किया। 23 अप्रैल 1992 को सत्यजीत रे इस असार संसार को छोड़कर चले गए। महान फिल्मकार कुरुसावा ने सत्यजीत रे के लिए कहा था, सत्यजीत रे का अवलोकन बड़ा गहरा और खामोश होता है। उनकी फिल्मों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। वो अपने आप में एक विशाल फिल्म इंडस्ट्री है। अगर आपने सत्यजीत रे का सिनेमा नहीं देखा तो समझ लीजिए कि आपका जीवन वैसा ही है जैसे आप धरती पर तो रहे मगर आपने सूरज और चांद पर नजर नहीं डाली। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की अनुपम भेंट लेकर मैं आपके साथ छाया गीत के सफर में दिलों की दास्तां बयां करूंगी। बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात हो रही है, आंखों ही आंखों में इशारों की बरसात हो रही है, बातों ही बातों में मोहब्बत के सिलसिलों की शुरुआत हो रही है। उनके आने की आहट से दिल की धड़कनें

बड़ी कातिल अदाएं उनकी हैं, जरा बच के रहिएगा उनसे मुलाकातों में, कहीं दिल घायल करके वो दामन न छुड़ा लें। ये सोच के तबीयत बड़ी नासाज हो रही है, हाले दिल कुछ वो कहें कुछ हम कहें तो धड़कनों को सुकून मिले।

इंतजार की इंतहा हो गई। वो आए भी मगर चिलमन के पीछे से एक झलक दिखलाकर हौले से मुस्कुराकर जाने लगे। बड़ी बेताबी थी उनके दीदार की। गनीमत इतनी हुई कि दामन उलझकर चिलमन से लिपट गया और आंखों ने पलकों को झपकाना छोड़ दिया। काश वो पल वहीं ठहर जाता।

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। इंतजार के आलम में कुछ ख्वाब बुने थे, हकीकत में जब उनका सामना हुआ तो उलझ कर रह गया दिल उनकी निगाहों में, आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार हो रहा।

वो रूठे रूठे से हैं, होंठ चुप हैं, पर नजरों से मुस्कुरा रहे हैं। वल्लाह क्या अदा है, सितम भी ढा रहे हैं, प्यार भी जता रहे हैं। गिले शिकवे तो बेहिसाब थे, पर एक नजर के वार ने सारे ढा दिए। बस अब प्यार है, इजहार है, दिले बेकरार।

शमा ने कहा परवाने से मत पास आ जल जाएगा। शमा को क्या पता जलने में क्या मजा है। जल जल के फना होना तो फितरत है परवाने की, मोहब्बत को आजमाने की, जल जल के मिट जाने की।

एक तस्वीर उभरती है आंखों में, फिर अशकों में धुंधली हो जाती है। प्यार की कशिश ऐसी है कि कुछ और दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्यार हर किसी से नहीं होता, जिससे होता है बस उसी से होता है। चोरी, चोरी।

छाया गीत के सफर में आज यहीं तक। मिलेंगे फिर कभी इसी वादे के साथ। मंजरी वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: मुझे सच सच बता दो
1: क्या
0: कि कब दिल में समाए थे, मुझे सच सच

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। जी दोस्तों, चित्रपट संगीत की शुरुआत कर रहे हैं इस गजल के साथ। गायिका हैं जगजीत कौर, फिल्म का नाम है बाजार। मिर्जा शौक की रचना है और खयाम साहब की धुन।

खय्याम साहब के ही संगीत निर्देशन में हम आपको जानेसार अख्तर की रचना सुनवा रहे हैं। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है शंकर हुसैन।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19,650 मुंबई 400091 मन चाहेगी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पोस्ट बॉक्स नंबर 19750 मुंबई 400091 आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: जी हाँ दोस्तों, आपकी चिट्ठियों का हमें बेसब्री से इंतजार है। आज ही सुनेंगे आप अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत दोपहर 3 बजे।

यह अवस्थी चित्रा सिंह की फिल्म का नाम था साथ साथ। इसे लिखा था जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी कुलदीप सिंह ने। और लीजिए अब सुनिए आशा भोसले के साथ भूपेंद्र को, फिल्म का नाम है एतवार। इस गीत को हसन कमाल ने लिखा है और धुन बनाई है बप्पी लहेड़ी ने।

पेश खिदमत है कार्यक्रम की आखिरी गजल। मदन मोहन का संगीत है, साहिर लुधियानवी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है गजल।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है आज का मैटिनी शो। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम की ये है पहली कड़ी और इस कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ फिल्मी गपशप। क्यों, कैसा रहेगा दोस्तों? अच्छा रहेगा ना? देखिए ना, दोपहर का वक्त है और ऐसे समय में अगर हल्की फुल्की गपशप हो जाए तो कहने ही क्या। अच्छा, हम आपको बता दें कि आपको पता ही है कि कल

1 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया था, है ना? तो क्यों न आज इसी पर हम मैटिनी शो कर लेते हैं। देखिए ना, मजदूरों की मेहनत, संघर्ष और उनकी मजबूरियों को दर्शाने वाली कितनी ही बेहतरीन फिल्में बनाई गई हैं ना, जो समाज के इस अहम वर्ग की कहानी को बयां करती हैं। तो हमारी बहुत सारी फिल्में इसी श्रम पर बनी हैं। चलिए तो आज के इस कार्यक्रम में कुछ समय उन आइकॉनिक फिल्मों के लिए निकालते हैं जो मजदूरों के अधिकारों और संघर्ष के बारे में बताती हैं, श्रम के महत्व के बारे में बताती हैं। सबसे पहले 1957 की फिल्म नया दौर की बात करते हैं। जी हाँ, वही नया दौर। इसके गीत तो आप सभी को बहुत पसंद हैं। इस फिल्म को भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील का पत्थर माना गया है और इस फिल्म में दिलीप कुमार अपने साथी मजदूरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। इस फिल्म में दिलीप कुमार, वैजयंती माला अपने अद्भुत अभिनय से हमारा मन मोह लेती है और इस फिल्म का ये गीत साथी हाथ बढ़ाना एक अमर गीत बन गया हो जैसे।

0: दोस्तों, दुनिया भर में हर साल हर दिन यानी साल का जो पहला दिन है मई का, उसे हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अन्य दिनों में इस वर्ग के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि ये वर्ग इतना अहम है हमारी जिंदगी के लिए कि बड़े पर्दे पर हमेशा से ही आम आदमी के जीवन और उससे जुड़ी समस्याओं को बखूबी दिखाया गया है। अगर हम हिंदी फिल्मों की बात करें तो पुराने समय से ही फिल्मों में मजदूर और उसके संघर्ष को फिल्माया गया है। समाज में अपना अहम योगदान देने वाले इन मजदूरों के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिनका जिक्र हम अक्सर करते हैं और ऐसी फिल्मों को हम पसंद भी करते हैं, और ये फिल्में अपने समय की आइकॉनिक फिल्में बन गई हैं और इन फिल्मों को हम कभी नहीं भूल पाते हैं। अगर 1953 की फिल्म दो बीघा जमीन की मैं बात करूं तो आप जरूर मेरे हां में हां मिलाएंगे, है ना। देखिए, 1953 में ये फिल्म आई थी, दो बीघा जमीन बिमल रॉय की फिल्म थी और बड़ी ही क्लासिक फिल्म थी। एक किसान अपनी जमीन बचाने के लिए शहर में रिक्शा चलाने के संघर्ष पर ये पूरी फिल्म बनाई गई, जो श्रमिक वर्ग की परेशानी को बहुत ही मार्मिकता के साथ दिखाती है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।
1: भाई रे,
0: इस बार लता मंगेशकर, बन्ना डे और साथियों के हैं दो बीघा जमीन के लिए। शैलेंद्र ने इसे लिखा और सलील चौधरी ने संगीत में ढाला। क्या शानदार गीत है।

जी हाँ, तो इस समय हम मैटिनी शो पर बात कर रहे हैं आज मजदूरों पर, श्रमिकों पर और श्रम पर। आप सभी जानते हैं एक फिल्म आई थी बूट पॉलिश, 1954 में बनी राजकुमार की, राज कपूर साहब की, क्षमा कीजिए, ये फिल्म जो थी गरीबी, अभाव और विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी, आत्मसम्मान और मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाती है। ये फिल्म बच्चों के संघर्ष और उनके जज्बे की अमर कहानी है। बूट पॉलिश फिल्म आपने देखी होगी और जरूर आप बच्चों के अभिनय से प्रभावित हुए बिना नहीं रह गए होंगे, है ना। फिल्म में जो पात्र थे भोला और बेलू, वो अभावों में भी भीख मांगने से इंकार करते हैं और बूट पॉलिश करके अपनी मेहनत की रोटी कमाने का रास्ता चुनते हैं। लेकिन अगर हम अब देखें श्रोताओं, तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि भारत में बाल श्रम अधिनियम जो है 23 दिसंबर 1986 को आधिकारिक रूप से लागू हुआ था। और इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक व्यवसायों और प्रतिक्रियाओं में काम करने से हमें रोकना है। और इसका संशोधन 2016 में हुआ था, जिसमें ये संशोधन किया गया कि बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन 1986 के रूप में जाना जाए। और हाँ, अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्ण निषेध और 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक व्यवसायों में काम करने पर यह अधिनियम रोक लगाता है। लेकिन जब बात चल रही है फिल्म की, तो फिल्मों में बाल श्रम को बहुत भी दर्शाया गया है।

0: पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वो गंगा जी नहलाते हैं।
1: हम पेट का मंत्र पढ़ते हैं, जूते का मुंह चमकाते हैं।
0: पंडित को पांच चवन्नी है,
1: अपनी तो एक ही कन्नी है।
0: फिर भेदभाव ये कैसा है?

ये था बूट पॉलिश फिल्म का गाना मन्ना डे, मधुबाला झवेरी और साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम बूट पॉलिश तो था ही, शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था और शंकर जयकिशन ने इसको संगीत में ढाला था। और जब बात मैटिनी शो में हम बात कर रहे हैं श्रमिक वर्ग की, तो एक फिल्म आई थी पैगाम, 1959 में ये फिल्म आई थी और एसएस वासन द्वारा निर्देशित। इस फिल्म में दिलीप कुमार और राज कपूर ने बहुत ही बखूबी काम किया था। राजकुमार इस फिल्म में थे और ये औद्योगिक मजदूरों और मिल मालिकों के बीच के वर्ग संघर्ष को दर्शाती हुई ये फिल्म थी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

तो हम बात कर रहे हैं मजदूर वर्ग की, श्रमिक वर्ग की। एक और फिल्म आई थी कुली, जी हाँ, समाज के वंचित वर्ग और उन शोषित लोगों की कहानी का एक उत्कृष्ट उदाहरण इस फिल्म में प्रस्तुत किया गया था, जो मुश्किल से अपना पेट भरते हैं और मुश्किल हालातों में अपनी जिंदगी चलाते हैं और उन्हीं वर्ग के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म कुली का ये गीत। शब्बीर कुमार की आवाज है और आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

तो दोस्तों मैटिनी शो में आज हमने मजदूर और श्रमिक वर्ग को लेकर बातचीत की, फिल्मी गपशप की। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तो मैटिनी शो का आज का ये अंक यही खत्म होता है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए चुने हैं सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में सजे कुछ फिल्मी गीत।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा गीत अभी आपने सुना। स्वर लता मंगेशकर और साथियों का था। फिल्म का नाम था जागते रहो।

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म माया का गीत, स्वर लता मंगेशकर, द्विजेन मुखर्जी और साथियों के मजरू सुल्तानपुरी की रचना है सलील चौधरी की धुन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज। फिल्म का नाम है अन्नदाता। गीतकार हैं योगेश और संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म मधुमति का गीत सुनवा रहे हैं। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सलिल चौधरी की।

लता मंगेशकर को अभी आपने फिल्म मधुमती में सुना। आइए सुनते हैं इसी आवाज में फिल्म हनीमून का गाना। गीत रचना शैलेंद्र की है और धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

योगेश का लिखा गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे। मुकेश का साथ दे रही थी लता मंगेशकर। फिल्म का नाम था अन्नदाता।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था परख। इस गीत को शैलेंद्र ने लिखा और धुन बनाई वही यानी सलील चौधरी ने।
1: संगीत सरिता में शुरू हो रही है नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। विविध भारती पर आ रही है विदुषी कल्पना जोकरकर।
2: बंदिश मतलब एक ऐसी रचना जो शास्त्र में ताल में निबद्ध स्वर लय के साथ उस राग की विशेषताओं को लेकर बनाई जाती है।
1: तो सुनिए 3 मई से संगीत सरिता में नई श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती।

0: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
1: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
0: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा

0: 1993 फिल्म साहिबा।
1: कैसे जियूंगा मैं।
0: रंगमंच और सिनेमा के जानी माने निर्देशक रमेश तलवार।
2: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा दुगाना, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के। फिल्म का नाम है जीवन ज्योति।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन, बहुत बहुत स्वागत है इस नए कार्यक्रम सुरीला सफर में आपका। और मैं हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हाँ, मुझे पता है इंतजार है आपको इस कार्यक्रम का, इस सुरीले सफर का। तो चलिए, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त और निकलते हैं इस सुरीले सफर पर, ठीक है। जी हाँ, इतनी ही खुशी के साथ हमें निकलना है इस सुरीले सफर पर। लेकिन लेकिन लेकिन जरा ठहरिए दोस्तों, आज जो इबारत हमने आपके लिए लिखी है उसे आपने पढ़ा कि नहीं, जाना कि नहीं कि आज के इस सुहाने सफर में क्या क्या है, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या दिक्कत आने वाली है, क्या क्या अच्छा होने वाला है। हाँ, जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो पढ़ ली है हमारी इबारत, लेकिन अन्य श्रोताओं ने नहीं पढ़ी है। तो क्या है हमारी इबारत, क्या हम उन्हें बताएं पढ़ के? चलिए, तो हमारे वो दोस्त जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं, हम उन्हें बता देते हैं कि आज हमने उनके लिए क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, हमने लिखा है कि नमस्ते दोस्तों, जिंदगी के कठिन रास्तों पर दीवाने ही हैं तो बाजी मार लेते हैं। कोई खाली हाथ है तो किसी की जेब पैसे से भरी है। यहाँ कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं। कोई पैदल चला जा रहा है, कोई घोड़े पर दौड़ा जा रहा है। वैसे बाबूजी, ये दुनिया एक तमाशा है, खेल पैसों का। कैसी दुनिया है राम जाने। दुनिया को समझने का एक और तरीका है क्या? पान का एक बीड़ा लगाओ, और फिर उसी धुन में गाना है आपको, गाने जो आज हमने इस कार्यक्रम में आपके लिए चुने हैं। तो बताइए कौन से हो सकते हैं आज के शब्द, आपको क्या लगता है जो शब्द हमने इस इबारत में लिखे हैं, इन शब्दों पर कौन कौन से गाने हम आपको सुनवाने वाले हैं? जरा दिमाग पर जोर लगाइए। बिल्कुल इस म्यूजिक की तरह ही हमें दौड़ लगानी है आज के सुरीले सफर पर। और देखिए ना, किसी ने कहा है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल सही ही तो कहा है। लेकिन हाँ, डर के साए में जीना हमारी फितरत नहीं, हम तो सफर में भी पत्थर से रास्ता निकाल लेते हैं हुजूर, है ना। तो दोस्तों, कहीं कहीं मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है, और आज बस इसी सफर को हमें जीना है। और ये सुहाना सफर जहाँ मैं हूँ, जहाँ आप हैं और हमारे तमाम दोस्त हैं, हम सब मिलकर चलते हैं इस सुरीले सफर पर। मजेदार रहेगा ये सफर, है ना। आप मेरे साथ हैं,

किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था काला पत्थर। जी हाँ, तो हम आगे बढ़े इससे पहले हम इसी बात पर एक सवाल आपसे पूछते हैं कि पत्थर फिल्म से कितनी और सारी फिल्में बनी हैं, जैसे कि ये काला पत्थर है और बहुत सारी फिल्में पत्थर के साथ बनी हैं। आगे पीछे कुछ नाम जुड़े हैं, बताइए कौन कौन सी फिल्में हैं जिनमें पत्थर भी है जुड़ा हुआ। और हाँ, हम आपको बता दें कि कल जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, यानी इसकी जो पहली कड़ी कल शुरू हुई थी, तो हमारे वरिष्ठ उद्घोषक यूनुस खान साहब ने आपको बताया था कि इस कार्यक्रम को किस तरह से समझना है और किस तरह से इस कार्यक्रम में भाग लेना है। आपको समझ आ ही गया था कि हर रोज हम एक इबारत फेसबुक पर पोस्ट करेंगे और इस इबारत में शामिल शब्दों में से कुछ कुछ चुनकर सुनवाएंगे सुरीले सफर के गाने। तो आपको इबारत पढ़कर अंदाजा लगाना है कि कौन से शब्दों पर आज गाने आ सकते हैं। तो आज आपने हमारी इबारत पढ़ी होगी कि जिंदगी के कठिन रास्तों पर दीवाने ही हैं जो बाजी मार लेते हैं। कोई खाली हाथ है तो किसी की जेब पैसों से भरी है, यहाँ कहीं फूल है तो कहीं कांटे हैं, कोई पैदल चला जा रहा है तो कोई घोड़े पर दौड़ा जा रहा है। वैसे बाबूजी, ये दुनिया एक तमाशा ही तो है खेल पैसों का। कैसी दुनिया है राम जाने, दुनिया को समझने का एक तरीका और है क्या कि सुकून से ये खा लेना, यानी पान खा लेना, ताकि थोड़े मुश्किल

हमें लगे हल हो चुकी हैं और हम अपनी धुन में कुछ गाते चले जाएं। तो बताइएगा कौन कौन सी फिल्में आज हमने आपके लिए चुनी है। कुछ लोगों ने अंदाज लगाया है, कुछ लोगों ने हमें लिखा भी है कि भाई आज जिंदगी कठिन राह दिखाने वाली है और इसमें दुनिया पान आदि शब्द मंदाकिनी जी ने लिए हैं, पान खाए सैया हमारो। अच्छा, आपने गीत चुना है और आपने चुना है एक और गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर में हम सभी मंदाकिनी जी के साथ दूर तक जाएंगे, फिलहाल सभी को दोपहर की प्यार भरी नमस्ते हम कर रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में आज की इबारत में आपने जो शब्द चुने हैं शायद वो है जिंदगी, रास्ते, दीवाने, बाजी, खाली हाथ, पैसे, फूल, कांटा, बाबूजी, दुनिया, राम, पान। इन शब्दों का सुंदर चुनाव है। जब हम इन शब्दों के माध्यम से अपना सुरीला सफर तय करेंगे तो जिंदगी के हर रास्ते पर एक नया गीत सुनाई देता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज ये जो जीवन है परिस्थितियों का दास है, कभी बाजी इस किनारे तो कभी उस पार, मगर जीवन की बाजी चाहे कितने ही पहलू क्यों न हो उसके, दोस्तों का साथ हो तो कांटे भी फूल बन जाते हैं और पथरीला रास्ता सुगम हो जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन बताइए तो सही कि आज इन शब्दों पर हमने कौन कौन से गीत चुने हैं। अब देखिए, हम तो आपको बताएंगे क्योंकि हमने जो गीत आपके लिए चुने हैं उसमें एक गीत बहुत खास है, क्योंकि जिंदगी का ये सफर है सुहाना और यही है जीवन का सटीक अंदाज। हर लम्हा हर क्षण बहुत कीमती है और एक बार गुजर जाने के बाद वो वापस नहीं आता है। तो जीना हर पल में है, मुस्कुराकर जिए तो क्या हर्ज है। नए दोस्त बनाइए, नफरत मिटाइए, खुद को संवारते चलिए। जीवन बहुत सरल और सादा है और हमने इसे जटिल बना दिया है। तो कैसा होना चाहिए इंसान को, वो इंसान ही जो दिल से अमीर न हो, और वो अमीर ही क्या जिसका दिल फकीर न हो। तो हमारे अंदर एक फकीराना अंदाज होना चाहिए और एक दीवानगी होनी चाहिए। हम तो भाई ऐसे ही हैं दीवाने। फटाफट बताइए हमने और कौन से गाने आपके लिए चुने हैं।

हमने आपसे पहला सवाल किया था कि पत्थर फिल्म पर कितनी और सारी फिल्में बनी है हमें बताइए, और अब हमारा दूसरा सवाल जो आपने अभी गीत सुना, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, उसमें जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो कलाकार कौन है और उनके साथ जो नर्तकी है यानी जो बंजारा नृत्य कर रही है वो कौन सी कलाकार है? जी हाँ, ढूंढिएगा कि हारमोनियम जो बजा रहे हैं इस गाने में वो कौन सी कलाकार है और जो नर्तकी हैं साथ में नाच रही हैं वो कौन सी कलाकार है, उनके बारे में बताइए हमें। जी हाँ, बताना तो पड़ेगा क्योंकि इस कार्यक्रम में तो हम यही चाहते हैं कि जो आज हम आपके लिए इबारत लेकर आए हैं उसमें आप क्या समझे हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अब देखिए, हमारे कुछ श्रोता कह रहे हैं कि भई ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है लेकिन हमें लग रहा है कि बहुत सारी बातें समझनी और लिखनी होती हैं तो इसके लिए मुश्किल है क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं चला पा रहे हैं। आपने जो पहेलियां हमारे लिए रख छोड़ी हैं इस कार्यक्रम के जरिए वो बड़ी मुश्किल है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है, दीवाने हैं तो बाजी मार लेते हैं, ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम अच्छा है लेकिन आपने इसे दोस्तों जिंदगी दीवाने बाजी हाथ पैसे फूल कहीं कोई चला बाबूजी दुनिया एक और पान जैसे शब्दों पर लाकर ठहरा दिया है जो हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीले सफर को शुरू करने के लिए कुछ रुकावटें आ रही हैं और हमारा मोबाइल हमें परेशान कर रहा है। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपने जिस तरह से इसको पिरोया है भाई उसे समझना आसान तो नहीं है। आज सुरीला सफर आसान नहीं लेकिन कुछ जज्बाती जरूर है जिसमें जिंदगी रास्ते बाजी दीवाना पैसा चलना फूल कांटे बाबूजी दुनिया अपनी धुन जैसे कुछ शब्दों को लेकर आपने गाने चुने हैं पर कौन कौन से चुने हैं ये हम नहीं बता पा रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार, इस दुनिया में जिंदगी के रास्ते फूल और कांटों पर से चलते चलते दीवाने लोग गुजरते हैं, बाबूजी आगे चलकर बाजी कौन जीतेगा ये तो राम जाने। उन्होंने कुछ गाने लिखे हैं कि आपने नमस्ते दिल तेरा आशिक का या एहसान या रास्ते पर रास्ते जाने वाली दीवाने हैं दीवानों का न घर जीत ही लेंगे बाजी हम तुम जैसे बहुत सारे गीतों को लिखकर भेजा है लेकिन हम आपको बता दें सिर्फ एक गीत दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए ये हमारी लिस्ट में जरूर शामिल था जो आपने अभी सुना लेकिन बाकी गाने हमारी लिस्ट में शामिल नहीं है। तो सफर जब हम निकल ही पड़े हैं दोस्तों तो देखिए सफर में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहीं घोड़ा कहीं गाड़ी कहीं कार कहीं पैदल चलने वाले लोग कहीं ट्रेन कहीं बहुत कुछ साधन अपनाने वाले लोग जो अपने अपने साधनों से चले जा रहे हैं दौड़े जा रहे हैं।

ना किसी की चिंता ना किसी की फिक्र, बस अपनी ही मंजिल अपनी ही दौड़। तो कई बार ऐसा होता है कि हम भी इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं रहता कि किसी के जीवन पर किसी के दिल पर क्या गुजर रही है।

0: अच्छा बताइएगा, आप कभी किसी रिक्शा पर बैठे हैं, आपने रिक्शा की सवारी ली है और आपको लगा है कि जो रिक्शा चला रहा है उसकी हालत क्या होती है जब हम अतिरिक्त भार उसकी रिक्शा पर लाद देते हैं, कभी सोचा आपने?
1: मैं हूँ घोड़ा

0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अरे भाई, विविध भारती का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है, थोड़ा लेट हो गया हूँ इसलिए सुहाने सफर की गाड़ी अगले स्टेशन से पकड़नी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं पकड़ लीजिए, अभी भी मौका है गाड़ी पकड़ने का।
1: अरे सामने क्या देख रहे हैं, उन्हें पीछे से पाकिट मार रहे हैं।

जी हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आज इस कार्यक्रम का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन इस नए कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लग रहा है। ये कार्यक्रम नया है लेकिन बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इबारत है, लगता है आज के गीत जिंदगी और दुनिया की इर्द गिर्द होंगे, जैसे जिंदगी कैसी है पहली या जिंदगी एक सफर है सुहाना, बेसब्री से इंतजार रहेगा। भाई आज हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि हमारे श्रोता लगभग हार गए हैं हमसे, क्योंकि आपने जो प्लेलिस्ट बनाई है हमारी इबारत पढ़कर, वो गाने हमसे तो मेल नहीं खा रहे हैं, थोड़ा दिमाग पर और जोर लगाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार को हमारा नमस्कार, इस चिलचिलाती धूप में भी ठंडा का सफर जारी है जो विविध भारती से हमें मिल रहा है, तो ये सुनहरा चमकता दमकता सफर ठंडी फुहार की तरह चलता रहे, धन्यवाद। एक श्रोता लिखते हैं कि पिछला प्रोग्राम गीतमाला में आपने हम सभी श्रोताओं के खूब कॉमेंट्स दौरान प्रोग्राम में शामिल किए, वैसे ये नया प्रोग्राम है सुरीला सफर, पूरी तरह समझ तो आ गया है लेकिन देखते हैं कि हम श्रोताओं के कितने गीत आपके चुने गीतों से मेल खाते हैं। सुरीला सफर नाम के अनुसार बहुत ही सुरीला होने वाला है, निश्चित है ये कार्यक्रम सुरीला है, लेकिन ये और सुरीला तब होगा जब आप हमारे गाने, आपके गाने हमारे गानों से मेल खाएंगे। जी हाँ, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहेलियों से पूर्ण संगीतमय सफर सुरीला सफर जरूर चलेगा, और आप पेचीदा प्रश्न पूछ रहे हैं पर गाने मजेदार हैं, प्रोग्राम प्रस्तुति का अंदाज हाँ थोड़ा सा अलग लग रहा है इस कार्यक्रम में, तो भाई कार्यक्रम अलग है तो प्रस्तुतकर्ता का अंदाज भी अलग होगा ना। तो आपने हमें बताया नहीं, हमने दो सवाल आपसे किए थे उनके बारे में बताइए, कि पहला कि पत्थर फिल्म से और कितनी फिल्में बनी है जिसमें, जैसे काला पत्थर है या इस तरह की बहुत सारी फिल्में जिसमें पत्थर शब्द भी जुड़ा है, ऐसी फिल्मों के नाम बताइए। और साथ ही हमने कहा था कि दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, इस फिल्म में हारमोनियम कौन बजा रहे हैं और साथ में जो नर्तकी है वो कौन है। अच्छा, साथ में एक तीसरा सवाल ये भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि रिक्शे पे आपने सवारी कब की थी और क्या कभी रिक्शा वाले से आपने मोल भाव किया? देखिए जनाब, ये जिंदगी है और जिंदगी में ये सफर जारी रहेगा जब तक हमारी जिंदगी है, यानी अंतिम सांस तक हम इस सफर में चलते रहेंगे, और बहुत सारी चीजें बहुत सारी बातें इस सफर में हमें देखने सुनने को मिलती है। याद करिए वो पुराना जमाना, वो देसी मनोरंजन यंत्र जिसे बेतार का टीवी या चलचित्रदर्शी भी हम कहते थे, याद आया आपको? ये एक लकड़ी का बक्से जैसा होता था जिसमें लेंस लगे होते थे और उसके माध्यम से हम पुरानी रीलों को, तस्वीरों को घुमा घुमा कर ऐतिहासिक स्तर और फिल्मों के दृश्य देखते थे। याद कीजिए बक्से नुमा वो यंत्र, जब वो आदमी आवाज लगा लगाकर हम बच्चों को लुभाता था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसमें लेंस और अंदर रील चलाने की व्यवस्था होती थी और हम एक आंख गड़ा कर उसको देखा करते थे, और इसमें हमें कुतुब मीनार, गोल घर जैसे न जाने कितने चित्र दिखाए जाते थे। याद आया? नहीं तो ये गीत सुनते हैं, फिर बताइएगा आपके बचपन में ये दिन कब आया था।

याद आया हम किस यंत्र की बात कर रहे हैं? आज के मल्टीप्लेक्स के दौर में ये तो एक लुप्त हो गई है कला जो अक्सर बचपन की यादों के रूप में याद की जाती थी। याद करिए।

0: जी हाँ, आपको याद आया उस यंत्र का नाम? बायोस्कोप, हाथ से घुमाकर चलने वाला, चलता फिरता वो सिनेमा घर जहाँ हमें बुलाकर एक आंख से वो चित्र दिखाए जाते थे, है ना?
1: अच्छा जी, ओह टायर पंचर हो गया।
2: पैसे निकाल।
1: पहले मेरे काले से हाथ हटा, नहीं तो मैं गांव वालों को बोल दूंगा कि बुतिया खेत में चुड़ैल बन के तू ही डराती। तो मैं अब जाऊं?
2: जा।
1: थैंक यू।
2: ए, उधार रख के जा तो रहा है, लेकिन अपना नाम तो बताता जा।
1: सुना नहीं बच्चे ने क्या कहा? दुश्मन चाचा। चाचा सिर्फ बच्चे का, तेरा नहीं।

0: आ गया? क्या हुआ?
1: हुआ मेरा सर। अरे ऐसे कमीनों के घर में कौन लड़की देगा? देखना साली, कमला के लिए मैं ऐसा लड़का लेके आऊंगा कि तू भी देखती रह जाएगी।
0: ए, रहा ना आखिर ड्राइवर का ड्राइवर ही। तू क्या लड़की के दिल को भी गाड़ी का पहिया समझता है? जब एक पिंजरे
2: तो हमारे कई श्रोताओं ने सही जवाब दिया है कि ये बायोस्कोप है जो बचपन में हम देखा करते थे, और इस बायोस्कोप को देखने के बाद हमें लगता था जैसे हमने बहुत बड़ी फिल्म देख ली है ना। तो हम आपको बता दें, दुश्मन फिल्म का गीत था ये, लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन पर आपने गीत सुना।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि काला पत्थर का ये गीत आपने बजा ही दिया, मैं तो अभी इसी गीत के बारे में सोच रहा था। राजेश रोशन का संगीतबद्ध ये गीत मोटरसाइकिल पर बैठकर शशि कपूर जब गाते हैं तो एक अलग ही आनंद आ जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, आप ही लिखते हैं कि दिल्ली में पिछले 20 वर्षों में मैं कभी भी हाथ रिक्शा पर नहीं बैठा, मुझे इन पर बहुत दया आती है। भले ही मैं पैदल चला जाऊं, ये रिक्शा वाला गाना महमूद पर फिल्माया गया था जो मुझे बेहद पसंद है और इसमें भी राजेश रोशन साहब का ही संगीत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम रिक्शे पर बैठ तो जाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि जो रिक्शा खींच रहा है व्यक्ति उसकी हालत कैसी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गीतों का सुरीला होगा, दोस्त होंगे मंदाकिनी जी, न हो ये हो ही नहीं सकता। हमें पता था कि आप इस कार्यक्रम में आएंगी और आप आ गई हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दीवाने ही तो हैं जो बाजी मार लेते हैं, जो ठोकरों में भी सुर ढूंढ लेते हैं, तो खाली जेब भी में भी ख्वाब भर लेते हैं। कहीं फूलों की खुशबू बसी है तो कहीं कांटों की चुभन है, कोई पैदल धूप में तपता है, कोई घोड़े पर हवाओं के साथ है, पर बाबू जी दुनिया सचमुच एक तमाशा है, हंसी और आंसू का एक झमेला है, यहाँ हर धड़कन का मूल लगा है। ये खेल भी क्या बस पैसों का मेला है, फिर भी एक और तरीका है इसे समझने का, थोड़ा ठहरने का, थोड़ा मुस्काने का, एक पान का बीड़ा लगाकर अपनी

धुन में गुनगुनाने का, गम को भी गीत बना लें, थकान को तान बना लें, सफर को यूं ही नहीं सुरों से सजा लें, मुस्कान से सजा लें, क्योंकि जब दिल से आवाज निकलती है तो राहें आसान हो जाती है और ये दुनिया तमाशा नहीं एक सुरीला सफर बन जाता है। जी, सुरीले सफर पर जब हम निकल ही गए हैं तो और भी बहुत कुछ हमें देखने सुनने को मिलता है। क्या, आइए सुनते हैं इस गीत में।

0: क्या आपको लगा था कि बाबू शब्द पर ये गीत आने वाला है?
1: बाबू आना, सुनते जाना।
2: महंगा सौदा है इसका, लुटना जाना।
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका।
2: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
3: मौजी बोलो, मौजी मौजी बोलो, मौजी मौजी बोलो,
2: बाबू आना, सुनते जाना।
1: महंगा सौदा है इसका, लुटना जाना।
2: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका।
1: चोरी का है माल।

लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी। तू जा जा ऐ जा जा जा मुंह धो के आ, तू जा जा अरे जा जा जा मुंह धो के आ।

0: की पहाड़ी है काटे की लाला।
1: Oh,

0: रे मत लड़ना मुझसे वरना मैं दूंगी गालियाँ।
1: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियाँ।
0: रुक जानी पालती मैं तेरा दीवाना,
1: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला।

जुमरू फिल्म का गाना था। बहुत ही मजाकिया गीत किशोर कुमार, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे और किशोर कुमार का ही संगीत था। जी हमारे श्रोता जो अपने गानों की लिस्ट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं उनमें कुछ कुछ गाने हमारी लिस्ट से मिल रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट से मिल रहे हैं, लेकिन सभी गानों पर हमारे श्रोता अपनी पकड़ नहीं बैठा पाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पोस्ट भेजी है उसके हर शब्द पर गाना निकालते हैं। विविध भारती के सुरीला सफर में आज इन्हीं शब्दों पर गाने बजेंगे। जिंदगी पर आपने गाना निकाला है, कठिन रास्तों पर, बाजी पर, कांटे पर, फूल पर, बाबूजी पर, दुनिया पर, तमाशा पर, लेकिन गीत आपने बहुत अच्छे निकाले हैं लेकिन हमारी लिस्ट से आपका कोई भी गीत नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की है। हाँ, एक गाना जरूर मिल रहा है, वो हम आपको सुनाने वाले हैं थोड़ी देर में। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दीदी जी सुरीला सफर की प्लेलिस्ट तैयार है, किस शब्द से शुरू करें, जिंदगी से या दुनिया से। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए में गाना जो है गुलशन बावरा जी हारमोनियम के साथ हैं, गीतकार बिल्कुल सही कहा, और नृत्य करने वाली नायिका का नाम है संजना। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो हारमोनियम बजा रहे हैं वो हैं गीतकार और अभिनेता गुलशन बावरा, और उनके साथ जो नृत्य कर रही है नायिका वो है संजना। एक श्रोता ने लिखा है कि कार्यक्रम नया है फिर भी मेरे अंदाज से कुछ गीत जरूर सुनने को मिल सकते हैं, जैसे मिले ना मिले, फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, बाबूजी धीरे चलना, इस तरह के कुछ गाने, और आखिर में तो तय है कि खाई के पान बनारस वाला गीत तो हमें सुनने को मिलेगा ही। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुहाना सफर एक नया कार्यक्रम है, बहुत पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है बहुत अच्छा कार्यक्रम है लेकिन कुछ समझ में कम आया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं अच्छा, आप हमारी तारीफ लिखते हैं, और एक श्रोता लिखते हैं कि आपका ये कार्यक्रम बहुत ही रोमांचक लग रहा है। एक श्रोता ने जिंदगी पर कुछ गीत लिखे हैं लेकिन वही बात कि सिर्फ एक गाना हमारी लिस्ट से आपका मिल रहा है। तो जो अभी मजाकिया गीत आप सुन रहे थे, बाबू आना सुनते जाना, महंगा सौदा है इसका लूट न जाना, बताइए कभी आप लूटे इस महंगाई से? कहीं जाकर आपने कोई खरीदारी की हो और आपको पता चले कि भाई दुकानदार ने आपको लूट लिया और ज्यादा दाम लगा दिए, कभी पता चला आपको? अगर हाँ ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो आपने क्या किया इसके बारे में हमें लिखकर बताइए। और हाँ, जिंदगी के इस सफर में देखिए फूल हैं तो कांटे भी हैं, कई बार ये होता है कि कांटा लग जाता है तो गाना निकलता है क्या,

जी हाँ, तो हमारी इबारत में आपने पढ़ा था, कहीं फूल है तो कहीं कांटा, तो ये गाना क्या आया, कांटा लगा है ना। तो इसी प्रकार जो हमने लिखा है उसी में कहीं ना कहीं कोई न कोई गीत छिपा है। और अब आप दोस्तों को दिमाग लगाना है, भाई जोर लगाना है कि कौन सा गीत हो सकता है। बहुत सारे गीत आपने लिखकर भेजे हैं, ऐसी बात नहीं है, आपने कोशिश बहुत की है, लेकिन हाँ एक या दो गीत हमारी लिस्ट से मिल पाए हैं, हमारी प्ले लिस्ट से मिल पाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे नियमित श्रोता है, कि भाई ये इबारत है क्या, अगर

0: इबारत का अर्थ आप समझा पाएं तो मैं कुछ लिख सकूं। ऐसी बात तो नहीं है कि आप इबारत के बारे में नहीं जानते होंगे। आपने जिस अंदाज में लिखा है वो अंदाज थोड़ा अजीब लगा है, लेकिन हाँ, इबारत मतलब जो लेख हमने आपको दिया है, जो तहरीर, जो मजमून, जो लिखावट, जो लेखन शैली हमने आपके लिए रखी है, जो लेख या पाठ है ना जो आपके लिए रखा है, उसको पढ़िए। जो गद्य, इसे आप बहुत अगर हिंदी में समझना चाहते हैं कि हमने जो गद्य के रूप में लिखा है विचार, उस विचार या पाठ को आप पढ़ें और उसमें से निकालें कि कौन कौन से गीत हो सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि कांटा, कहीं फूल है कहीं कांटा, तो कांटा लगा। और अभी था जैसे थोड़ी देर पहले कोई घोड़े पर दौड़े जा रहा है, तो ये है घोड़ा, है ना, मैं हूँ घोड़ा, ये है गाड़ी। इस तरह के गीत हमने आपके लिए चुने ताकि थोड़ी सी दिमागी कसरत हो जाए और आपकी और हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। कैसे? कि हमारे विचार आपके विचार एक हो जाएं। वही कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि इबारत का मतलब क्या है और अब आप तुरंत अपने विचार हमें लिखकर भेजने वाले हैं। तो हम आपको बता दें, लता मंगेशकर की आवाज थी, फिल्म का नाम था समाधि, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। हम समझ सकते हैं कार्यक्रम नया है, इसलिए समझने में और लिखने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दिमागी काम है और हमें सोचना पड़ता है कि इस शब्द पर कौन कौन से गाने कहे गए हैं, लिखे गए हैं और हमने कौन से गाने छांटे हैं। लेकिन फिर भी आपने कोशिश की है, सबसे अच्छी बात यही है, और क्या कह सकते हैं, आपको शुक्रिया। जी, और अब वो गाना आपके लिए पेशे खिदमत जो आपकी और हमारी लिस्ट में है।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा, आहा, अरे ऐसा झटका

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था डॉन। आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की धुन। भाई बनारसी पान तो हम सबने लगभग खाया होगा, लेकिन आपने अपने शहर में कौन सा पान खाया है और वो पान कैसे लगाया जाता है, आप कौन सा पान खाते हैं इसके बारे में बताइएगा। और हाँ, पत्थर पर जब हमने कुछ सवाल आपसे किए थे, एक दो श्रोताओं ने लिखा है कि लाल पत्थर, फूल और पत्थर। जी हाँ बिल्कुल, इसके अलावा बहुत सारी फिल्में पत्थरों से बनी है, पत्थरों का शहर, लाल पत्थर, फूल और पत्थर, पत्थर, पत्थर के फूल, पत्थर के ख्वाब, पत्थर दिल, है ना, और हीरा और पत्थर, पत्थर के लोग, बहुत सारी फिल्में पत्थर शब्द पर बनाई गई है। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं जहां आशा भोंसले और मन्ना डे साहब गा रहे हैं फिल्म आंखें का गीत, साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि की धुन है।

0: घबराए, सब्र की डोरी टूट गई तो लव मैरिज कर लाए, लव मैरिज कर लाए।
1: दिल से दिल टकराए फिर दोनों घबराए, सब्र की डोरी टूट गई तो लव मैरिज कर लाए।

लेके घर आए, घर आकर पछताए, सब्र की डोरी टूट गई तो लव मैरिज कर लाए, लव मैरिज कर लाए।

खोद के करते तकियों से बातें। अरे कब तक चादर ओढ़ के करते तक...

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है हमारा पसंदीदा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत।

0: मन चाहे गीत
1: मन चाहे गीत
0: मन चाहे गीत
1: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आपका अपना चहेता कार्यक्रम आज से फिर शुरू हो गया है। आज ही इसका पहला अंक है। हम आपको पहला गीत सुनाएं, उससे पहले ये संदेश।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे।

0: और इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
1: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियाँ आपको भेजनी कहाँ है?
2: कार्यक्रम मन चाहेगी,
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में आज हमने पहला गीत चुना है आप सबकी पसंद पर। आप हैं हमारे सबसे पहले श्रोता आज के चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और उनके परिवार वाले, नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से मधुलता पुरोहित, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, डॉक्टर प्रांजल, हर्षिता, राजन, कमाली, परम और ये खत हमें मिला है जिला लुधियाना पंजाब से संतोष जोशी, नरेश, मुक्ता जोशी, जोयल जोशी, वज्रा जोशी का, और नासिक महाराष्ट्र से आप हैं सुमन पारिक, साहिल पारिक, भावना पारिक, और ये खत लिखने वाले हैं नूहिया वाली हरियाणा से लीलाधर जोशी, कमला जोशी, गायत्री, मिथिलेश पुरोहित, दिनेश जोशी, पूजा और पवन पारिक। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म दो चोर में, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन।

फिल्म दो चोर का ये गाना आप सभी सुनना चाहते थे। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, सुनवी और जयपाल यादव। और इसी गाने को सुनना चाहते थे, आपने ये खत लिखा है, नोखा से प्रेम बलबीर, हरि सिंह, दुर्गा देवी, अनिल, अनुप्रिया, सीता और कैलाश। आप सबने भी अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो। शब्दकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनना चाहा था, सुनने वाले हैं आप जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियांज और रिफाकत। इसी गीत को सुनना चाहते थे रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी और ये हैं देशमुख पेट अकोला से महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस जैन, जयेश, ऋषभ और संयम जैन। हमें उम्मीद है आप सभी ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

ये अवस्थी किशोर कुमार की फिल्म याराना के लिए गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे राजेश रोशन। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखा गांव जाखोद राजस्थान से। पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभू दयाल खटक और उनके परिवार वालों ने, और आप हैं

अन्य श्रोता लिखते हैं कि ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में आपने अपना नाम लिखा है। कृष्ण कुमार डागी, भूपत कुमार डागी, राधा देवी डागी, विक्रम, अर्चना और पूरा डागी परिवार। आपने लिखा है जिला बालोतरा से ये खत। हमें उम्मीद है आपने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा।

फिल्म शोर का गीत अभी आप सुन रहे थे। मन्ना डे, महेंद्र कपूर और अन्य साथियों का गाया हुआ। गीतकार थे राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। गांव फ्रांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार वालों ने इस गीत को सुनना चाहा था और इसी गीत को सुनने के लिए

मुद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार वालों ने इस गीत को सुनना चाहा था। और इसी गीत को सुनने के लिए हमारे एक श्रोता है घंटाघर चौक खंडवा से, संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे, आवाज मोहम्मद रफी की। सुनने के लिए ख्वाहिशमंद हैं कवन कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी, मीनूराज और उनके परिवार वाले।

मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था आप तू ऐसे न थी। गीतकार निदा फाजली थी और संगीतकार थी उषा खन्ना। मनचाही गीत की कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है ममता। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजें हैं। मजरू सुल्तानपुरी की रचना और रोशन की धुन। इस गीत को सुनना चाहते हैं जिला अम्बाला से शहनवाज आलम, सरफरोज बेगम, शाह उमर आलम और उनके परिवार के अन्य लोग। और इसी गीत को सुनना चाहती हैं बोरीवली गोराई महाराष्ट्र से एकता और उनके परिवार वाले।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाही गीत।
2: मन चाहेगी।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल। ये नाटक गोगोल के मूल नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की। तो सुनते हैं नाटक इंस्पेक्टर जनरल, इस नाटक का पहला भाग।
1: मिश्का
2: जी हजूर,
1: सब लोग आ गए या नहीं?
2: जी जज साहब और स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब तो तशरीफ ले आए, लेकिन आरपी फिलपौतिक जामलिनिका साहब
1: इतने लंबे चौड़े नाम की जगह हेल्थ ऑफिसर कहते हुए तुझे शर्म आती है?
2: जी हाँ, बस वही नहीं आए।
1: आएंगे कैसे, वो तो अस्पताल के कोने में बैठे तंबाकू का धुआं उड़ा रहे होंगे। उन्हें इस बात की क्या फिक्र के यहाँ बैठे बैठाए मुझे मौत का परवाना मिल गया है। शहर का मेयर होना भी क्या मुसीबत है। अबे तू खड़ा खड़ा मुझे अपनी मनहूस शक्ल क्यों दिखा रहा है? भाग यहाँ से, चल चल। और सुन, जैसे ही वो हेल्थ ऑफिसर अंदर कदम रखे ना, मुझे इतला मिलनी चाहिए, समझा?
2: जी अच्छा
1: अच्छा अच्छा, तू रहने दे रहने दे रहने दे, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। हाँ
2: जी बहुत अच्छा, मौसम कितना प्यारा हो रहा है।
1: अरे आप आ गए मिस्टर जेमलियानी का।
3: नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए बैठिए बैठिए।
3: माफी चाहता हूँ मेयर साहब, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। दरअसल मैं
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा ख्याल है अब मुझे असली बात शुरू कर देनी चाहिए जिसके लिए आप लोगों को यहाँ आने की तकलीफ दी गई है।
3: जी जी
1: साहिबान, आज सुबह सुबह एक बुरी खबर मिली है।
3: जी
1: मुझे मालूम हुआ कि पीटर्सबर्ग से एक इंस्पेक्टर जनरल हमारे शहर का मुआयना करने आ रहे हैं।
3: इंस्पेक्टर जनरल पीटर्सबर्ग से?
1: जी हाँ, सरकार ने इंस्पेक्टर जनरल साहब को सीक्रेट ऑर्डर्स दे रखे हैं, वो इस शहर में भेस बदल कर रहेंगे।
3: भेस बदल कर?
1: यकीन मानिए साहिबान, मुझे तो जैसे पहले से ही इंस्पेक्टर जनरल के आने का अंदेशा हो गया था। ठहरिए ठहरिए ठहरिए ठहरिए ठहरिए, मैं आप लोगों को

0: अपने दोस्त की चिट्ठी सुनाता हूँ जिसके जरिए मुझे ये खतरनाक खबर मिली है। लिखा है, प्रिय एंटोनोविच, ईश्वर तुम्हारी सेहत बराबर बनाए रखे, वगैरह वगैरह। हाँ, सुनिए सुनिए दोस्त, एक जरूरी खबर यह है कि एक इंस्पेक्टर जनरल भेस बदलकर पूरे प्रांत का दौरा लगा रहे हैं, जिसमें वो हमारे शहर का खास तौर से मुआयना करेंगे।
1: मुआयना खास तौर से?
0: जी हाँ, मुझे ये सूचना एक बहुत ही खास आदमी से मिली है, लेकिन जो अपने को बहुत ही मामूली आदमी कहने का ढोंग करता है। वैसे तो मैं जानता हूँ दोस्त, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन तुम जरा ज्यादा ही अपनी मुट्ठी गर्म करने की फिराक में रहते।
2: मेरा दोस्त भी देखो ना।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग कोई गैर थोड़े हैं। हाँ हाँ, तो साहिबान आगे लिखता है, ध्यान रखना एंटन एंटोनोविच, इंस्पेक्टर किसी भी दिन पहुंच सकता है, और क्या मालूम पहुंच ही गया हो और खुफिया तौर पर वहां रह रहा हो। परसों मैं अपनी चचेरी बहन अन्ना किरिलोवना के यहां गया था, मेरा जीजा तो एकदम भैंस जैसा भारी हो गया है, और हर बाकी सब हमारी घरेलू बातें लिखी हुई।
3: लेकिन मियां साहब, ये तो एकदम नामुमकिन लगता है, भला यूं चोरी से हमारे शहर में आना।
1: क्यों साहब, हमारे शहर में इंस्पेक्टर भेजने का मतलब, हम तो राजधानी से पहले इतनी दूर पड़े हुए हैं, बेबात ही हमें छेड़ने में फायदा।
0: ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। स्कूल सुपरिंटेंडेंट साहब
1: जी,
0: आज तक दूसरे शहरों का मुआयना होता रहा
1: जी,
0: और हम चैन की बंसी बजाते रहे
1: जी। हाँ।
0: आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाती, आज हमारा भी नंबर आ गया।
3: मेयर साहब
0: जी,
3: अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो इस मुआयने के पीछे जरूर कोई गहरी राजनीतिक वजह है
0: जी।
3: हमारी सरकार जल्द ही लड़ाई की घोषणा करने वाली है, सरकार ने चुपचाप इस आदमी को भेजा होगा कि देखना इधर उधर बगावत तो नहीं हो रही है।
0: क्या बात कही, इस पर आप अपने आप को बहुत ही अकलमंद और विद्वान कहते हैं। इस छोटे से गांव जैसे शहर में बगावत, ये क्या देश की सरहद है जनाब? यहाँ से 3 दिन तक घोड़ा दौड़ाते हुए भी आप सरहद तक नहीं पहुँच पाएंगे, समझे कुछ?
3: जी, मैंने तो ऐसी ही बात कही थी हुजूर, लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हमारे अफसरान की किच की आंखें हैं।
0: इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपना काम देखना है अपना। इस शहर के मेयर के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, इसके लिए मैंने कुछ जरूरी कदम भी उठाए हैं। आप लोगों को भी मैं कुछ सलाह देना चाहता
1: हूँ। जरूर, जरा ध्यान दीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब,
0: मैं आप सबसे ये बात कह रहा हूँ। पहले आप ही सुन लीजिए हेल्थ ऑफिसर साहब
1: जी,
0: इंस्पेक्टर जनरल आपका अस्पताल जरूर देखेंगे, जल्दी से कुछ चादरें ले आइए और मरीजों को सफेद धुली वर्दियां पहना दीजिए। ये ध्यान रहे कि उनके शरीर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर दिखाई दे, समझे आप
1: जी?
0: चाहे तो वो भी ढका हुआ हो। हाँ, सिर पर टोपी पहना दीजिए।
1: ये तो बहुत मामूली बात है मेयर साहब, मैं अभी सब इंतजाम कर रहा देता हूं।
0: और मरीजों से कहिए तंबाकू पीना बंद करें, अस्पताल के कमरे अच्छी खासी फैक्ट्री की चिमनी दिखाई देते हैं। सुनिए, मरीजों को पहचानने के लिए उनके बिस्तरों पर तख्तियां लटका देना जिनमें झूठ मूठ मरीज का नंबर, बेड नंबर और बीमारी का नाम लिखा होना चाहिए। हाँ, ये भी ध्यान रहे कि ये तख्तियां लैटिन, ग्रीक या किसी और भाषा में लिखी जाए ताकि इंस्पेक्टर के पल्ले कुछ ना पड़े, समझे आप? और हाँ, कुछ मरीजों को जबरदस्ती छुट्टी भी दे दीजिए, अफसर इतनी भीड़ देखेगा तो समझेगा यहाँ के डॉक्टर को कुछ आता ही नहीं है।
1: जी जनाब, मैंने और डॉक्टर हिब्बर ने तो शुरू से ही अस्पताल को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा को ही उत्तम मानते हैं, बेकार कीमती दवाओं पर पैसा खर्च करने से क्या फायदा। देखिए, और हमारे मरीज, ईश्वर उन्हें स्वर्ग में जगह दे, बहुत ही भले नागरिक हैं, जिन बेचारों को अच्छा होना होता है अपने आप अच्छे हो जाते हैं, और जिन्हें मरना होता है चुपचाप मर जाते हैं।
0: अब आपसे मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ जज ल्यापकिन त्यापकिन
3: जी,
0: आप इस शहर के आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज हैं
3: जी। हाँ।
0: लेकिन आपकी अदालत और जेल से तो चिड़ियाघर अच्छा है। जी, हर कमरे में चपरासियों की पाली हुई मुर्गियां और बत्तखें आजादी के साथ घूमती रहती हैं, और आने जाने वाले वकीलों और मुवक्किलों के पैरों से चिपटकर जबरदस्ती प्यार करती रहती है। मैं मानता हूँ मुर्गी पालन बहुत अच्छा पेशा है, लेकिन ईश्वर के लिए इस नेक काम से अदालत को तो बख्शिए।
3: ये कोई बड़ी बात नहीं है साहब, मैं सारी मुर्गियों बत्तखों को आज ही हलाल कर देता हूँ। अभी आइएगा ना आज शाम के खाने पर।
0: जेल तो परले सिरे का कूड़ा घर ही नजर आता है, कहीं जंगली जानवरों की खाल सूख रही है तो कहीं आपकी बंदूक शोभायमान हो रही है। खुशी की बात है कि आपको शिकार का इतना शौक है, लेकिन जब तक इंस्पेक्टर मुआयना नहीं करता, आप ये गोदाम किसी और जगह बना सकें तो बड़ी कृपा होगी। बाद में चाहे फिर उन चीजों को यहाँ ले आइएगा, समझे आप? और आपका जो वो बूढ़ा मुंशी है ना
1: जी,
0: माना कि उसे सारा कानून पहाड़े की तरह रटा हुआ है, लेकिन उसके पूरे शरीर से शराब की ऐसी भयंकर बू आती है कि

0: बाप रे, मैं तो एक मिनट भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता।
1: मजे की बात यह है मेयर साहब कि ये मेरा मुंशी शराब छूता तक नहीं। बात यह है, हुआ ये कि बचपन में
0: अगर उसके बदन से कुदरती तौर पर ऐसी बू आती है तो मामला और भी टेढ़ा है। उससे कहिए प्याज लहसुन या ऐसी किसी तेज बू वाली चीज का सेवन करे जो शराब की बू को मार दे, या फिर फौरन डॉक्टर के पास भागे। और हाँ वो जज साहब, जरा आप भी अपने को अच्छी तरह टटोल
1: लीजिए। साथ है तो ठीक ही चल रहा हूँ। देखिए ना, रिश्वत भी लेता हूँ तो न लेने जैसी। शिकारी कुत्तों के पिल्ले, भला ये भी कोई रिश्वत है?
0: मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, रिश्वत रिश्वत होती है, चाहे वो शिकारी कुत्तों के पिल्लों के रूप में हो या किसी और रूप में।
1: वाह साहबा, ये कैसे हो सकता है? रिश्वत तो वो होती है जनाब कि जब एक आदमी 500 रूबल का फरकोट या अपनी बीवी के लिए कीमती शाल लेता है।
0: बस, इन बेकार के तर्कों से तुम अपने को नहीं बचा सकते मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन। स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब
2: जी,
0: अपने स्कूल के बारे में दो एक बातें सुन लीजिए।
2: जी,
0: मैं जानता हूँ आपके अध्यापक बहुत होशियार और विद्वान हैं, लेकिन उनकी चाल ढाल, उनका व्यवहार दुनिया से निराला है। हो सकता है कि पढ़ाने का ये नया तरीका निकला हो। उदाहरण के लिए, आपका एक टीचर तो हमेशा अजीबो गरीब तरीके से मुंह बनाता रहता है, इंस्पेक्टर उसे देखेगा तो बौखला उठेगा।
2: जी, इसके लिए मैं भी मजबूर हूँ मेयर साहब। मैंने इस बारे में एक बार उससे बात की थी। हुआ ये कि शहर के सबसे बड़े रईस अपने बच्चे को दाखिल कराने आए हुए थे। उसने उनके आगे इतना बुरा मुंह बनाया कि वो तो उसी वक्त बच्चे को लेकर चलते बने। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका, बड़ी मुश्किल से समझाया उन्हें, नहीं तो वो स्कूल के अध्यक्ष को चंदा देना ही बंद कर देते। लेकिन हुजूर, वो कम वक्त पढ़ाता खूब है।
0: आप इतिहास के अध्यापक को ही ले लीजिए, वो बहुत दूरदर्शी और अपने विषय का पंडित है
2: जी,
0: लेकिन पढ़ाते वक्त उसे जो बेतहाशा जोश आ जाता है उसका क्या किया जाए। अभी उस दिन की बात है, वो बच्चों को जब तक असीरियनों का इतिहास बताता रहा तब तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही वो सिकंदर महान पर आया, बस कुछ ना पूछो, अपनी कुर्सी से कूदा, एक कुर्सी उठाई और जोर से डेस्क पर दे मारी। मैं जानता हूं इस तरह से वो युद्ध का वर्णन कर रहा था। ठीक है, सिकंदर महान एक शूरवीर योद्धा था, लेकिन इसके लिए स्कूल की कुर्सियां क्यों तोड़ी जाए?
2: जी आप ठीक कहते हैं मियां साहब, मैंने भी एक दिन स्कूल का टूटा हुआ फर्नीचर सामने रखकर उसे समझाया, लेकिन उसको तो बस एक ही रट है।
0: क्या?
2: आप लोग कुछ भी कहते रहिए, मैंने तो शिक्षा के लिए अपने आप को मिटा देने की कसम खा रखी है।
0: और मिटा वो हमें रहा है। जीवन कितना रहस्यमय है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी भी खतरनाक होता है।
2: अजी, शिक्षा विभाग से तो ईश्वर ही बचाए। अजी मेयर साहब, ये भी कोई चमत्कार ही है कि मैं इस लाइन में रहकर भी जिंदा हूँ, वरना ये अपनी अकल के आगे किसी की चलने दें।
0: मुआयना, वैसे मुआयना आयना कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन यूं भेष बदल कर।
2: जी, भेष बदल कर,
0: बदल कर। मान लो वो अभी प्रकट हो जाए और कहे, अच्छा मित्र, तुम सब यहाँ जमा हो, हाँ, तो तुम में से हेल्थ ऑफिसर कौन है?
2: जी,
0: जरा आपके हालचाल पूछने हैं। और जज साहब, आप भी जरा मेरे कमरे में तशरीफ लाइए।
3: दोस्तों, हमारे लिए तो ये डूब मरने की बात हो जाएगी।
2: कौन?
4: नमस्कार,
0: तुम कोई नया समाचार लाए हो पोस्टमास्टर? मेरा मतलब है, कोई खास चिट्ठी तो नहीं आई?
4: नहीं हुजूर, मैंने तो अभी अभी बॉब चिंस्की से ही ये भयानक खबर सुनी है।
0: तुम्हारा क्या ख्याल है पोस्टमास्टर?
4: ख्याल क्या है मेयर साहब, लड़ाई है और कुछ नहीं।
0: लड़ाई?
4: जी हाँ, हमारा देश भयंकर युद्ध करने वाला
0: है। तुम्हारी बेवकूफी का भी जवाब नहीं है पोस्टमास्टर।
3: अरे मियाँ, ये हमला हमारे शहर पर हो रहा है। ये चिट्ठी बता रही है कि इस लड़ाई के शिकार हम हैं, सिर्फ हम।
2: जी जी,
3: मुझे लगता है जरूर किसी ने मेरी शिकायत की है। वैसे मैं डरता मरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे नेक कामों का भगवान साक्षी है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी घबराहट जरूर हो गई है। शहर के व्यापारियों ने जरूर मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखकर राजधानी में जहर उगला होगा।
4: जी हाँ, किसी की शिकायत पर ही इंस्पेक्टर यूं चोरी चोरी आ सकता है।
0: देखो पोस्टमास्टर, ये हमारे तुम्हारे दोनों के हित में है कि इस शहर से बाहर जाने वाली हर एक चिट्ठी को तुम खोल कर देख लिया करो। अगर उसमें हमारी शिकायत जैसी कोई बात नहीं लिखी है तो उसे फिर से चिपका कर या खुली ही आगे भेज दिया करो। और अगर वो समझ गए ना?
4: समझ गया, बिल्कुल समझ गया। और इसमें आपके समझाने की बात ही क्या है, मैंने तो बरसों चिट्ठियां खोलने और पढ़ने का धंधा किया है। कुछ चिट्ठियों में तो इतनी मजेदार बातें लिखी रहती है कि उन्हें छोड़ने को मन ही नहीं करता।
0: सुनो, कोई ऐसी चिट्ठी तो तुमने नहीं देखी जिसमें पीटर्सबर्ग से अफसर आने की इत्तला हो?
4: जी नहीं, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प चिट्ठियां मेरी आंखों के सामने से गुजरी हैं मेयर साहब। काश आपने भी एक आध चिट्ठी पढ़ी होती। वो मनोरंजक बातें, वो लच्छेदार शैली के पढ़ने वाले की तबीयत फड़क उठे।
0: अच्छा?
4: एक लेफ्टिनेंट ने अपनी प्रेमिका को चिट्ठी लिख रखी थी। आप

0: आप वो चिट्ठी पढ़ना चाहेंगे?
1: शुक्रिया शुक्रिया, मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ। मैंने जो सुझाव दिया है उसका तुम्हें ध्यान है ना?
2: ये भी ध्यान रहे पोस्टमास्टर साहब कि ऐसी हरकतों से तुम्हें जेल जाने में देर नहीं लगेगी।
1: आप बकते हो लियापकिन त्यापकिन, कोई सरे बाजार रिश्वत ले तो बेशक ये बुरा है, लेकिन ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है।
2: आपके सारे मामले व्यक्तिगत ही होते हैं मेहर साहब
1: जी।
2: हाँ छोड़िए। हाँ याद आया,
1: क्या
2: ये बताइए क्या आप एक बहुत अच्छी नस्ल का शिकारी कुत्ता लेना पसंद करेंगे? मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था।
1: मैं ये भेंट तुम्हें मुबारक हो मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, मुझ पर मेहरबानी करो। मेरे चारों तरफ तो भेस बदला हुआ इंस्पेक्टर नाच रहा है। इंस्पेक्टर तुम यहाँ बैठ कर माज करो और इंतजार करो कि कब दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर है?
3: लगता है इंस्पेक्टर जनरल साहब जी आ गए हैं।
4: हे भगवान,
5: दरवाजा खोलिए मेयर साहब,
6: दरवाजा खोलिए मेयर साहब।
5: तुम चुप रह सकते हो डॉक्टर चिस्की, मेरा बोलना काफी है।
6: पर बॉब चिस्की मेरी आवाज तुमसे ज्यादा तेज है। मेयर साहब दरवाजा खोलिए।
1: ये आप दोनों महाशय हैं।
5: कमाल हो गया मेयर साहब, कमाल हो गया।
3: सपने में भी इस बात की उम्मीद नहीं थी।
1: क्या हुआ डॉबचिंस्की?
0: क्या बात है? अरे भाई क्या हुआ? अजीब
3: खबर है। हम लोग होटल में पहुंचे थे कि
5: हाँ, मैं और डॉबचिंस्की होटल में पहुंचे ही थे कि
3: डॉबचिंस्की, जब मैं बता रहा हूँ तो।
5: अरे पर मुझे ही बताने दो ना डॉबचिंस्की, तुम्हारा कहने का ढंग बहुत ही बचकाना है।
3: लेकिन तुम बीच में भूल जाओगे, तुम्हें आज तक कोई चीज याद रही?
5: जहाँ मैं भूल जाऊँ मुझे बता देना।
1: क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने, यहाँ पहले ही मेरा दिल बैठा जा रहा है।
5: सुन लिया ना डॉबचिंस्की? लीजिए मेयर साहब, मैं शुरू से सारी बात सुना। सुबह आपसे वो अहम खबर सुनकर मैं कोरोबकिन को बताने के लिए गया, लेकिन उस वक्त वो घर पर नहीं था। मैंने सोचा रूस्ता कोविंस्की को ये समाचार दे दूं, लेकिन वो भी अपने साली की शादी में बाहर गया हुआ था। मैं वापस आ ही रहा था कि मेरी मुलाकात डॉबचिंस्की से हो गई,
3: समोसे वाले की दुकान के पास।
5: हाँ समोसे वाले की दुकान के पास, लेकिन इससे ये खबर आपकी नौकरानी अवधोत्या से पहले ही मिल चुकी थी। वो आबकारी की दुकान पर कुछ लेने गई थी।
3: मेयर साहब के लिए फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी।
5: हाँ फ्रांसीसी ब्रांडी की बोतल लेनी। बीच में मत रोको डॉबचिंस्की, इसने मुझसे कहा के मारे भूखे इसके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो मैं इसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए होटल में ले गया। जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो एक लंबा तगड़ा खूबसूरत नवयुवक
3: सूट बूट पहने हुए
5: डॉबचिंस्की, तुम बार बार टोकते हो, ये बहुत बुरी आदत है। तो हाँ साहब, सूट बूट पहने हुए खूबसूरत नौजवान कमरे में चहलकदमी कर रहा था, रोबीला गंभीर चेहरा, जैसे कोई बहुत अहम बात सोच रहा हो। मैंने छूटते ही डॉबचिंस्की से कहा, हो ना हो ये वही आदमी है। हम दौड़े दौड़े होटल के मालिक के पास गए। उसने बताया ये कोई सरकारी मुलाजिम है, पीटर्सबर्ग से आया है और सरातोव की तरफ जा रहा है। इसका नाम इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलस्टकोव है, लेकिन अजीब शैतान आदमी था वो भी। दो हफ्ते से उनकी रोटियां तोड़ रहा था और उनकी छाती पर मूंग दल रहा था। न होटल से निकलने का नाम ले और न उनके बिल के चुकाने का नाम ले। होटल मालिक की बात सुनकर मैं तो जैसे उछल पड़ा। मैंने डॉबचिंस्की से कहा, पकड़ा ये वो आदमी।
3: नहीं बाप, पहले मैंने ये कहा।
5: अरे हो सकता है पहले तुमने कहा हो, लेकिन फिर मैंने भी तो कहा था यही है वो पीटर्सबर्ग का अफसर।
3: कौन सा अफसर?
5: अरे भूल गए मेयर साहब, अजी पीटर्सबर्ग का अफसर।
3: क्या
5: यानी इंस्पेक्टर जनरल?
3: क्या
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता।
3: वो कैसे हो सकता?
1: वही है मेयर साहब, वही है। वो होटल में एक पैसा नहीं देता, वहां से जाता भी नहीं। इतनी हिम्मत एक इंस्पेक्टर जनरल की ही हो सकती है, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की नहीं।
5: एक बड़े अफसर की तरह वो हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहा था। हम लोग जब खा रहे थे तो उसने जिस ढंग से हमारे खाने की तरफ देखा, वो पैनी नजर एक इंस्पेक्टर जनरल के अलावा और किसी की नहीं हो सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ।
3: अगर सचमुच वो इंस्पेक्टर जनरल ही है तो फिर तो भगवान ही हमारा मालिक है। बॉबचिंस्की, तुमने उसका नाम क्या बताया?
5: इवान अलेक्जेंड्रोविच एलेस्टेको।
3: उसके कमरे का नंबर क्या है?
1: नंबर 4,
5: जहाँ पिछले साल कमेटी के अफसरों में मारपीट हुई थी
1: ना। और उसे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए?
5: 2 हफ्ते।
1: मारे गए, अब क्या होगा?
7: मेरा एक सुझाव है मेयर साहब, हम सब मिलकर इंस्पेक्टर साहब का स्वागत कर दिख लीजिए।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं अकेला ही वहां जाऊंगा, अकेला। आप लोग तो वहां जाकर ठूंठ की तरह खड़े हो जाएंगे। डॉबचिंस्की, तुम बता रहे थे कि इंस्पेक्टर नव युवक सा लगता है।
3: जी हाँ, मुश्किल से 23-24 साल का होगा।
1: ये भी गनीमत है, नौजवान अफसरों को उल्लू बनाना आसान है। अच्छा साहिबान, आप लोग फटाफट सब चीजें ठीक ठाक कर लीजिए, समझे आप। मैं होटल का दौरा लगाने और यात्रियों की सुख सुविधा मालूम करने का बहाना कर इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ। मिश्का मिश्का
8: जी हजूर,
1: गाड़ी तैयार है?
8: जी तैयार है।
1: प्रहरात कहाँ है?
8: हजूर वो आज ड्यूटी पर नहीं है।
1: क्यों नहीं है?
8: जी वो रात आबकारी वाले नुक्कड़ पर पहरा दे रहा था, सुबह जब ड्यूटी से लौटा तो नशे में धुत था। 2-3 टप पानी डाले जाने पर भी उसका नशा ज्यों का त्यों है।
1: तुम लोग सिपाही नहीं हो, बादशाह हो, बादशाह। तुम भर कर अंदर जाओ। नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, भरो भरो भरो, और पुलिस सुप्रीम

0: अटेंडेंट को बुला लो, समझे? जल्दी जल्दी।
1: अभी जज साहब, मेरा ख्याल है कि अब चलकर सब कुछ ठीक ठाक कर लेना चाहिए।
2: अबे तुम्हें क्या फिक्र है हेल्थ अफसर साहब, मरीजों को साफ वर्दी पहना दोगे, सब ढक जाएगा।
1: जी हाँ, और अस्पताल के कोने कोने से जो बदबू के झोंके आते रहते हैं उसे आप किस तरह?
2: बदबू तो जनाब मेरी अदालत से भी बहुत आती है, पर मुझे इस बात का बिल्कुल फिक्र नहीं है। डर यह है कि कहीं इंस्पेक्टर साहब ने भूले भटके कागज पर नजर डाली तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पिछले 15 साल से मैं फैसला देता आ रहा हूं, लेकिन मैंने कसम खाने को भी कभी कागज पर नजर नहीं डाली और ना पढ़ा।
3: चिंता मत करो मित्र, इंस्पेक्टर साहब तुम्हें इनाम दिए बिना नहीं रहेंगे। हाँ,
1: कौन कौन है? कौन
4: हुजूर, आपने मुझे याद किया।
3: आ गए आप पुलिस सुपरिंटेंडेंट साहब। पलक झपकते देर नहीं होती कि आप ना जाने कहां उड़नछू हो जाते हैं। ये आलम है हमारे शहर के सम्मानीय पुलिस सुपरिंटेंडेंट का।
4: मगर हुजूर, मैं तो बाहर के गेट पर ड्यूटी दे रहा था।
3: सुनिए, इस शहर के मुआयने के लिए पीटर्सबर्ग से अफसर आ पहुंचा है, आपको सारा इंतजाम करना है। जल्दी से किसी लंबे तगड़े सिपाही को नई वर्दी पहनाकर पुल पर खड़ा कर दीजिए, ताकि अफसर पर रौब पड़ जाए। शहर का सारा कूड़ा किसी बुत या किसी स्मारक के पीछे फेंकवा दीजिए। शहर के एक किनारे कुछ खुदाई करवा दीजिए और मजदूरों को हिदायत दे दीजिए कि मिट्टी इधर उधर करते रहें, जिससे ये लगे वहां जमीन बराबर की जा रही है।
4: जी बहुत अच्छा।
3: और हाँ, अगर खुदा ना खास्ता अफसर ने किसी पुलिस वाले से सवाल किया, तुम अपनी नौकरी में खुश तो हो, तो उसे तुरंत उत्तर देना चाहिए, जी आपकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हूं। ऐसे आदमी को बाद में सचमुच संतुष्ट करने पर विचार किया जाएगा।
4: जी मैं इस बारे में अभी एक नोटिस घुमा देता
3: हूं। एक बात और है, अगर कोई पूछे कि अभी तक अस्पताल में गिरजा क्यों नहीं बनवाया गया, जबकि इसके लिए 5 साल पहले ही चंदा इकट्ठा कर लिया गया था, तो उसका जवाब यह है कि गिरजाघर बना था लेकिन उसमें आग लग गई, समझे आप? मैंने इस बारे में सरकार को रिपोर्ट भी भेज रखी है। डर यही है कि तुम में से कोई बेवकूफ कहीं ये ना कह दे कि गिरजे का निर्माण तो कभी शुरू ही नहीं किया गया। अब मैं जाता हूं, गॉब्जिंस्की तुम मेरे साथ चलो।
5: जी बात मेरे साथ, मुझे भी साथ ले लीजिए।
3: समझदारी की बात करो गॉब्जिंस्की, गाड़ी में दो ही आदमियों की जगह।
5: कोई बात नहीं, मैं पायदान पर ही खड़ा खड़ा चला जाऊंगा। दरअसल मैं भी दरवाजे की दरार से अफसर और आपकी भेंट देखना चाहता हूं।
3: अच्छा, आइए आइए, चलिए चलिए।
6: सुनिए सुनिए,
7: अरे पापा तो चले गए। मम्मी
6: और क्या मारिया, ये देर सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है।
7: मम्मी मेरा नेकलेस कहाँ रखा है? मम्मी मेरे हेयर पिन नहीं मिल रहे। मम्मी क्या अफसर आ गया है? कैसा दिखता है, जवान है या बूढ़ा है?
6: लेकिन लेकिन पापा ने जाने से पहले हमें बुलाया क्यों नहीं? अब हम अफसर को कैसे देखेंगे?
7: तू क्या देखेगी, तुझे तो पोस्ट मास्टर को देखने से भी फुर्सत नहीं मिलती।
8: न जाने पापा का अफसर कैसा होगा, मेरा दिल कहता है वो बहुत सुंदर होगा।
2: धत तेरे की, हमें पीटर्सबर्ग से चले 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक आधे रास्ते में अटके भी। लेकिन हमारे मालिक साहब को इसकी कोई फिक्र ही नहीं, उन्हें कोई काम ना काज ना नौकरी ना चाकरी, उन्हें तो बस हुक्म चलाना आता है।
9: और से इवान अलेक्जेंड्रोविच लेस्टकोफ के लिए, यानी हमारे लिए शानदार होटल का शानदार कमरा बुक कर लो। आसिफ जल्दी से बैरे को खाना लाने के लिए बोलो, लेकिन ध्यान रहे खाना एकदम लजीज हो, हमें घटिया खाना खाने की आदत नहीं।
2: घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुना ले। अरे कभी इधर उधर से पैसे आ भी गए तो साहबजादे को जैसे पर लग जाते, फौरन बड़े बड़े आदमियों को जा घेरेंगे और जुए में तब तक जुटे रहेंगे जब तक जेब में आखिरी सिक्का रहेगा। अरे कई बार मालिक जेबें गर्म करके भी आते हैं, तब मैंने भी खूब गुल छर्रे उड़ाए। कुछ ना पूछिए, खूब दावतें खाई हैं, बढ़िया कपड़े पहने हैं। मैं और मालिक बाजार से निकलते हैं तो दुकानदार सिर झुका झुका कर स्वागत करते हैं, आइए आइए श्रीमान हमारी दुकान पर भी तो कीजिए। ओह आज तो भूख के मारे ठीक से हंसा भी नहीं जा रहा, और होटल का मालिक है कि हमारी तरफ देखता तक नहीं। जोर की भूख लगी है कि मालिक आ गए। मालिक आज तो आप सह से जल्दी वापस आ गए।
3: नीचे जाकर मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत जोर की भूख लगी है।
2: मालिक ये काम मेरे बस का नहीं है।
3: क्या
2: मालिक, मेरा मतलब है मेरे जाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। होटल के मालिक ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक आप उसका पिछला बिल नहीं चुका देते वो हमारे खाने की छुट्टी रखेगा।
3: उसकी शेम अचाल की हमें खाना देने से इनकार करे।
2: आज ही उसने तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि वो शहर के मेयर के पास हमारी शिकायत लेकर जा रहा है। कहने लगा मैं मेयर साहब को बताऊंगा कि पीटर्सबर्ग का एक उचक्का लफंगा अपने नौकर के साथ 2 हफ्ते से मुफ्त मेरे होटल की रोटियां।
3: तुम बहुत चाव के साथ ये सब सुनते रहे।
2: सुनना ही पड़ा मालिक, मुझसे कहने लगा फिक्र ना करो बच्चू, कल से तुम्हें जेल की रोटियां मिलेंगी।
3: बस भी करो।

0: जाओ एक बार फिर उसे खाना भिजवाने के लिए बोलो।
1: मैं उसे यहीं बुला लाता हूँ, आप खुद ही उससे बात कर लीजिए ना।
0: मैं मैं ऐसे घटिया आदमी की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता।
1: अच्छा आप कहते हैं तो एक बार फिर बात करता हूँ।
0: ओफो इतनी भूख लगना भी मुसीबत है इवान अलेक्जेंड्रोविच छेलस्तु को, तुम भी किस भूखे शहर में आकर फंस गए। यहाँ तो रहने का मजा ही नहीं आ रहा, पर यहां से निकले भी कैसे, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और उधर सारा तो मैं बाबा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बाबा समझते हैं मैं पीटर्सबर्ग में किसी अच्छी खासी नौकरी में हूं, और हमें अभी तक ये भी नहीं मालूम कि नौकरी किस बला का नाम।
1: मालिक लीजिए वेटर खाना लेकर आ गया है।
0: खाना
1: जी?
0: यानी कि खाना? खाना
2: हमारे मालिक ने कहा है आज के बाद आपको खाना नहीं मिलेगा।
0: भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, मेरा मतलब है मित्र पैसा वैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, मुझे खाने का इतना चाव नहीं है, लेकिन इसलिए खाता हूं क्योंकि क्योंकि क्योंकि मुझे खाना है। हाँ
2: जी जी।
0: खैर छोड़ो छोड़ो छोड़ो, शे क्या सिर्फ सुपर मुर्गा, शे क्या बदतमीजी है, इसे ले जाओ और अपने मालिक से कहो ये बहुत कम है।
2: मालिक कहते हैं ये जरूरत से ज्यादा है।
0: बकता है, और बाकी चीजें कहाँ गई, मछली कलेजी कटलेट और वो अचार चटनी?
2: बाकी चीजें नहीं है।
0: क्यों नहीं? अरे मैंने ऊपर आते हुए खिड़की से झांक कर देखा था तो पिद्दी से घा उंगलियां चाट चाट कर दुनिया भर की चीजें अड़प रहे।
2: अजीब है, ऊंचे ग्राहकों के लिए हैं, आप जैसों के लिए नहीं।
0: बको मत, मेरे गले में वो चीजें अटकती, वो लोग भी तो मुझ जैसे मुसाफिर हैं।
2: फर्क है हुजूर, वो नकद दाम देते हैं और आप।
0: मैं इतनी गजा नहीं खाता कि तुम जैसे जाहिल गमार से बहस कर सकूं। ये सूप है जैसे गर्म पानी में नमक खोल दिया गया।
2: कोई बात नहीं हुजूर, मालिक ने कहा था आपको जरूरत ना हो तो वापस ले आना।
0: वापस ले आना? लो आसिफ बाकी तुम पी लो।
1: बहुत अच्छा।
0: ये मुर्गा बना मुंह में रखते ही जबड़ा अलग हो जाए जैसे किसी पेड़ का ठूंठ हो। लो आसिफ थोड़ा तुम भी लो।
2: मैं अब जा सकता हूँ।
0: सुनो मित्र, खाने के बाद कुछ मीठा मिल जाए तो मजा आ जाएगा। आसिफ तुम बेटर जी के साथ चले जाओ, ये खाना है सूप की जगह उबला पानी और गोश्त।
1: मालिक मालिक नीचे मेरा आया हुआ है और आपके बारे में कुछ पूछताछ कर रहा है।
0: क्या?
1: जी हाँ।
0: आखिर उस बदमाश ने मेयर के पास मेरी शिकायत करी थी? नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। मेयर की क्या मजाल कि मुझे जबरदस्ती जेल भेजे, मैं उसे ऐसी झाड़ दूंगा कि याद रखेगा। तुम्हारी ये हिम्मत हुई कैसे, तुम्हारी ये मजा?
3: श्रीमान मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आप भी मेरी नमस्ते दीजिए। क्षमा कीजिएगा बिना पूछे ही चला।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं, दरअसल शहर के मेयर की हैसियत से ये मेरा पहला फर्ज हो जाता है कि बाहर से आने वाले यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखूं, उन्हें किसी भी तरह। लेकिन आप ही बताइए इसमें मेरा क्या दोष है, मैं तो होटल की कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। दरअसल शरारत तो होटल के मालिक की है, वो मुझे जान बूझ कर घटिया खाना देता है, मांस ऐसा जैसे पत्थर के टुकड़े हों, और सूप भगवान ही जाने उसमें क्या डाला जाता है। मैंने अभी अभी उसे खिड़की से बाहर फेंका है, चाय में मछली की बू आती है और ऊपर से वो मुझे धमकी देता है कि मुझे वो।
3: मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हुजूर, बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे सच बताऊं उसमें मेरी जरा भी गलती नहीं है। हमारा शहर तो ताजे गोश्त के लिए मशहूर है, ताज्जुब है ये आदमी कहां से कूड़ा उठा लाता है। दरअसल ये होटल आपके रहने लायक है भी नहीं, मैं आपसे कहीं और चलने की प्रार्थना कर सकता हूँ?
0: नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं खूब समझता हूँ कहीं और से आपका मतलब क्या है। आप इस बहाने मुझे जेल ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको मुझे जेल ले जाने का क्या अधिकार है?
3: हे भगवान ये तो सब जानता है, जरूर किसी ने इससे मेरी शिकायत।
0: जनाब आप पूरी फौज लेकर आइए तो भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं सीधा जार के पास जाऊंगा। आप लोग मुझे समझते क्या हैं?
3: ऐसा ना कीजिएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बीवी बच्चे तबाह हो जाएंगे।
0: खूब खूब, तो आपके बीवी बच्चों को बचाने के लिए मैं जेल चला जाऊं? माफ कीजिए मैं भी सब जानता हूं,
3: मुझसे गलती हुई हुजूर, दरअसल मुझ में अकल की बहुत कमी है, और क्यों ना हो हुजूर, तनख्वाह इतनी कम मिलती है कि सारा दिमाग उधर सोचने में ही खत्म हो जाता है, तभी तो भूले भटके रिश्वत लेने की गलती हुई है हुजूर। लेकिन विश्वास कीजिए रिश्वत में भी हमेशा
0: छोटी मोटी चीजें ली हैं मैंने, और वो जो आपने वो देखी ना हवलदार की विधवा को कोड़े लगाने वाली बात सुनी होगी ना, वो बिल्कुल झूठ है साहब, बिल्कुल झूठ है, मेरे दुश्मनों का गढ़ा हुआ किस्सा है। और हुजूर आपसे क्या कहूं, इन दुश्मनों से तो मुझे अपनी जान

0: का भी खतरा हो गया।
1: मुझे इन बातों से क्या लेना देना, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं कर सकते।
0: नहीं नहीं,
1: मैं होटल का एक एक पैसा चुका दूंगा, पर इस समय मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
2: धूर्त कहेगा, किस चालाकी से पैसे की बात छिड़ी है, पर बच्चों मैं भी तुझे अपने जाल में फांस कर ही छोड़ूंगा। माफ कीजिएगा हुजूर, अगर आपको पैसों की दिक्कत हो तो मैं सेवा के लिए उपस्थित हूँ। शहर में आने वाले प्रत्येक यात्री की सेवा करना तो मेरा
1: पहला। ठीक है ठीक है, आप मुझे कुछ रूबल उधार दे दीजिए ताकि मैं होटल का बिल दे सकूं। मेरा ख्याल है 200 रूबल में काम चल जाएगा।
2: ये लीजिए, गिनने के कष्ट न कीजिएगा,
3: पूरे 200।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वापस जाते ही भिजवा दूंगा।
0: अरे
2: डॉबचिंस्की, शुक्र है इतने पैसे चुपचाप ले लिए इसने, मैंने भी समझदारी की, 200 की जगह 400 रूबल दे दिए।
1: ऑसिफ वेटर को बुला लाओ।
4: जी अच्छा।
5: इंस्पेक्टर जनरल गोगोल के इस प्रसिद्ध नाटक के हिंदी रेडियो रूपांतरण का पहला भाग अभी आपने सुना। रूपांतरकार थे शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया रंग पिया है वहाँ।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का